डैलस पुरम की जनता, क्या हाल है आप सभी लोग? आपने ज्यादा मुझे मिस तो नहीं किया? हाँ जी, यस, दिस इज योर बेस्टी इपी द हिपी ओनली ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 FM. और मैं आ चुकी हूँ. टुडे इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी एक्साइटिंग शो. क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूँ यार, इसीलिए. ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ खास तो नहीं है, बट मैं आई हूँ इसीलिए ज़्यादा एक्साइटिंग है. और क्या, मेरा अराइवल इज ओनली वेरी एक्साइटिंग. तो गाइज, आपका वेंसडे कैसा जा रहा है? आर यू इंजॉइंग योर वेंसडे? वी आर हाफ वे थ्रू द वीक. वीकेंड आने वाला है, सो वीकेंड पे आई होप यू ऑलरेडी मेड योर प्लान्स. अगर नहीं बनाए हैं तो ज़रूर प्लान्स बना लो. देर सो मेनी इवेंट्स हैपनिंग ऑल ओवर द सिटी. However, you can always Google and find out about those events yourself. मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है. बहुत इवेंट्स हो रही है. जस्ट गो फॉर समथिंग. डोंट सिट एट होम ऑन द वीकेंड. ठीक है, घर लॉन्ड्री बर्तन ये सब तो चलता ही रहता है, खाना वाना मील प्रेप ये भी चलता रहता है, लेकिन गाइज इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव सम फन एज वेल. तो इसीलिए विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट दिस शो स्टार्टेड ऑन द रोड.

भाई मुझे क्या पता क्या हो गया, आपको पता होना चाहिए ना, रफ्ता रफ्ता देखते देखते. तो गाइस बहुत कुछ हो गया है लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे, और हम इसको भी इग्नोर करेंगे कि मैं अभी खाते खाते बात कर रही हूँ. बिकॉज यू नो व्हाट, व्हेन यू हैव दिस आवर तो समटाइम्स यू हैव टू मल्टीटास्क, एंड दैट मल्टीटास्किंग इज समटाइम्स यू हैव टू ईट ऑन द जॉब. आपने वो वाली वीडियोज देखी है जिसमें वो एक कोई अंकल है, अंकल तो नहीं है, आई डोंट थिंक ही इज एन अंकल बट ही लुक्स लाइक एन अंकल, ही इज इन हिज 40s आई थिंक, ही इज लाइक व्हाट आई एट एट वर्क टुडे करके इतनी सारी वीडियोस बनाते हैं. वो कभी चाय पी रहे हैं, कभी कॉफी पी रहे हैं, कभी स्नैक्स हो रहा है, आफ्टरनून स्नैक, इवनिंग स्नैक, लंच, डिनर, मतलब ये तो नॉर्मल खाने से भी इतना ज्यादा खाना. मैं सोच रही हूँ यार भैया तुम काम नहीं करते, सारे दिन बैठ के खाते रहते हो खाते रहते हो. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच, इट्स लाइक दोज मुकबहांग वीडियोज, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट भाई. उसके बारे में छोड़ते हैं, अब हम बात करते हैं हम अपने सपनों के बारे में बात करते हैं. उनका सपना तो शायद ऑफिस में बैठ के बहुत सारा खाना खाना है, लेकिन हमारे सपने में, अगर आपके सपने में, आपके मेरे या आपके पड़ोस वाली आंटी के सपने में एक घर है, देन यू नीड टू रीच आउट टू ड्रीम होम मॉर्गेज, क्योंकि सिंस 1998 दे हैव हेल्प्ड फैमिलीज अक्रॉस द कंट्री विद पर्सनलाइज मॉर्गेज सोल्यूशन फॉर बाइंग और रीफाइनेंसिंग. कॉल 972-245-5626 और विजिट ड्रीम होम मॉर्गेज. ओके नाउ गाइज, एक चीज मैं आपको बताना भूल गई जो मैं आजकल बहुत लेट बोल रही हूँ, मुझे पहले बता देना चाहिए क्योंकि ज्यादा लोग इस टाइम पे सुन रहे होते हैं. विच इज दिस दैट एज यू ऑल नो आई एम अ सिंगर एंड आई हैव अ लॉट ऑफ परफॉर्मेंस नॉर्मली. तो अगर आई एम परफॉर्मिंग एट द एंड ऑफ दिस मंथ विच इज October 30th एट स्टीव्स वाइन बार इन डेंटन. इट्स ए ब्यूटिफुल प्लेस विथ रियली टॉप नॉच क्वालिटी ऑफ वाइन्स विच आर सिलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. इफ यू वॉन्ट टू डू सम वाइन टेस्टिंग या फिर जस्ट इन्जॉय सम लाइव म्यूजिक देन कम बाय. आई एम गोना प्ले विथ माई बैंड कॉल्ड डैलस बॉलीवुड प्रोजेक्ट. येस इट इज अ सिंग अलॉन्ग इवेंट. आई एम गोना गिव यू अ QR कोड, उसमें सारे लिरिक्स वगैरह हैं सो यू कैन सिंग अलॉन्ग विद इट. इट्स रियली नाइस. देर इज नो एंट्री फी बट देर इज अ कवर चार्ज. सो देर आर नो टिकट्स, यू डोंट हैव टू बाय एनीथिंग इन एडवांस. यू कैन जस्ट शो अप ऑन October 30th एट 7 PM एट स्टीव्स वाइन बार. तो अपने कैलेंडर में डाल लो गाइज. मैं वी डोंट डू अ लॉट ऑफ पब्लिक गिग्स बट दिस वन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी एक्साइटिंग. सो मेक श्योर यू हैव इट ऑन योर कैलेंडर. इट्स दिवाली स्लैश हैलोवीन स्पेशल ऑल्सो, FYI.

0: Guys, and we are back. Yes, this is Ibi the Hippie, and you are still listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. It is 7:27 on the clock. Bhai, guys, jaise maine kal bola tha, money is like a skill. Aap sab seekh sakte hain. If you're bad at money, if you're bad at saving, if you're bad at investing, don't worry about it. There is AG Fintax that's going to help you out with all of this stuff. Whether you're looking for tax advice, accounting, payroll, bookkeeping, or business advisory services. Whether you're an individual tax filer or you have a business, call 469-942-9888 or visit agfintax.com today. And especially, why is this necessary? Because 11th ko jo hai, October 11th, which is on Sunday, this Sunday, there is a free AG Fintax's live webinar is going to happen. And you can find out some tax saving opportunities. Nobody likes paying that $10,000 at the end of the year, you know, when you're making good money and then suddenly you have to pay this giant tax bill, especially if you haven't been paying it all through the year. Okay, so whether you're looking for tax saving opportunities or you're looking for retirement planning, smart investments, or for year-end tax strategies, if you haven't done the whole year, how can you do it? Then you should definitely join the webinar with Anil Grandhi. It is going to be at 11:00 AM. Register today at agfintax.com and secure your spot. Because if it's full, ho gaya, then you can't really do anything about it. Okay? Now, let us go into the next song. And after that, we're going to go to break. Mein. In just about 30 seconds. So, 30 seconds ke liye main kya hi gaana bajau? Aap meri bakwaas sun lo. Bhai, traffic to aaj thoda sa tha. 75 pe na hamesha traffic hota hai. I don't like driving from that 75 wala road. But unfortunately, even despite the traffic, it is the fastest, okay? Come back in about 10 seconds. We are going to a break. Lekin 8 baje hamara giveaway hai. And then we have 2 giveaways. So, stick around. And here we go into our break.
1: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
2: Call 857-891-8942 today.
3: ये लास्ट दिवाली पहना था ये नेहा की शादी में इस पे तो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर डीपी है
4: हे भगवान मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है
5: जब वार्डरोब में हो फैशन का अकाल तो सीधा इंडियन अटायर जाओ बालिके
6: प्रभु डिस्काउंट भी मिलेगा
5: ऑफ कोर्स फेस्टिव कलेक्शन पर अप टू 25% ऑफ Tathastu.
7: Discover stunning lehengas, elegant saris, bridal jewelry, and festive styles for men and kids. All at Indian Attire on 2995 Preston Road, Frisco. Indian Attire, Frisco. Your divine destination for festive fashion.
8: जहाँ तंदूर की आंच घर जैसी गर्माहट और अपनों का साथ सब एक ही मेज पर मिल जाए अब वही पंजाब अपने दमदार स्वाद और दिल से की गई मेहमान नवाजी के साथ अर्विंग में
9: Introducing Punjab by Page 3. Punjab se aaye chefs ke haathon bana Amritsari kulcha with chole aur makke ki roti with sarson ka saag. Saath mein ek thandi lassi.
8: Punjab by Page 3. Now in Irving. Swad Punjab ka. Andaz Page 3 ka.
10: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
11: अरे सुन ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है
12: माँ रील्स पे सब लकी ही होते हैं जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो
13: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है पंडित राम तुलसी जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है करियर हो स्टडीज शादी या फ्यूचर प्लानिंग हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट
12: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com
14: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में
12: कभी चटपटा सा ट्विस्ट कभी तीखा सा किक कभी मीठा सा सुकून
14: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन द फ्लेवर लाउंज
12: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स द फ्लेवर लाउंज हर बाई सुपर हिट
15: तारा वो तारा हर तारा
2: तारा।
15: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
16: फ्लोर्स क्लीन
17: चेक,
16: विंडोज क्लीन
17: चेक,
16: किचन क्लीन
17: चेक,
16: एयर डक्ट्स क्लीन।
17: वेट, एयर डक्ट्स भी क्लीन करना होता है?
18: बिल्कुल, जो दिखता है वो तो हम क्लीन कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या? That's where Duck Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush, plus dryer vent or chimney cleaning. Ghar ho, restaurants, hotels, offices, ya phir any business. Duck Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
19: कस्टमर्स हिंदी में मिलते हैं, तेलुगु में भी, पंजाबी में भी और तमिल में भी, तो ऐड सिर्फ एक लैंग्वेज में क्यों?
15: वन एशिया नेटवर्क के साथ रीच कीजिए DFW के मल्टीपल देसीज को एक ही पावरफुल नेटवर्क पर। आज ही कॉल करें 4694243188 और ईमेल sales@funasia.net। फन एशिया नेटवर्क, वन नेटवर्क, मेनी लैंग्वेजेस एंड मैक्सिमम रीच।

Guys, this is yes, you're listening to Ippy the Hippie only on Fun Asia Radio 104.9 FM, and this is my show, An Evening in Dallas. So, guys, without further ado, let's get this show on the road. वैसे on the road तो आप I'm sure अभी चला ही रहे हैं. भाई traffic तो ठीक है. I mean it's not too bad. 7:30 बजे के बाद वैसे भी traffic कम हो जाता है life में. But how amazing is the weather outside? Isn't it amazing? ना ठंड है ना गर्मी है. इट इज़ द परफेक्ट डे. इट्स लाइक आपने किसी ने मिस कंजीनियलिटी वाली मूवी देखी है विद सैंड्रा बुलक. उसमें यू नो दे आर ऑल डू यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. नो आई विल टेल यू. बेसिकली दे आर ऑल स्टैंडिंग फॉर द मिस अमेरिका पैजेंट एंड देन दे आस्क वन ऑफ द कंटेस्टेंट्स हु इज़ बाय द वे मिस रोड आइलैंड एंड यू नो शी इज़ काइंड ऑफ very typically fitting the stereotypical bill, which is she's blonde and sweet and very nice and you know like that. So jab wo final round hota hai jisme na beauty contestants ko poochte nahi hai sawal alag alag tarike se, to sabse cliched jawab sabka hota hai world peace. Everybody wants world peace, apparently that gets you the crown. To usse poocha, bandi se poocha, so guys, नॉट गाइज, उससे पूछा कि सो डिस्क्राइब योर परफेक्ट डे. फिर वो थोड़ी देर सोचती है. आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट दैट शी मैंशन, बट शी से फॉर एग्जाम्पल शी सेड अक्टूबर 22nd और समथिंग लाइक दैट. शी सेज बिकॉज इट्स नीदर टू हॉट नॉर इट्स टू कोल्ड, इट्स द परफेक्ट वेदर. एंड देन आई डोंट थिंक दैट्स व्हाट दे वर आस्किंग हर, बट इट इज द मोस्ट आइकॉनिक लाइन एवर. It's better than Mean Girls ka line. I'm a cool mom, in my opinion. So definitely check out the movie if you haven't. It's hilarious. Today we are playing a lot of classics. So I hope you enjoy the playlist.

0: शिमारुकेन।
1: भाई आपने कभी रियलाइज किया है आज की रात और प्यार करने वाले शान से दे काइंड ऑफ हैव अ सिमिलर ग्रूव, वैसे ही सेम टाइप की भी दे भाई आपने ध्यान दिया है? आई मीन ऑफ कोर्स आई थिंक दे वर गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम शान, एंड अगर आपको शान मूवी याद नहीं है तो आई थिंक इट वाज सच एन आइकॉनिक मूवी। उसका नाम क्या था विलन का? शाकाल। ऐसे भयंकर भयंकर नाम क्यों होता था यार विलन के? मोगैम्बो, शाकाल। भाई ऐसा लग रहा है बम गिर रहा है कहीं से, नहीं आपको नहीं लगता? तो गाइज आगे बढ़ते हुए, इट इज 7:50 ऑन द क्लॉक, लेट अस प्ले अ वेरी वेरी सिंपल गेम। लेकिन उसके पहले ये गाना सुनिए, ये हम गेम खेल रहे हैं, दिस इज बेसिकली फॉर ज्योतिका पटेल डिजाइंस। यस, यू बाय आंसरिंग दिस वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन यू कैन विन अ फैबुलस पेयर ऑफ इयररिंग्स फ्रॉम ज्योतिका पटेल डिजाइंस। ओके, लेकिन है कौन ज्योतिका पटेल? ज्योतिका पटेल इज अ ब्यूटिफुल डिजाइनर हियर बेस्ड इन DFW। कम सेलिब्रेट नवरात्रि विद अ फैबुलस न्यू लुक फॉर एवरी नाइट, एक्सप्लोर अ स्टनिंग कलेक्शन ऑफ स्टाइलिश कंटेम्प्रेरी चनिया चोलीज अलॉन्ग विद कस्टमाइजेबल वेडिंग एंड ब्राइडल वेयर फॉर मैन वुमेन एट इंडियन एथनिक वेयर बाय ज्योतिका पटेल इन अर्विंग। कॉल 9454442194 और विजिट ज्योतिका पटेल डिजाइन्स .com। ओके, तो बाय आंसरिंग दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन यू कुड विन अ गिव अवे। ओके, अ ब्यूटिफुल पेयर ऑफ इयररिंग्स। तो गाना, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मैं एक गाना बजाऊंगी, वो गाना आपको सुनना है, आपको मूवी आइडेंटिफाई करनी है, लेकिन उसमें तीन एक्टर्स हैं, उन तीनों एक्टर्स के मूवी के कैरेक्टर नेम्स क्या है? मैं दैट्स इट। सो फॉर एग्जांपल अगर शाहरुख खान की मूवी है तो आपको मुझे बताना है शाहरुख खान का नाम इस मूवी में था राज, लाइक दैट। ओके, बट ये शाहरुख खान की कोई मूवी है नहीं, बट मैं बता रही हूँ कैसे खेलना है, ठीक है? सो सिंपल, गाना सुनिए, गिव मी अ कॉल 9722355555। ओके, लेट्स गो अहेड। Very simple. And we have our first caller. Let's see. Hi, can you hear me? Hello, can you hear me?
2: Hi, yes, I can hear you.
1: Okay. पहले तो अपना नाम बताइए and then tell me the names of the three actors who are in this movie. Not the names of the character names.
2: Character names which they played in the movie. Am I correct?
1: हाँ, but first tell me your name.
2: मेरा नाम श्वेता है.
1: श्वेता जी, okay, go for it.
2: Okay, so the three were like आकाश,
1: हाँ, correct, yes,
2: and समीर.
1: अरे क्या बात है, that is the correct answer. आपके लिए हम बजाते हैं जोर से तालियां. एक सेकंड, मेरे को तालियां ढूंढने दो पहले अपनी. ये लो, मिल गई. ओके श्वेता, श्वेता स्टे ऑन द लाइन, मैं ये गाना प्ले
2: ओके
1: करती हूँ ऑडियंस के लिए एंड देन आई विल टेल यू हाउ टू रिडीम योर प्राइस।
2: ओके,
1: ऑलराइट गाइस, आप ये गाना एंजॉय करिए तब तक।

And guys, without further ado, let's go ahead and play our giveaway round. Yes, aaj ka giveaway is from Chandigarh Bites in Allen. तो आप क्या जीत सकते हैं चंडीगढ़ बाइट्स में. लेकिन उसके पहले मैं चंडीगढ़ बाइट्स के बारे में थोड़ी सी बातें तो कर दूं. यू कैन एंजॉय द स्पेशल थाली एट चंडीगढ़ बाइट्स फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे विद न्यू डिशेज रोटेटिंग एवरी सिंगल डे. बट दिस इज ओनली वैलिड फॉर लंच. दे आर लोकेटेड ऑफ ऑफ मैकडर्मट ड्राइव इन एलन. विजिट chandigarhbites.com फॉर मोर डिटेल्स. येस गाइज, प्लीज मेक श्योर कि आपने पिछले एक महीने में ये या कोई और गिव अवे नहीं जीता है, बिकॉज वी वांट टू मेक श्योर दैट एवरीबडी गेट्स अ चांस. ठीक है, नहीं तो फिर आप ही सारे प्राइजेस ले जाओगे तो बाकियों को क्या मिलेगा. सो वी वांट टू बी फेयर टू एवरीवन. और दूसरी चीज ये है कि अगर आई नोटिस दिस यस्टरडे, अगर आपके पास कोई गाना है जिसे यू नो यू हैव द आंसर टू द क्वेश्चन एंड यू हैव वन द गिव अवे और आपको प्राइज पास करना है, तो देन वेट कि कोई पहले आंसर कर दे, फिर आप दोबारा कॉल करके मुझे दोबारा गाना बता सकते हैं. आई विल प्ले दैट सॉन्ग ऑल्सो फॉर यू, जो भी आप गाना बोलेंगे. लेकिन मेक श्योर दैट अनलेस एंड अंटिल यू आर एक्चुअली इंटेंडिंग टू विन द प्राइज, डोंट डायल द फर्स्ट कॉल. फर्स्ट कॉल शुड गो टू द पर्सन हु इज प्लेइंग द गेम. ओके, नाउ व्हाट इज द गेम? वेरी सिंपल. आई विल प्ले अ सॉन्ग, आपको उसके मुखड़े में से एक कोई भी वर्ड उठाना है, फ्रेज उठाना है, जैसे भी है, और उसी से रिलेटेड कोई दूसरा गाना गाना है. ठीक है, सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गो अहेड एंड प्ले दिस गेम. माय नंबर इज 972-235-5555.

0: Okay, we have our first caller. इंदु जी बड़ी देर से कोशिश कर रही है. हेलो, कैन यू हियर मी?
1: हेलो,
0: हाय, कैन यू हियर मी?
1: यस,
0: आप बड़ी देर से डायल कर रहे हैं, तो मैंने तब तक तो गाना भी नहीं बजाया था. पढ़ा पहले
1: गाना
0: से.
1: पता है मुझे.
0: अच्छा, दैट्स व्हाई. मैं कहा म्यूजिक सुन के ही पता चल गया कौन सा गाना है. नाइस नाइस, ओके, गो फॉर इट. लेकिन गाना गाना पड़ेगा आपको, ठीक है? दूसरा गाना,
1: ठीक है.
0: ओके. इंदु जी, गो फॉर इट.

0: वाह, क्या आवाज है यार इंदु, तुम्हारी आवाज तो एकदम सुरीली सी, एकदम बिल्कुल मीठी मीठी सी। वाह यार, वेरी वेरी गुड, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज। एक जोरों शोरों से तालियां इंदु जी के लिए, कितनी प्यारी सी आवाज में उन्होंने गाना गाया। वाह, वेरी रेयरली डू वी गेट ऑडियंस मेंबर्स हु एक्चुअली कैन सिंग, सो एज अ सिंगर माई सेल्फ आई थिंक यू डिड ए फैंटेस्टिक जॉब। ओके, वाओ, यस, ओके इंदु, स्टे ऑन द लाइन, मैं ये गाना बजाती हूँ एंड देन आई विल टेल यू हाउ टू रिडीम योर प्राइज। ओके, ओके, स्टे ऑन द लाइन। ओके गाइज, आप ये गाना एंजॉय करिए, आई विल सी यू इन अ बिट।
1: कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई, एक तरफ

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: अच्छा मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग डायमंड रिंग्स पेंडेंट्स इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर चाहे प्रपोजल हो वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो अब शाइन डबल विद इन बजट Luxury Brilliance Celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
3: Discover Tassels by Renu in Frisco. Designer ethnic wear at great prices.
4: From elegant saris, lehengas to Indo-Western fusion sets and men's ethnic wear. Find festive and wedding styles.
3: For exclusive deals and collections, join Renu's weekly Facebook Live or follow them on Insta.
4: Visit tasselsbyrenu.com or call 563-508-5673. That's 563-508-5673. Tassels by Renu. Dress beautifully, celebrate stylishly.
5: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
6: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
5: Kya matlab?
6: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
5: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
6: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
5: Ab to karna hi padega, madam.
7: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
8: Yaar, festival season aa raha hai. और मेरी वाइफ ने शॉपिंग लिस्ट भी दे दी है
9: कितनी लंबी लिस्ट है
8: बस दो पेजेस इंडियन ड्रेसेस मिठाई नमकीन और हाँ एक पूजा मंदिर भी
9: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो SFL Worldwide है ना इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं पूजा मंदिर हो झूला हो या फर्नीचर सामान छोटा हो या बड़ा ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है
10: This festive season, India ko apne aur kareeb laayein with SFL Worldwide. Shipping and moving services from India to the USA and worldwide. Visit SFLWorldwide.com.
11: Dallas, are you ready? Jabu Times Group of Publications ab aa chuka hai digital media platform par. Kai million followers ke saath, both in English and Urdu. Led by the famous and fearless journalist Raja Zahid Akhtar Khanzada, jinhone apni kalam se social injustice aur corrupt practices ke khilaaf bharpoor awaaz uthai. Dallas aur duniya bhar ki taaza tareen khabar के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 682-551-6500 द जागो टाइम्स कमीशन जागो भी जगाओ भी एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर पनेशिया
12: एलविंग वालों ध्यान से सुनो ये सिर्फ म्यूजिक नहीं हिंट है Because the best chicken in Dallas is finally in Irving. Crispy, juicy, bold. The chicken Dallas has been craving after Plano and Richardson. Sal's Hot Chicken is now in Irving, bringing the crunch, the flavor, and the heat. You heard chicken, we heard Sal's. Grand opening on 10th October.
13: Hey, tumne kabhi insurance liya?
14: Liya.
13: Kabhi policy samajh bhi aaya?
14: Nahi aaya.
13: Mujhe bhi nahi aaya. आएगा भी कैसे इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस वेदर इट्स होम ऑटो हेल्थ और बिजनेस एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू होटल्स मोटेल्स गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर नो कंफ्यूजन नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-7772 That's 972-863-7772
15: Visit www.sanadainc.com today ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಈಗ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಚೆನ್ನೈ, ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ NCR ಎಂದ ಟಾಪ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಫ್ ಕೆಳಗೆ. 200+ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ದಿನಾಂಕ October 10th and 11th. ಸ್ಥಳ ಹಯಾತ್ ರೀಜೆನ್ಸಿ ಫ್ರಿಸ್ಕೋ. ಸಮಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಾತ್ರಿ 8. ಫ್ರೀ ಎಂಟ್ರಿ, ಫ್ರೀ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋವನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.
16: Yaro dosto, let us get on with the show. Yes, I hope you're enjoying your Wednesday. It is midweek aur aap hi ki tarah main bhi puri tarah se thak chuki hu. However, it is still not 10 o'clock yet. So I'm gonna be here until 10 o'clock. Lekin aap tab tak ke liye bahut mazedar mazedar gaane suniye aur baki sabko duniya ko bhool jao yaar. Enjoy the songs, enjoy the day, enjoy your life.

0: I love you.
1: तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाना.
0: तुम भी मुझे कभी छोड़ के मत जाना.
2: भाई कभी छोड़ के जाना या ना जाना हमारे हाथ में थोड़ी ना होता है. हम कोशिश ज़रूर कर सकते हैं लेकिन समटाइम्स सर्कमस्टांसेस अराइजेस एंड समटाइम्स इट बिकम्स लॉन्ग डिस्टेंस. अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ द रियलिटी ऑफ सिचुएशन. और वैसे अगर तुम रिलेशनशिप में आने से पहले ही अगर तुम कभी छोड़ के मत जाना इतना डर बैठा हुआ है तो देन आई थिंक जैसे हमने पहले भी बात करी थी दैट रिक्वायर्स सम काइंड ऑफ सेल्फ हीलिंग. बिकॉज यू शुड नेवर गेट सो अटैच टू समवन कि आप अपना ही अस्तित्व भूल जाएं किसी और के प्यार में. मतलब अपना अस्तित्व ना भूलें. चाहे प्यार आता जाता रहता है तो बहुत बढ़िया चीज़ है, नहीं है तो अपने आप को मत भूल जाना कभी. बिकॉज यू नो यू कैन लिव, यू शुड बी एबल टू लिव ऑन योर ओन विदाउट गेटिंग सो एंग्शियसली अटैच टू समवन एल्स. एनीवेज फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हुए गृह प्रवेश, देर इज ए प्रॉपर्टी एक्सपो विच इज हैपनिंग इन फ्रिस्को. इट इज गोइंग टू हैपन ऑन अक्टूबर 10th एंड 11th फ्रॉम 10 AM टू 8 PM एट हायट रीजेंसी इन फ्रिस्को. अगर आप इंडिया में घर खरीदने की सोच रहे हैं इधर एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और जस्ट फॉर लाइक अ सेकेंड होम और मे बी यू वॉन्ट रिटायर योर पेरेंट्स बाय अ हाउस फॉर देम वट एवर द रीजन माइट बी then you should definitely go check out this property expo because they have properties across Bengaluru, Hyderabad, Chennai, Mumbai, Pune and Delhi NCR. Lots of amazing options to for you guys to check out. 200 exciting projects all under one roof and you know life could be so much more easier. So definitely go check out Griha Pravesh. By the way, there's free parking and free entry so you don't have to worry about tickets or anything like that. All right, my friends, it is 8:51 on the clock. मैं आपके साथ रहने वाली हूँ only for one more hour. So without wasting time, let's just keep playing lots of music.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: ब्रेकफास्ट में क्या खाना है?
3: कीमा पराठा।
4: मम्मी ऑमलेट पराठा।
5: बेटी हलवा पूरी और तरकारी।
2: अब संडे को तीन अलग नाश्ता कौन बनाएगा?
6: सिग्नेचर क्विजीन बनाएगा। चूज एनी डिलीशियस ब्रेकफास्ट ऑप्शन, कीमा विद पराठा, हलवा पूरी विद तरकारी और ऑमलेट विद पराठा, सर्व्ड विद अ कप ऑफ हॉट कड़क चाय फॉर ओनली $8.99. अवेलेबल ड्यूरिंग वीकेंड ब्रेकफास्ट आवर्स एट सिग्नेचर क्विजीन इन प्लेनो। वीकेंड का मूड गर्मा गर्म देसी फूड। विजिट signaturecuisine.net.
7: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू. लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई. डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
8: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
9: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
8: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन, द फ्लेवर लाउंज.
9: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट.
10: अजी सुनते हो?
11: अजी नहीं, एजी सुनते हैं.
12: The OG of tax planning, AG FinTax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Fun Asia Radio.
13: It's the time to clock out. It's the time to catch up.
8: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame. जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन. एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM, ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री. ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
6: हैव यू थॉट अबाउट व्हाट वुड हैपन इफ यू और अ बिजनेस पार्टनर पास्ड अवे अनएक्सपेक्टेडली? The death of an owner can create serious challenges for a business, from ownership disputes to cash flow concerns and family financial needs. A properly structured buy-sell agreement funded with life insurance may help provide the funds needed to purchase a deceased owner's share of the business and allow for a smoother transition to the surviving owners. Life insurance can be used with different buy-sell structures, including cross-purchase and entity purchase arrangements. Protect your business, your partners, and your family. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603 to learn more about business continuation planning with life insurance. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult your attorney and tax advisor regarding buy-sell agreements. Not legal, tax, or investment advice.
14: Bindas, bolo. बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो.
15: जब गाना बोले बिंदास तो शाम भी होगी बिंदास. जॉइन बंदा बिंदास मारविन दास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट. पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार. सिर्फ फन एशिया रेडियो पर.
16: हाय डैलस, दिस इज रणबीर कपूर एंड यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो.

Guys, we are back. It is 9:10 on the clock. No, 10 baj chuke hain. And we are back. Yes, lekin aage gaane waane main request laga rahi hoon as aap mujhe call kar rahe hain, request kar rahe hain. So, without further ado, before we go into the next song, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप अपने कोई इवेंट प्लान करने की सोच रहे हैं डू रीच आउट टू वनेसा इवेंट्स बिकॉज यू नो व्हाट यू गाइस कैन फोकस ऑन बीइंग द गेस्ट्स एट योर ओन इवेंट लेकिन लेट समबडी एल्स डू ऑल द लॉजिस्टिक्स एंड ऑल द हैंडलिंग एंड एवरीथिंग फॉर यू ओके चाहे वो वेडिंग हो ग्रेजुएशन हो हाउस वार्मिंग हो स्पेशल सेलिब्रेशन हो वनेसा इवेंट्स ब्रिंग्स इट ऑल टुगेदर दे हैव डेकोर बाय सिग्नेचर इवेंट्स फोटोग्राफी हॉस्पिटैलिटी केटरिंग एक्सक्लूसिवली बाय बसेरा ग्रैंड कॉल हरी बसेरा एट 469-442-8770 यस वनेसा इवेंट्स योर सेलिब्रेशन पार्टनर This request goes out to, I don't know, Mr. Anonymous, who requested the song, but we're going to play it anyways.

And guys, of course, don't forget, agar aap Texas business owner hai and you're looking for a smarter commercial energy solution, then reach out to Tara Commercial because they have been helping Texas's businesses since 2002. Call 844-428-2808 or visit taraenergy.com today. Yes, guys, it is 9:36 on the clock. मैं आपके साथ सिर्फ 10-15 मिनट ही रहने वाली हूँ. आज हमने बातें कम करी है, गाने ज़्यादा बजाए हैं क्योंकि आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, इसीलिए आई एम ट्राइंग टू रेस्ट माई वॉइस. हाउएवर, आप बीच बीच में कभी कभार मेरी आवाज़ आपको वैसे भी आ जाती है, लेकिन गाइज डोंट वरी, होपफुली कल मैं घर जाके ना बहुत सारा स्टीमिंग करूँगी, गार्गल शार्गल करूँगी. उसके बाद टुमारो वी विल बी बैक विद अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड अ लॉट ऑफ फन फिल्ड कॉन्वर्सेशन अबाउट प्यार, मोहब्बत, रिलेशनशिप. एंड टुमारो इज ऑफ कोर्स थर्सडे, वीकेंड इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर. अगर आपने टेक्सस स्टेट फेयर नहीं देखा है तो ज़रूर जाना, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग. इट्स अ थिंग, लाइक इट्स सो बिग व्हाट आई हैव हर्ड. यू कैन, यू नो, इट्स अ वेरी टेक्सस थिंग टू डू, एंड इफ यू लव टेक्सस एज मच एज आई डू बिकॉज देर आर नो state income taxes, then we love Texas because it has no taxes. Ha ha ha. I'm sure that joke is not new, it's a very purana joke. I'm sure kisi na kisi ne to mara hoga, lekin aaj to main hi maar rahi hu. However guys, yeah, let's listen to the song and then come back. This is Ippy the Hippie. You're listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. Navratra bhi aa raha hai, Navratra season bhi aane wala hai, दुर्गा पूजा वगैरह भी हो रही है, DFW में बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं उसके, तो गरबा भी हो रहा है. मेक श्योर यू आर गोइंग फॉर एनी ऑफ दीज इवेंट्स, इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग. यू कैन ऑलवेज गूगल कि कहाँ पे क्या हो रहा है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं जो बोल रही थी वो ये है कि अब मैं भूल चुकी हूँ मैं क्या बोल रही थी, आई हैव लॉस्ट माई ट्रेल ऑफ थॉट. तो इसीलिए ये गाने सुनते हैं एंड देन मे बी तब तक मुझे याद आ जाएगा कि मैं क्या बोलने वाली थी.

Guys, this just came in a very, very sad news. Unfortunately, Nana Patekar, the revered actor, he just passed away around 30 minutes ago at the age of 75. और ये अभी अभी न्यूज आई है. इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था. मुझे आप लोगों ने, वन ऑफ यू गाइज कॉल्ड मी अप एंड एक्चुअली इन्फॉर्म्ड मी अबाउट हिज डेथ. एंड देन आई हैड टू डबल चेक इट ऑनलाइन. मैंने कहा नहीं यार, ये तो दिस इज रियल न्यूज, दिस इज नॉट अ फेक न्यूज. सो लेट्स गिव अ ट्रिब्यूट टू दी ऑफ कोर्स द अमेजिंग एक्टर नाना पाटेकर. This is a song called मैंने जब देखा था नाना, where नाना पाटेकर actually tries his hand at rapping. अगर आपको ये गाना नहीं पता, I'm sure ये गाना पता है, बहुत पॉपुलर था 90s में. So let's play it for him.

0: मेरे साथ डांस करोगे?
1: नहीं।
0: ए, जरा मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करो। अब तुम वही करोगे जो मैं चाहूंगी।

एंड गाइज वी आर बैक. यस अभी बज चुके हैं 9:50. दैट मीन्स मेरे जाने का टाइम हो चुका है. लेकिन डोंट वरी, मैं आपके साथ कल दोबारा आने वाली हूँ. ऑफकोर्स लाइक आई ऑलवेज कम हियर मंडे टू थर्सडे 7 to 10 PM. कल आई प्रोमिस यू वी गोना ब्रिंग सम जूसी टॉपिक्स टू टॉक ऑन सो दैट यू कैन कॉन्वर्स विथ मी, यू कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन विथ मी एंड वी विल टेक इट फॉरवर्ड. हम अपनी प्यारी प्यारी सी बातें करेंगे अबाउट लव एंड रिलेशनशिप्स एंड अटैचमेंट पैटर्न्स एंड थिंग्स लाइक दैट. लेकिन आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस. हैव अ ग्रेट रेस्ट ऑफ योर नाइट. दिस इज इपी द हिपी साइनिंग ऑफ.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड, डैलस में रेडियो का डैड, फनीशा 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: That garba was totally worth it. We had so much fun.
1: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
0: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
2: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your garba may end, but the party doesn't.
3: कस्टमर्स हिंदी में मिलते हैं, तेलुगु में भी, पंजाबी में भी और तमिल में भी, तो ऐड सिर्फ एक लैंग्वेज में क्यों?
4: फन एशिया नेटवर्क के साथ रीच कीजिए DFW के मल्टीपल देसीज को एक ही पावरफुल नेटवर्क पर. आज ही कॉल करें 4694243188 और ईमेल sales@funasia.net. फन एशिया नेटवर्क, वन नेटवर्क, मेनी लैंग्वेजेस एंड मैक्सिमम रीच.
5: हाय, दिस इज रानी मुखर्जी. यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो.

Spreading love and understanding with best music. 104.9 FM.

0: Phoenicia Radio, 104.9 FM. 104.9
1: FM. हमारे साथ मेवाड़ चलेंगी पद्मावती, हमारी पत्नी बनकर.

0: help me.
1: Kaash,
0: please help me.
1: Tu meri aankhein bhar de.
2: Aise kaise gayab ho gaye?
3: Pata nahi
2: sir. Recordings lined up hai, shows organized kiye hue hai. कौन करेगा ये सब? पता लगाओ कि कहाँ गए ये दोनों.
3: जी सर, पता लगा रहा हूँ.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

0: capable of anything.
1: कौन है ये लोग, कहां से आते हैं?
2: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

नमी है। एक रात वो गया था जहाँ रात रुक के, अब तक रुका हुआ हूँ वहीं रात रुक के। डोंट चेंज दैट डायल, कीप इट राइट हियर ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। जैसे वर्कआउट किया हो आपने, मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनीशर रेडियो।

Thank you for tuning into 104.9 FM Fun Asia Radio. एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है. मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं. छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे. जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट. सो कमाल धमाल, फन, मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ.

तुम्हारे गम की डली उठाकर ज़बां पे रख ली है, देखो मैंने ये कतरा कतरा पिघल रही है, मैं कतरा कतरा ही जी रहा हूँ।

0: ऑर्डर ऑर्डर मिस्टर इंप्रेशंस कैंपेन का रिजल्ट
1: योर ऑनर हजारों लोगों ने ऐड देखा
0: मिस क्लिक्स
2: 100 लोगों ने क्लिक भी किया
0: कस्टमर्स कितने आए
3: एविडेंस फाउंड एक्चुअल कस्टमर विजिट इज लेस देन 10
2: मार्केटिंग में क्लिक्स नहीं कस्टमर्स मैटर करते हैं विद स्मार्ट रीच AI रीच लोकल कस्टमर्स इवन कंपेटिटिव विजिटर्स अक्रॉस रेडियो डिजिटल स्ट्रीमिंग टीवी एंड ऑडियो measure calls bookings redemptions and actual visits visit smartreachai.us smartreachai turn attention into customers smartreachai a Phanasia network product
4: hello guys this is me Kinjal Dave and you are listening and watching Phanasia radio
5: मुश्किलें भी शर्मा जाती हैं। तो आप अपनी स्माइल से अपनी मुस्कुराहट से आधी से ज्यादा मुश्किलों को तो वैसे ही मात दे सकते हैं और बाकी आधी को मात देने के लिए फन एशिया रेडियो के साथ बने रहिए।

तन्हाई में, अकेले में, महफिल में और मेले में, आपके साथ है फनीशिया।

दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक गोल्डन ट्रिक याद रखें। Declutter your desk, declutter your mind. सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि thoughts और दिमाग की भी जरूरी है। So clean space, clean thoughts and clean vibes only. यही है Fun Asia Radio का अंदाज। सुनते रहिए हमें और इस next गाने को।

जिंदगी एक लंबी फिल्म है और हर दिन एक नया सीन। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जब भी मुश्किल हो, समझ लो कि डायरेक्टर ऊपर वाला है और स्क्रिप्ट उसकी सुपर हिट ही होती है। बस पॉपकॉर्न लेकर चिल करो, बिकॉज लाइफ इज वर्थ वॉचिंग, जस्ट लाइक वन एजर रेडियो इज वर्थ लिसनिंग।

0: रियलिटी चेक अक्सर डर बीमारी का नहीं उसके पकड़े जाने का होता है, लेकिन वॉट इफ में मत अटके, एनुअल चेकअप करवाइए।
1: विजिट एलन इंटरनल मेडिसिन एंड ट्रस्ट डॉक्टर वनीता एंड हर टीम फॉर एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग्स एंड वेट मैनेजमेंट। न्यू पेशेंट्स विद सेम डे अपॉइंटमेंट्स वेलकम। कॉल 4696499995 और विजिट aimallen.com।
2: बेटा 95% आए?
3: हाँ मम्मी।
2: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
4: मेरा?
2: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
4: वो
5: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintax.com। कॉल 9726188555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी।
6: सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: रेडी फॉर अ न्यू अपॉर्चुनिटी एंड अ फ्रेश स्टार्ट इन योर करियर? वी आर लुकिंग फॉर एनर्जेटिक एंड मोटिवेटेड प्रोफेशनल्स टू जॉइन आवर टीम अक्रॉस मल्टीपल पोजीशंस। इफ यू हैव एन एक्सपीरियंस इन मीडिया, सेल्स or related fields, we'd like to hear from you. If you're confident, a strong communicator, multilingual and ready to take on something new, this could be your opportunity. Apply today and become a part of our growing team. Mail at careers@funasia.net.

रात तो वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी। देखना ये है कि संगीत की ये सवारी आपको कहाँ तक ले जाएगी। सुरों का सफर, आपका हम सफर। फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

हेलो एवरीवन, एक सिंपल ट्रिक फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। अपने आप को आईने में देखिए और 30 सेकंड्स के लिए मुस्कुराइए। अजीब तो लगेगा, फनी भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि यू आर जेन्युइनली हैप्पी। वो कहते हैं ना, मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत जेवर है, सो इस जेवर को पहने रखिए, स्माइल करिए और डैलस की ट्रैफिक को थोड़ा हल्के में लीजिए इस गाने के साथ।

0: नेकी कर दरिया में डाल, ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई
1: ऑर्डर ऑर्डर मिस्टर इंप्रेशंस कैंपेन का रिजल्ट
2: योर ऑनर, हजारों लोगों ने ऐड देखा,
1: मिस क्लिक्स
3: 100 लोगों ने क्लिक भी किया,
1: कस्टमर्स कितने आए,
4: एविडेंस फाउंड, एक्चुअल कस्टमर विजिट इज लेस देन 10।
5: मार्केटिंग में क्लिक्स नहीं, कस्टमर्स मैटर करते हैं। विद स्मार्ट रीच AI, रीच लोकल कस्टमर्स, इवन कम्पेटिटिव विजिटर्स अक्रॉस रेडियो, डिजिटल, स्ट्रीमिंग टीवी एंड ऑडियो, मेजर कॉल्स, बुकिंग्स, रिडेम्पशंस एंड एक्चुअल विजिट्स, विजिट smartreachai.us। SmartReach AI, turn attention into customers. SmartReach AI, a Phanasia Network product.
6: Hi, this is Salim Merchant from Salim Suleiman, and you're listening to me on Phanasia Radio.

हेलो एवरीवन, यू ट्यून्ड इन टू 104.9 एफएम फनी शेयर रेडियो। क्या आपको पता है कि असल में चॉकलेट वंस यूज्ड टू बी अ करेंसी? जी हाँ, माया सिविलाइजेशन में चॉकलेट वाज मनी। इमेजिन आज के जमाने में अगर आपकी सैलरी चॉकलेट्स में मिलती हो तो क्या होगा? डालस में सब सारे के सारे जिम फुल हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जिंदगी की मिठास तो जिंदगी की मिठास है। मजा लीजिए जिंदगी की मिठास का फनी शेयर रेडियो के साथ।

नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स से और नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हो और आपके सुकून को बर्बाद कर दे, इससे बेहतर है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल रेडियो पे ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ इन जबरदस्त गानों को। कीप एंजॉयिंग।

दवा भी काम ना आए कोई दुआ न लगे, दवा भी काम ना आए कोई दुआ न लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा न लगे।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो देखो,

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं,
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: Finito.
1: Lights, Mike, Bollywood, Falesia.

0: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: Order, order. Mr. Impressions, campaign ka result.
4: Your Honor, hazaron logon ne ad dekha.
3: Miss Clicks?
5: 100 logon ne click bhi kiya.
3: Customers kitne aaye?
6: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
7: Marketing mein clicks nahi, customers matter karte hain. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smart Reach AI, turn attention into customers. Smart Reach AI, a Funasia Network product.
8: Hi, this is Deepika Padukone and you're listening to Funasia Radio.

0: पटक मटक लौंडो के दिल पटक पटक सांसे जाए अटक अटक आता माजी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए कम ऑन बेबी किकेट किकेट काटू तेरी टिकेट टिकेट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट
1: बड़ो लो।

0: वाला सा रंग तेरा बावला सा ढंग तेरा मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर आजा चला ले चक्कर चक्कर बाकी के लौंडे पकड़ पकड़ I am the baddest motherfucker.
1: Heartbeat.

0: फन की फ्रीक्वेंसी बजे दिन रात।
1: Mm-hmm.

0: ऑर्डर ऑर्डर मिस्टर इंप्रेशंस कैंपेन का रिजल्ट
1: योर ऑनर हजारों लोगों ने ऐड देखा
0: मिस क्लिक्स
2: 100 लोगों ने क्लिक भी किया
0: कस्टमर्स कितने आए
3: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
2: Marketing में clicks नहीं, customers matter करते हैं. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smart Reach AI, turn attention into customers. Smart Reach AI, a Fanasia Network product.
4: Hi, this is Ranveer Shori and you're listening to me on Fun Asia Radio.

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी
1: तो फिर सिर्फ फन एशिया ही सुनूंगा।
2: इश्क की धुन रोज जलाए उठता धुआं तो कैसे छुपाए।
3: सुधी ये शहर ला கமங்க முங்க வரல, அப்புறம் எப்படி முன்னுக்கு வருது? என்ன விட்டுருங்க,
2: அக்கியா கரே ஜி ஹசூரி

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं फन एशिया पर ही आते हैं।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। डैलस में रेडियो का डैड फनीशिया 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। ये यादें, हाय यादें, यादें।

0: It is 8 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
9: कौन सा?
8: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
9: अरे सारे तो सेम है.
8: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
9: ओ हाँ, ये तो अलग है.
10: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
11: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Omar Khwaja.
10: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
12: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
13: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
12: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन, द फ्लेवर लाउंज.
13: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. The Flavor Lounge, Harbhai Superhit.
10: Discover Tassels by Renu in Frisco. Designer ethnic wear at great prices.
14: From elegant saris, lehengas to Indo-Western fusion sets and men's ethnic wear. Find festive and wedding styles.
10: For exclusive deals and collections, join Renu's weekly Facebook Live or follow them on Insta.
14: Visit tasselsbyrenu.com or call 563-508-5673. That's 563-508-5673. Tassels by Renu. Dress beautifully, celebrate stylishly.
15: अजी सुनते हो?
16: अजी नहीं, एजी सुनते हैं.
17: The OG of tax planning, AG FinTax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
18: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस.
19: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
18: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
19: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
18: ये क्या होता है?
19: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
17: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
10: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन अवेलेबल.
7: हर मोहब्बत की आवाज, द वन एंड ओनली लिविंग लेजेंड राहत फतेह अली खान.
5: राहत फतेह.
10: Experience Once Upon a Time World Tour 2026. Rahat Fateh Ali Khan aur unke bete Shehzaman Ali Khan ek hi stage par.
7: Brought to you by Rehan Siddiqui, Dr. Yasmin Qureshi and True Payment Solutions. Friday, October 16, 8:30 PM, Comerica Center, Frisco.
10: Grand sponsor Karahi Point Plano ke exclusive concessions ke saath.
7: Tickets on Ticketmaster and Soleha.com.
6: Jag ghume aathare jaisa na koi.
3: Hi, this is Priyanka Chopra and you're listening to Fun Asia Radio.
0: Today is Thursday, the 8th of October, and we should be touching, just like yesterday. Yesterday we touched 89 degrees, so very close to 90. It is rather warm out there. No rain in the forecast, but things will change, not yet, next week. A week from, let's say, today, maybe Thursday next week. We'll keep you updated right here on the airwaves of the Fun Asia Network.

0: I'm taking your calls, 972-235-5555. But let's first listen to this very, very powerful dialogue by Nana Patikar.
1: कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो कैसे बताऊं कैसे बताऊं ए कैसे बताऊं मैं तुम्हें तुम धड़कनों का गीत हो जीवन का तुम संगीत हो तुम जिंदगी तुम बंदगी तुम रोशनी तुम ताजगी तुम हर खुशी तुम प्यार हो तुम प्रीत हो मनमीत हो आंखों में तुम यादों में तुम सांसों में तुम आहों में तुम नींदों में तुम ख्वाबों में तुम हो मेरी हर बात में तुम हो मेरे दिन रात में तुम सुबह में तुम शाम में तुम सोच में तुम काम में मेरे लिए पाना भी तुम मेरे लिए खोना भी तुम मेरे लिए हंसना भी तुम मेरे लिए रोना भी तुम और जागना सोना भी तुम जाऊं कहीं देखूं कहीं तुम हो वहां तुम हो वहीं कैसे बताऊं मैं तुम्हें तुम बिन तो मैं कुछ भी नहीं कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो ये जो तुम्हारा रूप है ये जिंदगी की धूप है चंदन से तरशा है बदन बहती है जिसमें एक अगन ये शोखियां ये मस्तियां तुमको हवाओं से मिली जुल्फे घटाओं से मिली होठों में कलियां खिल गई आंखों को झीलें मिल गई चेहरे में सिमटी चांदनी आवाज में है रागिनी शीशे के जैसा अंग है फूलों के जैसा रंग है नदियों के जैसी चाल है क्या हुस्न है क्या हाल है ये जिस्म की रंगीनियां जैसे हजारों तितलियां बाहों की ये गोलाइयां आंचल में ये परछाइयां ये नगरियां है ख्वाब की कैसे बताऊं मैं तुम्हें हालत दिले बेताब की कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम धर्म हो मेरे लिए ईमान हो तुम्ही इबादत हो मेरी तुम्ही तो चाहत हो मेरी तुम्ही मेरा अरमान हो तकता हूं मैं हर पल जिसे तुम्ही तो वो तस्वीर हो तुम्ही मेरी तकदीर हो तुम्ही सितारा हो मेरा तुम्ही नजारा हो मेरा यूं ध्यान में मेरे हो तुम जैसे मुझे घेरे हो तुम पूरब में तुम पश्चिम में तुम उत्तर में तुम दक्षिण में तुम सारे मेरे जीवन में तुम हर पल में तुम हर चिन्ह में तुम मेरे लिए रास्ता भी तुम मेरे लिए मंजिल भी तुम मेरे लिए सागर भी तुम मेरे लिए साहिल भी तुम मैं देखता बस तुमको हूं मैं सोचता बस तुमको हूं मैं जानता बस तुमको हूं मानता बस तुमको हूं तुम ही मेरी पहचान हो कैसे बताऊं मैं तुम्हें देवी हो तुम मेरे लिए भगवान हो कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो
0: A true passionate poetic expression of love. From the movie Vujood, starring Nana Patikar, and he said these words for Madhuri Dixit. Part of that film, Bollywood star Nana Patikar, ladies and gentlemen, has died in the early hours of this morning at his home in Goa following a cardiac arrest, and he was 75. The Maharashtra government has announced a state funeral, and tributes have poured in from across the country. Prime Minister Modi praised his intensity, individuality, and unmistakable presence, noting that he gave characters that will be remembered for generations. For nearly five decades, he was the kind of actor who didn't merely play a role. He'd become one with that character, specialized in playing complex, volatile, and morally grey characters, most of which are iconic, despite not being protagonists of their stories, but made him stand out. He died in Goa, and his last rites will be held in Pune. If there

0: I will have the world news coming up for you. We'll do that in the half hour segment.
1: Desi flavors bhi aur Texas ke favorites bhi. Ab sab kuch milega ek hi jagah. HEB mein. Sona Masoori Rice, Nanak Paneer, Pale Ji Biscuits aur bahut kuch. Wahi authentic swaad jiske saath aap bade hue hain. Aur saath hi HEB ke exclusive Texan favorites jo aapko yahan pasand hain. Ab ek hi shopping trip mein zyada kaam niptaiye. Aur is summer zaroor dekhiye. HEB ke naye DFW stores. Mid-Cities, Irving aur Murphy mein khul rahe hain. To aaj hi apne nazdeeki HEB par jaye aur khareediye apne traditionals aur Texan favorites. HEB. Here everything is better.
2: What if your next home came fully loaded with over $35,000 in premium appliances, electronics and designer furnishings included? This nearly new home in Cambridge Crossing, Selina first occupied in January, is available as the seller relocates. Enjoy resort-style amenities, upgraded interiors and truly move-in ready. Just bring your suitcase. Buyer's agents, get your client under contract by October 15th and earn an additional $2,000 bonus. Call Navneeta Khemka with Keller Williams Realty at 347-449-4242.
3: Every home has a story. Let's create yours together.
4: Agar main kahun tumhara cholesterol 300 hai aur blood pressure 160 to kya kahoge?
5: Kya?
6: Wake up!
7: ड्रीम में रियलिटी चेक अक्सर डर बीमारी का नहीं उसके पकड़े जाने का होता है लेकिन व्हाट इफ में मत अटके एनुअल चेकअप करवाइए
2: विजिट एलन इंटरनल मेडिसिन एंड ट्रस्ट डॉक्टर वनीता एंड हर टीम फॉर एनुअल फिजिकल्स प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग्स एंड वेट मैनेजमेंट न्यू पेशेंट्स विद सेम डे अपॉइंटमेंट्स वेलकम कॉल 469-649-9995 और विजिट aimallen.com
8: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Umar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Umar Khawaja, your legal lifeline.
9: अगर किसी चीज को दिल से चाहो
10: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं
11: डील कहाँ
10: सिंपल पास्या पे इंट्रोड्यूसिंग पास्या डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ ओपन पास्या सी व्हाट्स अराउंड यू फाइंड अ डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन
11: डाउनलोड पास्या दैट्स PAASYA टुडे बिकॉज डील्स दूर नहीं पास है
12: बेटा 95% आए
13: हाँ मम्मी
12: गुड अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए
14: मेरा
12: हाँ प्रॉफिट मार्जिन कैश फ्लो टैक्स प्लानिंग बिजनेस गोल्स सारे अकाउंट्स अपडेटेड
14: वो
15: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने AG Fintax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
16: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
17: Marvin Das and Bindas Services present the 6th Annual South Asian Food Festival on 1st November from 12 noon to 8 p.m. at the Sound Venue in Koppel. Enjoy food, shopping, dance and live music with free entry and parking. Vendors and exhibitors showcase your business to thousands. Call Marvin at 972-302-7012 to reserve your spot.

0: पंजाब बाय पेज थ्री नाउ इन इरविन. स्वाद पंजाब का अंदाज पेज थ्री का.
1: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
2: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
3: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
4: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
3: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
5: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
6: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
5: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन, द फ्लेवर लाउंज.
6: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट.
7: What would happen to your business if a key owner, partner, or top employee passed away unexpectedly? Would revenue, credit, client relationships, or daily operations be affected? KeyPerson Life Insurance can help provide funds to support the business during a difficult transition. Protect the people who help keep your business running. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Benefits and tax treatment depend on individual circumstances. Consult qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
8: Want to explore properties in India? You don't need to fly to India. The Gruh Pravesh India Property Expo is coming to Frisco. Meet top developers from Bengaluru, Hyderabad, Mumbai, Pune, Chennai and Delhi NCR. Explore 200 plus projects for your dream home or next investment. October 10th and 11th, Hath Regency Frisco, 10 a.m. to 8 p.m. Free entry, free parking. Gruh Pravesh India Property Expo by My Square Feet.

0: praiseworthy performances.
1: जमीन के तह से मिलके भी अपने अस्तित्व को नष्ट नहीं होने देता, लेकिन इतना सोचने के लिए वक्त है किसके पास? क्योंकि साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है।

0: Hold on this one, so here it is for you. For none other than Madhuri Dixit.
1: Kaise bataun? Hey, kaise bataun main tumhe? Tum dhadkanon ka geet ho, jeevan ka tum sangeet ho. तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम हर खुशी, तुम प्यार हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो. आंखों में तुम, यादों में तुम, सांसों में तुम, आहों में तुम, नींदों में तुम, ख्वाबों में तुम. तुम हो मेरी हर बात में, तुम हो मेरे दिन रात में, तुम सुबह में, तुम शाम में, तुम सोच में, तुम काम में. मेरे लिए पाना भी तुम, मेरे लिए खोना भी तुम, मेरे लिए हंसना भी तुम, मेरे लिए रोना भी तुम, और जागना सोना भी तुम. जाऊं कहीं, देखूं कहीं, तुम हो वहां, तुम हो वहीं. कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम बिन तो मैं कुछ भी नहीं. कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो? ये जो तुम्हारा रूप है, ये जिंदगी की धूप है. चंदन से तरशा है बदन, बहती है जिसमें एक अगन. ये शोखियां, ये मस्तियां तुमको हवाओं से मिली, जुल्फे घटाओं से मिली, होठों में कलियां खिल गई, आंखों को झीले मिल गई. चेहरे में सिमटी चांदनी, आवाज में है रागिनी, शीशे के जैसा अंग है, फूलों के जैसा रंग है, नदियों के जैसी चाल है. क्या हुस्न है, क्या हाल है. ये जिस्म की रंगीनियां जैसे हजारों तितलियां, बाहों की ये गोलाइयां, आंचल में ये परछाइयां, ये नगरिया है ख्वाब की. कैसे बताऊं मैं तुम्हें हालत दिले बेताब की. कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो? कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम धर्म हो, मेरे लिए ईमान हो, तुम ही इबादत हो मेरी, तुम ही तो चाहत हो मेरी, तुम ही मेरा अरमान हो. तकता हूं मैं हर पल जिसे, तुम ही तो वो तस्वीर हो, तुम ही मेरी तकदीर हो, तुम ही सितारा हो मेरा, तुम ही नजारा हो मेरा. यूं ध्यान में मेरे हो तुम, जैसे मुझे घेरे हो तुम. पूरब में तुम, पश्चिम में तुम, उत्तर में तुम, दक्षिण में तुम, सारे मेरे जीवन में तुम, हर पल में तुम, हर चिन्ह में तुम. मेरे लिए रास्ता भी तुम, मेरे लिए मंजिल भी तुम, मेरे लिए सागर भी तुम, मेरे लिए साहिल भी तुम. मैं देखता बस तुमको हूं, मैं सोचता बस तुमको हूं, मैं जानता बस तुमको हूं, मैं मानता बस तुमको हूं. तुम ही मेरी पहचान हो. कैसे बताऊं मैं तुम्हें, देवी हो तुम मेरे लिए भगवान हो. कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो? कैसे बताऊं मैं तुम्हें.
0: That baritone voice and the emotion of total submission.

0: Congratulations. We are all eagerly awaiting your message for the audience.
1: सभी मेरे हैं हिंदी में समझेंगे हिंदी आप भी समझते हैं बोलने दीजिए मैसेज कुछ नहीं जो देना था वो मेहुल ने क्रांतिवीर फिल्म के जरिए दिया है वही कहना है मेहुल ये जो मिला है तुम्हारी वजह से मिला है मैं तेरा आभारी हूं सारे प्रेक्षक जो है मेरे चाहने वाले हैं एक्टर तो मैं दिखता ना हूं हमाल की शक्ल पाने के बावजूद भी आज मुझे ये मिला मैं खुश हूं आप लोगों में से एक हूं आज तक मुझे ऐसे लगता था कि फिल्म फेयर के अवार्ड खरीदे जाते हैं मुझे मिलने के बाद लगता है नहीं खरीदा जाता हर एक को ऐसा ही लगता है अगर नहीं मिलता तो मैं बोलता वहां से ये उन्होंने खरीदा क्या करूं आखिर में इंसान हूं ना ऐसे ही लगेगा शुक्रिया शुक्रिया अनिल बाकी के मेरे जो बाकी के नॉमिनीज जो थे किसी को भी मिलता मुझे इतना ही आनंद होता क्योंकि वो मेरे अपने परिवार के सभी हैं
2: He, of course, had awards too. 3 National Film Awards, Filmfare honors across acting categories, and the Padma Shri in 2013. But his legacy isn't really a list of trophies. It's a voice. It's a pause. It is the way he could make a room uncomfortable with one look and then make everyone laugh seconds later. That, ladies and gentlemen, was Mr. Nana Patekar. Never really belonged to one category. Not a hero, not a villain, not a comedian, not a character actor. He was all of them. This was a very, very humble tribute to him. When the camera stopped, he was simply Nana. That may be the part people will miss the most. It is Nana Patekar who died this morning in Goa due to a cardiac arrest and we will always remember him jab nikalna hai his candid words on death from an old interview resurfaced after his passing this morning no drama in the way he spoke about death no elaborate philosophy no attempt to make mortality sound profound I am not scared of death jab nikalna hai he said I hope you will appreciate this very humble tribute to Nana Patekar as a special show this morning. It is right now 11 o'clock.
3: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
4: Official tax and finance partner, AG FinTax.
3: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
4: In association with Passion Health Primary Care.
5: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
6: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels, India's finest, Dallas's newest.
7: Call 857-891-8942 today.
8: Order, order. Mr. Impressions, campaign ka result.
9: Your Honor, hazaron logon ne ad dekha.
8: Miss Clicks.
10: 100 logon ne click bhi kiya.
8: Customers kitne aaye?
11: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
12: Marketing mein clicks nahi, customers matter karte hain. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smart Reach AI, turn attention into customers. Smart Reach AI, a Fun Asia Network product.
13: रेस्टोरेंट चूज करना हो
7: गूगल रिव्यूज। होटल बुक करना हो गूगल रिव्यूज। लेकिन बच्चों के डॉक्टर की जब बात आए तो एक ही रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है, माँ का रिव्यू।
13: इसलिए डॉक्टर फरहाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ DFW चाइल्ड मॉम अप्रूव्ड पीडियाट्रिशियन फॉर 4 कंसेक्यूटिव इयर्स 2023 through 2026। मीट डॉक्टर निशात फरहाद एट पैशन हेल्थ पीडियाट्रिक्स, सर्विंग फैमिलीज एट फ्रिस्को एंड ऑब्री, स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ऑगस्ट। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज एवरी हेल्थी स्माइल बिगिंस विद ट्रस्टेड केयर। कॉल 214-666-6259 एंड शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट्स टुडे।
14: बेटा 95% आए?
15: हां मम्मी।
14: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
16: मेरा?
14: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
16: वो
13: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड CFO सर्विसेज। विजिट agfintechs.com। कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
17: वेलकम टू द शादी मेमोरी टेस्ट। रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करते हैं। डेकोरेशंस का कलर,
18: नेक्स्ट क्वेश्चन।
17: ब्राइड की एंट्री सॉन्ग,
18: याद नहीं।
17: बफे में क्या था?
18: चना पापड़ी चाट, बिहारी कबाब, दिल्ली निहारी, अचारी चिकन, मटन बिरयानी।
13: शादी में बाकी डिटेल्स भूल सकते हैं, लेकिन खाना कभी नहीं। गैदरिंग्स 50 की हो या 500 गेस्ट के लिए, चूज सिग्नेचर कुजीन्स, कस्टमाइज्ड केटरिंग, लाइव कुकिंग स्टेशंस एंड प्रोफेशनल सर्विस। कॉल 972-905-5449। सिग्नेचर कुजीन, द टेस्ट योर गेस्ट्स विल रिमेम्बर।
19: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
20: लिया।
19: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
20: नहीं आया।
19: मुझे भी नहीं आया।
21: आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है। इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jamani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
22: Visit www.sanadainc.com today.
23: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
24: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
25: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
26: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
25: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
27: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
13: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर।
28: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
13: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानी और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं।
28: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी।
27: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड। बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर।

स्वागत करती हूँ तमाम सुनने वालों का. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर. मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात, एंड आई एम गोइंग टू बी विथ यू टिल 2:30 PM टुडे. दैट्स राइट, हमारा आपका काफ़ी लंबा साथ होगा आज का. एंड सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कीप अ नाइस वैरायटी ऑफ म्यूजिक ताकि आप सही मानों पर एंटरटेन हो सके. सो देयर इज गोइंग टू बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेगमेंट्स दैट आई विल डू थ्रू आउट दीज 3 hours. नाउ दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज ब्रॉट टू यू बाय श्री कृष्णा ज्वेलर्स. डिस्कवर श्री कृष्णा ज्वेलर्स एंड एक्सप्लोर अ स्टनिंग हैंडक्राफ्टेड कलेक्शन ऑफ गोल्ड, डायमंड्स, पोलकी एंड मोर. हर ओकेजन के लिए खास स्पेशल डिजाइन है उनके पास. सो विजिट देयर शोरूम विच इज ऑन मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को, या फिर आप उन्हें कॉल कर सकते हैं 4302311111. और आज हम आपको खुशामदीद कहेंगे महफिले गजल में.

जगजीत सिंह साहब की आवाज में सुन रहे थे आप सरफरोश फिल्म से ली गई ये गजल. उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी. फॉर दोज ऑफ यू जस्ट ट्यूनिंग इन, अ वेरी गुड मॉर्निंग. इट इज 24 मिनट्स पास्ट 11 ऑन दिस 8th of October 2026. मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात, फिलिंग इन फॉर आर यूजुअल आरजेस. I believe someone's unwell, इसीलिए आज हम यहाँ मौजूद हैं आपको एंटरटेन करने के लिए, और इसीलिए आपके लिए सजाई है ये महफिल गजल जिसमें हम आपको सुनवाएंगे बहुत ही सिलेक्टेड फिल्मी गजलियात. उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा सिलेक्शन पसंद आएगा.

चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। सुन रहे थे आप गुलाम अली साहब की आवाज में निकाह फिल्म से ली गई ये गजल। आई होप यू एंजॉयड। आई थिंक निकाह फिल्म से थी, आई एम ट्राइंग टू रिमेम्बर, आई बिलीव इट वॉज। Anyway, hope you guys are doing well. If you just tuned in, I'm your host, Amreen Hasna. तो आज आपकी खिदमत में 12:30 बजे तक पेश किया जाएगा ये सेगमेंट महफिल गजल, जिसमें हम आपको फिल्मी गजलियात सुनवा रहे हैं। This part of our show brought to you by My Time Equity, led by CPA Sudhir Pai. My Time Equity offers personalized strategies for portfolio management, real estate alternative investments and retirement planning. आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 4697021272। एक खूबसूरत शेर इस अगली गजल से पहले। हद है यार तुम्हारी भी, खेल तुम्हारा और बारी भी, कैसे कर लेते हो तुम यारी भी मकारी भी।

लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म रजिया सुल्तान से ली गई ये गजल सुन रहे थे आप। उम्मीद करती हूँ कि हमारे तमाम सुनने वाले जहाँ भी हैं खैरो आफियत से हैं। महफिल गजल का सेगमेंट पेश कर रही हूँ आपकी होस्ट आपकी दोस्त अमरीन हसनात।

0: उमराव जान से ली गई ये गजल तलत अजीज साहब की फरमाइश पर, नॉट फरमाइश पर, उनकी आवाज में सुन रहे थे आप. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू महफिले गजल ऑन 104.9 FM. दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज प्राउडली ब्रॉट टू यू बाय AG फिनटेक्स, अ ट्रस्टेड टैक्स फर्म जो आपके लिए अकाउंटिंग, पेरोल, बुक कीपिंग और बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज ऑफर करते हैं, सिर्फ इंडिविजुअल्स के नहीं बल्कि बिजनेसेस के लिए भी. एंड आप उन्हें कॉल कर सकते हैं 4699429888 पर, या वेबसाइट पे विजिट कीजिए विच इज agfintechs.com. और हाँ, AG Fintechs का एक लाइव वेबिनार होने वाला है, एंड दैट्स अ फ्री वेबिनार वेयर यू कैन डिस्कवर टैक्स सेविंग अपॉर्चुनिटीज, रिटायरमेंट प्लानिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स एंड ईयर एंड टैक्स स्ट्रेटजी विद मिस्टर अनिल गांधी. ये होने जा रहा है संडे अक्टूबर 11th को सुबह के 11 बजे. बट यू विल नीड टू रजिस्टर फॉर इट, और वो वेब एड्रेस उनका वेबसाइट का ही एड्रेस है विच इज agfintechs.com. सो गो अहेड एंड विजिट दिस वेबसाइट एंड रजिस्टर फॉर द फ्री वेबिनार एंड सिक्योर योर स्पॉट. महफिले गजल का सेगमेंट हम कमर्शियल ब्रेक के बाद कंटिन्यू रखेंगे. जैसे कि मैंने बताया, आज हम आपको इस सेगमेंट में फिल्मी गजलियात सुनवा रहे हैं, एंड दिस विल कंटिन्यू ऑन टिल 12:30 PM. 12:30 पर हम एक बॉलीवुड का डिफरेंट सेगमेंट शुरू करेंगे एंड फोकस ऑन नाना पाटेकर.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG Fintax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: As a Texas state legislator, James Tallarico has stood with the South Asian community and fought to lower our costs. He believes that being a Texan isn't about where you come from or how you pray. It's about how you love your neighbors. He's running for U.S. Senate to stand up for all Texans and end the corruption raising our prices. Vote to bring light and hope to Texas. Vote James Tallarico.
9: I'm James Tallarico and I approve this message.
10: Paid for by Tallarico for Texas.
11: Dil ki baat kisse kahein?
12: Pandit Gurudev se. 35 saal se zyada ke experience ke saath, Pandit Gurudev karte hain kundali reading, birth chart analysis, palm reading aur face reading. ब्लैक मैजिक और नेगेटिव एनर्जी रिमूवल में एक्सपर्टाइज. प्यार, शादी या रिश्तों की उलझन हो तो पर्सनल गाइडेंस लीजिए. कॉल 4695811777. दैट्स 4695811777. पंडित गुरुदेव, आइए अपनी बात कहिए.
13: एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, इट्स टाइम टू टर्न अप द फ्लेम. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, sizzling flavors और चटपटे appetizers make an ordinary weekday feel like a delicious celebration. Every Monday through Friday from 5 to 8 p.m. Order any two entrees and get one appetizer absolutely free. Bring your family, friends and your appetite. Visit Tandoori Flame in Garland. Terms and conditions apply.
14: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
15: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
16: अगर मैं कहूँ तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल 300 है और ब्लड प्रेशर 160 तो क्या कहोगे?
17: क्या?
18: Wake up!
19: ड्रीम में रियलिटी चेक अक्सर डर बीमारी का नहीं उसके पकड़े जाने का होता है, लेकिन व्हाट इफ में मत अटके, एनुअल चेकअप करवाइए।
15: विजिट एलन इंटरनल मेडिसिन एंड ट्रस्ट डॉक्टर वनीता एंड हर टीम फॉर एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग्स एंड वेट मैनेजमेंट। न्यू पेशेंट्स विद सेम डे अपॉइंटमेंट्स वेलकम। कॉल 4696499995 और विजिट aimallen.com।
20: हो सकता है आपका नेक्स्ट कस्टमर भी आपको ही ढूंढ रहा हो। जॉइन पास या एंड मार्केट योर बिजनेस फॉर फ्री। शोकेस योर डील्स एंड गेट डिस्कवर्ड बाय कस्टमर्स नियर बाय। पास या बी वेयर योर कस्टमर्स आर लुकिंग।
21: ये तारा वो तारा हर तारा।
15: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
22: ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಈಗ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಚೆನ್ನೈ, ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ NCR ಎಂದ ಟಾಪ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಫ್ ಕೆಳಗೆ. 200+ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ದಿನಾಂಕ October 10th and 11th. ಸ್ಥಳ ಹಯತ್ ರೀಜೆನ್ಸಿ ಫ್ರಿಸ್ಕೊ. ಸಮಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಾತ್ರಿ 8 PM. ಫ್ರೀ ಎಂಟ್ರಿ, ಫ್ರೀ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋವನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.

जगजीत सिंह की आवाज में फिल्म तुम बिन से ली गई ये गजल सुन रहे थे आप। आज महफिले गजल के सेगमेंट में हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ सिलेक्टेड फिल्मी गजलियात। इस सेगमेंट को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ तावुन किया है टेक्सस प्राइमरी केयर ने। पिछले 13 साल से टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक हैज बिन सर्विंग आर कम्युनिटी और अब एक नए नाम एक नए लोकेशन के साथ आए हैं आपके लिए। दैट्स लोनॉक्सी मेडिकल इन फ्रिस्को फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य। लोनॉक्सी मेडिकल प्राइमरी केयर has everything from urgent care, in-house lab testing, x-rays, CT scans, cardiac diagnostic and Himalayan med spa services. Now what I like is that it's all under one roof and they are open 7 days a week from 8 a.m. to 8 p.m. Aap kabhi bhi ja sakte hain. There's no appointment needed. That is Lenoxy Medical. All right. अब चलते हैं अगली गजल की तरफ। ओरिजिनली इस गजल को गाया मेहदी हसन साहब ने बट दिस वन इज अ ट्रिब्यूट बाय मोहम्मद अली।

रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए. सुन रहे थे आप मोहम्मद अली साहब का रेंडिशन. एक्चुअली इट वाज ओरिजिनली संग बाय उस्ताद मेहदी हसन साहब. 83 डिग्रीज फ़ारेनहाइट इज द करंट टेम्परेचर हियर इन द मकिनी एरिया. टुडेज हाई 87, लो ऑफ 62 डिग्रीज फ़ारेनहाइट. अगर अभी अभी ट्यून इन किया है तो मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात, filling in today, substituting for another RJ, और पेश कर रही हूँ आपके लिए सेगमेंट महफिले गजल with selected Bollywood गजल्स.

जलन आंखों में तूफान सा क्यों है। नितेश साहब की फरमाइश पर हमने आपको ये फिल्मी गजल सुनाई जो कि फिल्म गमन से ली गई थी। आवाज थी सुरेश वाडेकर की। अब सेगमेंट का अख्तिताम करते हैं एक बहुत ही मशहूर गजल के साथ जिसे जगजीत और आई बिलीव जगजीत सिंह साहब ने गाया था और कि मे बी शायद चित्रा जी भी थी, लेकिन नो इट्स जस्ट जगजीत सिंह साहब। इसी के साथ कंक्लूड करते हैं बहुत से प्यार के साथ महफिल गजल का ये सेगमेंट। न यस चित्रा जी भी है इस गजल में।

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: Your Dubai investment opportunity is here. Success Real Estate and Danu Properties present the Grand Dubai Property Show, October 17th and 18th, 10 a.m. to 9 p.m. at Lux Hotel Arlington. Explore luxury properties with payment plans starting at $1,300 a month. Meet the developer directly, book at the show and qualify for round-trip flights to Dubai and a luxury hotel stay for two. Call Habib Mita at 954-790-2620. That's 954-790-2620.
2: Yeah. बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस।
3: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
2: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
3: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
2: ये क्या होता?
3: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
4: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
5: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
6: एक और लड्डू ले लो।
7: थोड़ी और बिरयानी?
6: अरे अमेरिका जाके थोड़ी मिलेगा।
8: अब सिर्फ सूटकेसेस ही नहीं, वेट, कोलेस्ट्रॉल और शुगर भी एक्स्ट्रा बैगेज बन के साथ आ गए।
4: इंडिया ट्रिप के बाद या कभी भी अपनी हेल्थ को गेस वर्क पर मत छोड़िए। स्केड्यूल योर एनुअल हेल्थ चेकअप एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अलोंग विद ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड वेट चेक्स, दे आल्सो ऑफर डिप्रेशन एंड एंग्जायटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ असेसमेंट, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग एंड मेनी अदर प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग्स। कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर।
9: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
0: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
9: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
0: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट।
10: शॉपिंग? बिल्कुल, पर कहाँ? फेस्टिव लुक्स के लिए वही दो से तीन ऑप्शंस?
11: ऑप्शंस? I will give you the latest destination.
12: Introducing Pooja's Trends. Lehengas, co-ord sets, fusion wear, shararas or jewelry. Premium quality, affordable prices. Grand opening sale, flat 15% off. Visit 10202 Coit Road, Suite 400, Frisco. Call 214-457-4897. Pooja's Trends. Your trend, your style.
13: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer?
14: उमर ख्वाजा।
15: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
16: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
17: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
18: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
19: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
0: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
20: जहाँ तंदूर की आंच घर जैसी गर्माहट और अपनों का साथ सब एक ही मेज पर मिल जाए, अब वही पंजाब अपने दमदार स्वाद और दिल से की गई मेहमान नवाजी के साथ अर्विंग में।
21: Introducing Punjab by Page 3. Punjab se aaye chefs ke haathon bana Amritsari kulcha with chhole aur makke ki roti with sarson ka saag. Saath mein ek thandi lassi.
20: Punjab by Page 3. Now in Irving. Swad Punjab ka. Andaz Page 3 ka.
22: Har mohabbat ki awaaz. The one and only living legend, Rahat Fateh Ali Khan.
23: Rahat Fateh Ali Khan.
21: Experience Once Upon a Time World Tour 2026. Rahat Fatehi Khan aur unke bete Shahzaman Ali Khan ek hi stage par.
1: Brought to you by Rehan Siddiqui, Dr. Yasmeen Qureshi and True Payment Solutions. Friday, October 16, 8:30 PM, Comerica Center, Frisco.
21: Grand sponsor Karahi Point Plano ke exclusive concessions ke saath.
1: Tickets on Ticketmaster and Solekha.com.

0: सुरेश वाडेकर और आशा भोसले की आवाज में सुन रहे थे आप 1989 की फिल्म परिंदा से लिया गया ये गाना. होप यू एंजॉयड इट. एंड बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेगमेंट, गृह प्रवेश के बारे में आपको बताना चाहती हूँ. इफ यू आर प्लानिंग टू बाय योर ड्रीम होम और यू आर लुकिंग टू मेक अ स्मार्ट प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो is here for you. It's presented by My Square Feet, the biggest India property expo in Frisco. Aur is expo mein you'll get to meet leading developers from Bengaluru, Hyderabad, Chennai, Mumbai, Pune, as well as Delhi, NCR. And you'll get to check out 200 exciting projects all under one roof. और ये इवेंट होने जा रहा है अक्टूबर 10th और 11th को फ्रॉम 10 AM टू 8 PM एट हायत रीजेंसी इन फ्रिस्को. एंट्री इज फ्री, पार्किंग इज फ्री. सो आई डोंट नो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर. गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो नाउ इन फ्रिस्को दिस वीकेंड. इट इज 40 मिनट्स पास 12. जैसे कि आप सब जानते हैं, नाना पाटेकर साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे. ही इज डेफिनेटली अ लेजेंडरी एक्टर. बेशुमार फिल्मों में उन्होंने काम किया. अब फिल्मों में उनके ऊपर बहुत ज़्यादा गाने या डांस वगैरह तो पिक्चराइज नहीं हुए, बट आई विल ट्राई टू प्ले सम सिलेक्टेड सॉन्ग फॉर द नेक्स्ट 30 मिनट्स to you know unko ek tribute pesh karne ke liye based on all the great work that he did for Bollywood. So aaiye chalte hain ek special dialogue se shuru karte hain. Jo gana maine aapko sunwaya tha Parinda film se, that also had Nana Patekar in a very significant and important role.
1: Kaise batau main tumhe मेरे लिए तुम कौन हो? कैसे बताऊं, कैसे बताऊं? ए, कैसे बताऊं मैं तुम्हें? तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम हर खुशी, तुम प्यार हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, आंखों में तुम, यादों में तुम, सांसों में तुम, आहों में तुम, नींदों में तुम, ख्वाबों में तुम, तुम हो मेरी हर बात में, तुम हो मेरे दिन रात में, तुम सुबह में, तुम शाम में, तुम सोच में, तुम काम में, मेरे लिए पाना भी तुम, मेरे लिए खोना भी तुम, मेरे लिए हंसना भी तुम, मेरे लिए रोना भी तुम, और जागना सोना भी तुम. जाऊं कहीं, देखूं कहीं, तुम हो वहां, तुम हो वहीं. कैसे बताऊं मैं तुम्हें? तुम बिन तो मैं कुछ भी नहीं. कैसे बताऊं मैं तुम्हें? मेरे लिए तुम कौन? ये जो तुम्हारा रूप है, ये जिंदगी की धूप है. चंदन से तरशा है बदन, बहती है जिसमें एक अगन. ये शोखियां, ये मस्तियां तुमको हवाओं से मिली, जुल्फे घटाओं से मिली, होठों में कलियां खिल गई, आंखों को झीलें मिल गई, चेहरे में सिमटी चांदनी, आवाज में है रागिनी, शीशे के जैसा अंग है, फूलों के जैसा रंग है, नदियों के जैसी चाल है, क्या हुस्न है, क्या हाल है. ये जिस्म की रंगीनियां जैसे हजारों तितलियां, बाहों की ये गोलाइयां, आंचल में ये परछाइयां, ये नगरियां है ख्वाब की. कैसे बताऊं मैं तुम्हें हालत दिले बेताब की? कैसे बताऊं मैं तुम्हें? मेरे लिए तुम कौन हो? कैसे बताऊं मैं तुम्हें? मेरे लिए तुम धर्म हो, मेरे लिए ईमान हो, तुम्ही इबादत हो मेरी, तुम्ही तो चाहत हो मेरी, तुम्ही मेरा अरमान हो. तकता हूं मैं हर पल जिसे, तुम्ही तो वो तस्वीर हो, तुम्ही मेरी तकदीर हो, तुम्ही सितारा हो मेरा, तुम्ही नजारा हो मेरा. यूं ध्यान में मेरे हो तुम, जैसे मुझे घेरे हो तुम, पूरब में तुम, पश्चिम में तुम, उत्तर में तुम, दक्षिण में तुम, सारे मेरे जीवन में तुम, हर पल में तुम, हर चिन्ह में तुम, मेरे लिए रास्ता भी तुम, मेरे लिए मंजिल भी तुम, मेरे लिए सागर भी तुम, मेरे लिए साहिल भी तुम. मैं देखता बस तुमको हूं, मैं सोचता बस तुमको हूं, मैं जानता बस तुमको हूं, मानता बस तुमको हूं, तुम ही मेरी पहचान हो. कैसे बताऊं मैं तुम्हें? देवी हो तुम मेरे लिए भगवान हो. कैसे बताऊं मैं तुम्हें? मेरे लिए तुम कौन हो? कैसे बताऊं मैं तुम्हें? मेरे
0: कैसे बताऊं, नाना पाटेकर की आवाज में सुन रहे थे आप ये डायलॉग फ्रॉम द मूवी वजूद. नाउ आई डू वांट टू से दैट आई हैड द ऑनर एंड प्लेजर ऑफ इंटरव्यूइंग नाना पाटेकर साहब बैक इन 2001. वो हमारे स्टूडियो में आए थे. ना सिर्फ वो स्टूडियो में आए थे, उन्होंने तकरीबन आधा घंटा हमारे साथ गुजारा, मेरे साथ ऑन एयर मैंने उनका इंटरव्यू किया था, वो भी लाइव. ना सिर्फ ये बल्कि मेरी रिक्वेस्ट पर वजूद फिल्म का ये डायलॉग उन्होंने मुझे देखकर मुझे सुनाया, और मैंने तब उन्हें कहा कि मुझे लग रहा है कि जिस तरह से आपने ये मुझे कहा है मैं शायद बेहोश ही हो जाऊँ. इट वॉज अमेजिंग. His delivery, his presentation was flawless. और वो कहीं से देख कर ये डायलॉग नहीं पढ़ रहे थे जब उन्होंने हमें ये ऑन एयर सुनाया, बल्कि इट वॉज लाइव. ही जस्ट न्यू इट बाय हार्ट. दैट इज हाउ टैलेंटेड नाना पाटेकर साहब वॉज. वजूद फिल्म का एक गाना आपकी खिदमत में. You're listening to a special substitute segment. On 104.9 FM, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात.

0: वजूद फिल्म का ये गाना सुन रहे थे आप, जिसमें आवाजें थी उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की. इट इज 49 minutes past 12 ऑन दिस 8th of October 2026. और पेश कर रहे हैं हम आपके लिए स्पेशल सेगमेंट ऑन नाना पाटेकर, विच विल कंटिन्यू टिल 1 PM. आइए उन्हीं की फिल्म का एक और मशहूर डायलॉग सुनते हैं.
1: मच्छर साला आदमी को हिजड़ा बना देता है, एक खटमलपुरी रात को अपाहिज कर देता है. साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है. सुबह घर से निकलो, भीड़ का एक हिस्सा बनो, शाम को घर जाओ, दारू पियो, बच्चे पैदा करो और सुबह तलक फिर एक बार मर जाओ, क्योंकि आत्मा और अंदर का इंसान मर चुका है, जीने के लिए घिनौने समझौते कर चुका है. साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है.

देश के लोगों में समता की भावना आ रही है, इसलिए तो बड़ी मछली छोटी को खा रही है। हमारे चुने हुए कुत्ते हमें ही काटते हैं, हमारी ही बोटी आपस में बांटते हैं। अमानुष गंध से भरी इनकी आवाज से नंगे रास्ते कांपते हैं। कल पैदा हुए बच्चे एक सांस लेते हुए हांफते हैं। शैतानों की नाजायज औलाद तहलका मचा रही है, और हम भगवान के चहेते जानवर इंसान जिंदगी को गाली बनाए बैठे हैं। क्या करे साला, साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है।

गिरो गिरो गिरो, लेकिन गिरो तो उस झरने की तरह जो पर्वत की ऊंचाई से गिर के भी अपनी सुंदरता खोने नहीं देता, जमीन के तह से मिलके भी अपनी अस्तित्व को नष्ट नहीं होने देता। लेकिन इतना सोचने के लिए वक्त है किसके पास, क्योंकि साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है।

सुन रहे थे आप नाना पाटेकर की फिल्म यशवंत से लिया गया ये सुपर फेमस डायलॉग। जैसे कि हमने आपको बताया, नाना पाटेकर साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो ना सिर्फ एक एक्टर थे बल्कि फिल्म मेकर भी थे, और रिसेंटली एज इन विद इन 24 आवर्स एक सीवियर कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनका देहांत हो गया, उनकी मौत हो गई एट हिज होम इन गोवा। उनकी उम्र थी 75 साल के थे वो, और अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल सोर्सेज ही डाइड एट 5:20 AM इन द मॉर्निंग इंडिया टाइम। डॉक्टर्स ने अपनी पूरी कोशिश की कि उन्हें रिवाइव किया जा सके तकरीबन 45 मिनट्स, लेकिन देर वॉज नो रिस्पॉन्स और ही वॉज नो मोर। आज थोड़ी देर और हम आपको उनके कुछ फिल्मी गीत सुनवाएंगे। नाउ नॉट एवरी सॉन्ग वॉज पिक्चराइज्ड ऑन हिम, बट दे आर फ्रॉम मूवीज वेयर ही प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल।

When I think back on the Bollywood industry, I don't think कि मुझे कोई ऐसा और एक्टर मिलता है जिसे हम कंपेयर कर सकें नाना पाटेकर साहब से. यू नो, बहुत से कमेडियंस होते हैं, हम कहते हैं हाँ ये शक्ति कपूर वो सिमिलर टू कादर खान या समथिंग लाइक दैट, या एक हीरो दूसरे हीरो जैसा लगता है या उसके कंपेरेटिव है, कंपेयर किया जा सकता है. आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनी वन एक्टर जिसे हम नाना पाटेकर साहब से कंपेयर कर सकते हैं, एंड आई एम श्योर द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री विल डेफिनेटली फील हिज एब्सेंस. आर प्रेयर्स, थॉट्स एंड विशेज गो टू हिज फैमिली एंड हिज फ्रेंड्स अक्रॉस द ग्लोब.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2770.
3: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal, or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
4: Your Dubai investment opportunity is here. Success Real Estate and Danu Properties present the Grand Dubai Property Show, October 17th and 18th, 10 a.m. to 9 p.m. at Lux Hotel Arlington. Explore luxury properties with payment plans starting at $1,300 a month. Meet the developer directly, book at the show, and qualify for round-trip flights to Dubai and a luxury hotel stay for two. Call Habib Mita at 954-790-2620. That's 954-790-2620.
5: Yaar, festival season aa raha hai aur meri wife ne shopping list bhi de di hai.
6: Kitni lambi list hai?
5: Bas do pages. Indian dresses, mithai, namkeen aur ha, ek puja mandir bhi.
6: Are to sab kuch India se hi mangwa lo. SFL Worldwide hai na. India mein aapke doorstep se saman pick up karke yahan seedha aapke ghar deliver karte hain. Puja mandir ho, jhula ho ya furniture, saman chota ho ya bada, ocean freight ke through sab ship ho sakta hai.
7: This festive season India ko apne aur kareeb laaye with SFL Worldwide. Shipping and moving services from India to the USA and worldwide. Visit sflworldwide.com.
8: Order, order. Mr. Impressions, campaign ka result.
9: Your Honor, hazaron logon ne ad dekha.
8: Miss Clicks.
10: 100 logon ne click bhi kiya.
8: Customers kitne aaye?
11: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
12: Marketing mein clicks nahi, customers matter karte hain. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smartreach AI, turn attention into customers. Smartreach AI, a Fun Asia Network product.
13: ब्रेकफास्ट में क्या खाना है?
14: कीमा पराठा.
15: मम्मी ऑमलेट पराठा.
16: बेटी हलवा पूरी और तरकारी.
17: अब संडे को तीन अलग नाश्ता कौन बनाएगा?
18: सिग्नेचर क्विजीन बनाएगा. चूज एनी डिलीशियस ब्रेकफास्ट ऑप्शन. कीमा विद पराठा, हलवा पूरी विद तरकारी और ऑमलेट विद पराठा. सर्व्ड विद अ कप ऑफ हॉट कड़क चाय फॉर ओनली $8.99. अवेलेबल ड्यूरिंग वीकेंड ब्रेकफास्ट आवर्स एट सिग्नेचर क्विजीन इन प्लेनो. वीकेंड का मूड गर्मा गर्म देसी फूड. विजिट सिग्नेचर क्विजीन.
19: It's true, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life. From relationship issues to negative energy removal, call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897. और विजिट astrologerishwar.com.
20: हुजूर, आपको चुनना होगा, हम या ये बिरयानी.
21: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह.
20: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
21: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद.
22: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
23: Happy hours, Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
22: Barista House, richness of biryani bliss.
24: अजी सुनते हो?
25: अजी नहीं, एजी सुनते हैं.
24: The OG of tax planning, AG FinTax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 a.m. only on Fun Asia Radio.
23: Marvin Das and Bindas Services present the 6th Annual South Asian Food Festival on 1st November from 12 noon to 8 p.m. at the Sound Venue in Koppal. Enjoy food, shopping, dance and live music with free entry and parking. Vendors and exhibitors, showcase your business to thousands. Call Marvin at 972-302-7012 to reserve your spot.
0: स्वागत करती हूँ एक बार फिर तमाम सुनने वालों का. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फनीशा रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर. मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त तमरीन हसनात, एंड टुडे आई एम फिलिंग इन फॉर I'm not sure. I think it's me too that I'm filling in for. And I hope you will enjoy all the entertaining segments that I am hosting for you. Pehla portion hamare aaj ke program ka ghazlon ko dedicate kiya humne. Phir ek chota sa segment kiya humne Nana Patekar par. Aur ab ek dusra segment aapki khidmat mein pesh kiya jayega. It is 6 minutes past one on this 8th of October 2026. उम्मीद करती हूँ कि हमारे तमाम सुनने वाले जहाँ भी हैं खैरियत से हैं. ड्यूरिंग द ब्रेक यू मस्ट हैव हर्ड द एड अबाउट स्मार्ट रीच एआई. वेल, दिस इज अ स्पेशल मैसेज फॉर बिजनेस ओनर्स एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट हाउ मेनी पीपल सी और क्लिक ऑन योर एड, इट्स अबाउट हाउ मेनी बिकम योर कस्टमर्स. मीट स्मार्ट रीच एआई, व्हिच इज अ फनीशा नेटवर्क प्रोडक्ट दैट हेल्प्स यू रीच पोटेंशियल लोकल कस्टमर्स, इवन दोज visiting your competitors across radio, digital, streaming TV and online audio. That measures what truly matters. Calls, bookings, offer redemptions and actual visits to your business. So if you want to learn more, visit smartreachai.us and turn local attention into customers. All right, ladies and gentlemen, अब शुरू करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट. हम सोच रहे होंगे क्या खास बात है. वेल, बॉलीवुड में बहुत सारी ऐसी फिल्में बनी हैं जिसमें कॉन्फ्लिक्ट, जहां प्यार है वहां कॉन्फ्लिक्ट भी है. एंड व्हेन आई से कॉन्फ्लिक्ट दो प्यार करने वालों में नहीं बल्कि उनकी फैमिलीज में. और वजह समटाइम्स मजहब, कभी कास्ट या कभी कल्चरल बाउंड्रीज. सो ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं विच आर अबाउट हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट, मुस्लिम सिख कॉन्फ्लिक्ट, हिंदू क्रिश्चियन कॉन्फ्लिक्ट, या कभी कभी एक ही धर्म से हैं लेकिन दो अलग अलग जगह से हैं कॉन्फ्लिक्ट इसलिए भी है. एंड फैमिलीज आर अगेंस्ट बिकॉज दे बिलीव के people should fall in love even within their own group, their own caste, their own community. Lekin mohabbat ye sab kahan dekhti hai, balki mohabbat to bas ho jati hai. Aur shayad isiliye ye filmein banti hain aur real life kahaniyan bhi hongi aisi beshumar, kyunki pyar karne wale darte nahi aur jo darte hain wo pyar karte nahi. So aaj hum aapko aisi kai filmon ke gaane sunwayenge where there was some sort of a conflict when it came to the relationship between the boy and the girl. और आज जो पहला गाना सेलेक्ट किया है इट्स फ्रॉम द फिल्म एक दूजे के लिए. अगर आपको याद हो इसमें कमाल हसन और रति अग्निहोत्री लीड रोल्स में थे. कमाल हसन वाज शोन टू बी अ तमिलियन वेयर एज रति अग्निहोत्री वाज अ नॉर्थ इंडियन. और यही उनकी फैमिली के लिए आई गेस एक कॉन्फ्लिक्ट का बायस था एंड दे डिडंट वॉन्ट द कपल टू बी टुगेदर. पर Of course, in the end, they do meet, if not in life, in death, they became one.

सुन रहे थे आप 1995 की फिल्म बॉम्बे से लिया गया ये खूबसूरत गाना चित्रा की आवाज़ में। ये गाना मनीषा कोराला और अरविंद स्वामी पर पिक्चराइज किया गया था। एंड एज आई मेंशन्ड अर्लियर, दिस वाज एन इंटर फेथ लव स्टोरी जिसमें आई बिलीव मनीषा वाज प्लेइंग द रोल ऑफ अ मुस्लिम गर्ल वेयर एज अरविंद वाज ए हिंदू। और ये वो वक्त था जब देयर वर अ लॉट ऑफ हिंदू मुस्लिम रायट्स इन द एरिया। एनीवे, आज इस सेगमेंट में हम आपको ऐसी फिल्मों के गाने सुनवा रहे हैं वेयर कॉन्फ्लिक्ट वाज द मेन फोकस ऑफ द स्टोरी बिसाइड्स द फैक्ट दैट इट वाज ए लव स्टोरी, इंक्लूडिंग दिस फिल्म फ्रॉम 2004।

कुमार राठौर और लता मंगेशकर की आवाज में सुन रहे थे आप वीर ज़ारा फिल्म से लिया गया ये गाना, जो कि शाहरुख खान और प्रीति जिंटा पर पिक्चराइज किया गया था। 2004 में रिलीज होने वाली ये फिल्म सुपर हिट गई एंड इट वाज अबाउट एन इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर जिसे मोहब्बत हो जाती है एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियन की बेटी से। एंड दिस वाज द स्टोरी एंड ऑफ कोर्स ही इज इम्प्रिजन्ड ऑन फॉल्स चार्जेस। तकरीबन 22 साल तक वो जेल में होते हैं टिल पाकिस्तानी लॉयर सामिया सिद्दीकी डिसाइड्स टू फाइट हिज केस। बहुत अच्छी फिल्म थी एंड दिस वाज अगेन बेस्ड ऑन इंटर फेथ रिलेशनशिप। और इसमें सिर्फ इंटरफेथ ही नहीं बल्कि आई वुड से इंटर क्रॉस बॉर्डर रिलेशनशिप। तो इसी तरह की फिल्मी गीत आज हम आपको इस सेगमेंट में सुनवा रहे हैं एंड आई होप यू आर एंजॉयिंग द सिलेक्शन। 9722355555 है हमारे स्टूडियो का नंबर। विशिंग यू ऑल अ वेरी गुड आफ्टरनून। दिस इज अमरीन हसनात।

0: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
1: Call 857-891-8942 today.
2: Dad, property papers kahan hai?
3: Laptop mein.
2: Investment?
3: Google Drive.
2: Insurance? Passwords?
3: Beta, don't worry. Mujhe sab pata hai.
2: Dad, wahi toh problem hai. Sirf aapko pata hai.
1: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
4: Hi, this is Deepti Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
1: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
5: Dil ki baat kisse kahe?
6: Pandit Gurudev se. 35 साल से ज्यादा के एक्सपीरियंस के साथ पंडित गुरुदेव करते हैं कुंडली रीडिंग, बर्थ चार्ट एनालिसिस, पाम रीडिंग और फेस रीडिंग, ब्लैक मैजिक और नेगेटिव एनर्जी रिमूवल में एक्सपर्टाइज। प्यार, शादी या रिश्तों की उलझन हो तो पर्सनल गाइडेंस लीजिए। कॉल 469-581-1777। दैट्स 469-581-1777। पंडित गुरुदेव, आइए अपनी बात कहिए।
7: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
8: लिया।
7: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
8: नहीं आया।
7: मुझे भी नहीं आया।
9: आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-772. That's 972-863-772.
10: Visit www.sanadainc.com today.
11: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
9: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
11: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
9: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
11: सच में? सब संभालेंगे?
9: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
1: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
12: अगर किसी चीज को दिल से चाहो
13: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं।
14: डील कहाँ?
13: सिंपल, पास्या पे। इंट्रोड्यूसिंग पास्या, डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ। ओपन पास्या, सी व्हाट्स अराउंड यू, फाइंड अ डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन।
1: डाउनलोड पास्या, दैट्स PAASYA टुडे, बिकॉज़ डील्स दूर नहीं, पास है।
15: ये लास्ट दिवाली पहना था, ये नेहा की शादी में, इस पे तो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर डीपी है।
16: हे भगवान, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है।
17: जब वार्डरोब में हो फैशन का अकाल, तो सीधा इंडियन अटायर जाओ बालिके।
15: प्रभु, डिस्काउंट भी मिलेगा?
17: ऑफ कोर्स, फेस्टिव कलेक्शन पर अप टू 25% ऑफ। तथास्तु।
1: डिस्कवर स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी एंड फेस्टिव स्टाइल्स फॉर मेन एंड किड्स, ऑल एट इंडियन अटायर ऑन 2995 प्रेस्टन रोड, फ्रिस्को। इंडियन अटायर फ्रिस्को, योर डिवाइन डेस्टिनेशन फॉर फेस्टिव फैशन।
18: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
19: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
18: क्या मतलब?
19: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
18: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
19: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
18: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
20: Don't let debt ruin your life. Visit Ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
21: Ready for a new opportunity and a fresh start in your career? We're looking for energetic and motivated
8: trusted professionals to join our team across multiple positions. If you have an experience in media, sales, or related fields, we'd like to hear from you. If you're confident, a strong communicator, multilingual, and ready to take on something new, this could be your opportunity. Apply today and become a part of our growing team. Mail at careers@funasia.net.
10: खुश आमदीद कहती हूँ एक बार फिर तमाम सुनने वालों को. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर. आई एम योर होस्ट अमरीन हसनात एंड आई बी विथ यू टिल 2:30 PM. दिस पार्ट ऑफ आर शो ब्रॉट टू यू बाय सिग्नेचर रेस्टोरेंट. नाउ इफ यू लुकिंग फॉर सम ग्रेट फूड इन प्लेनो, दैट इज द रेस्टोरेंट which will give that to you. Mazedar nihari, sizzling grills, crispy fried chicken and paratha rolls. Chahe aap wahan birthday celebrate kare, anniversary ya koi bhi celebration, they have a great banquet hall service as well. So go ahead, visit Signature Cuisine at Spring Creek and Alma in East Plano. Aur agar abhi tak lunch nahi kiya, you can actually go and have lunch at Signature Restaurant. That is signaturecuisine.net. Signature Cuisine, leaving its signature on every taste. 36 minutes past 1 on this 8th of October 2026. I hope you guys are doing well and enjoying this special segment which will continue till 2:30. आज हम आपको ऐसे फिल्मी गाने सुनवा रहे हैं जिनमें कहानी में प्यार करने वालों के खिलाफ कोई ना कोई है, या फैमिली या कम्युनिटी, बिकॉज ऑफ कल्चरल और रिलीजियस डिफरेंसेस. जैसे कि गदर फिल्म. जी हाँ, गदर फिल्म में देयर वाज सनी देओल एंड अमीषा पटेल एंड दे वर फ्रॉम टू डिफरेंट सेक्स, मुस्लिम एंड सिख. और हाँ, इससे पहले जो गाना हमने आपको सुनवाया एज इन कमर्शियल ब्रेक से पहले, दैट वाज सिमिलर बट स्लाइटली डिफरेंट. माय नेम इज खान फिल्म, जो कि 2010 में रिलीज हुई थी, उसमें कहानी थी एक ऑटिस्टिक मुसलमान आदमी रिजवान खान के बारे में, जो कि US पहुंचता है और वहाँ वो अपनी वाइफ, जो कि एक हिंदू वाइफ थी, विच वॉज प्लेड बाय काजोल, और उस जमाने में, दिस वॉज राइट आफ्टर 9/11, जब बहुत ज़्यादा इस्लामोफोबिया फैल गया था US में और बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी, और इसीलिए रिजवान खान हेड्स टू द वाइट हाउस एंड वॉन्ट्स टू मीट द प्रेजिडेंट टू टॉक अबाउट इट. सो देर वॉज नॉट अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कपल, बट येस conflict nonetheless. I hope you enjoyed the song that we played for you before the break. Aur ab aaiye chalte hain Gadar film ke is popular hit track ki taraf.

सुन रहे थे आप गदर फिल्म का ये गाना। अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में पिक्चराइज किया गया था ये सनी देओल और अमीषा पटेल पर। और अगर आप लोगों को याद हो, ये फिल्म 2001 में रिलीज हुई थी, पर कहानी थी ये 1947 के पार्टीशन की, जिसमें एक सिख ट्रक ड्राइवर को प्यार हो जाता है एक पाकिस्तानी मुस्लिम लड़की से, एज इन अ गर्ल हु इज़ गोइंग टू मूव। उस वक्त तो सब एक ही हिंदुस्तान था तब, लेकिन पार्टीशन हो रहा था, और शादी के बावजूद उस लड़की को उसकी फैमिली वापस पाकिस्तान ले जाती है। दैट्स व्हाट द स्टोरी वाज अबाउट। आज के इस सेगमेंट में हम आपको ऐसे ही फिल्मी गाने सुनवा रहे हैं जिनमें हमेशा प्यार करने वालों के कोई ना कोई दुश्मन रहे हैं, एंड दैट इज़ बिकॉज देर इज़ ऑलवेज सम सॉर्ट ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन द टू पार्टीज, यानी कि या तो धर्म मज़हब को लेकर, या कल्चर को लेकर, या फिर कम्युनिटीज़ को लेकर, क्योंकि कभी कभी इट्स द सेम रिलीजन और सेम कंट्री, लेकिन जस्ट बिकॉज वो दो अलग इलाकों से हैं देर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट। हमारा अगला गाना भी एक ऐसी ही फिल्म से है। यहाँ कॉन्फ्लिक्ट तो फैमिलीज के बीच में नहीं था, लेकिन कपल एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे।

0: जावेद अली की आवाज में सुन रहे थे आप ये खूबसूरत गाना टेकन फ्रॉम द 2008 फिल्म जोधा अकबर, विच वॉज एन एपिक हिस्टोरिकल ड्रामा. उसमें एक मुगल एम्परर की शादी होती है, एक मुसलमान मुगल एम्परर यानी के अकबर, और उनकी शादी होती है एक हिंदू प्रिंसेस जोधा बाई के साथ. एंड ऑफकोर्स शी वॉजंट हैप्पी अबाउट दिस रिलेशनशिप, बट एज द टाइम प्रोग्रेसेस शी सीज हाउ वंडरफुल ही इज एंड हाउ एक्सेप्टिंग ही इज ऑफ हर बीइंग अ हिंदू एंड प्रैक्टिसिंग हर फेथ हर वे. आई होप आज के इस सेगमेंट को और हमारे गानों की सिलेक्शन को आप इंजॉय कर रहे हैं. आई बिन प्लेइंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट सॉन्ग्स एंड जस्ट बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सॉन्ग वांट टू टेल यू अबाउट तारा एनर्जी. नाउ बिजनेस ओनर्स के लिए है ये स्पेशल मैसेज, बिकॉज अगर आप कोई स्मार्टर कमर्शियल एनर्जी सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं देन तारा कमर्शियल एनर्जी इज द वे टू गो. They've been serving the community here as in businesses in DFW since 2002. Competitive rates hain, service bhi reliable hai aur customized energy plans hain aapke business ke liye. To aap call kijiye, find out how they can also save you money. 844-428-2808 ya phir visit kijiye taraenergy.com. Continue rakhte hain hamare is segment ko aur chalte hain two states ke is gaane ki taraf. सिमिलर टू द मूवी एक दूजे के लिए, इसमें धर्म का कॉन्फ्लिक्ट नहीं था बल्कि कॉन्फ्लिक्ट था इलाकों का, कम्युनिटी का.
1: कमंग

0: कैसा है तू?
1: तू सेटल हो गया?
2: मॉम का है?
0: काम कैसा चल रहा है?
2: मॉम ठीक है या कुछ हुआ है?
0: मॉम ठीक है तेरी?
1: घर पे है।
3: तो फोन क्यों किया?
0: फोन क्यों किया मतलब? ये पूछने के लिए तू ठीक है या नहीं?
2: नहीं भी होता तो क्या कर लेते आप?
4: बड़ा बदतमीज है तू। तेरा हाल पूछने के लिए फोन कर रहा हूँ
1: और तू अपने बाप से टेढ़े मुंह बात कर रहे
4: हैं। ऐसा क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा? क्रिश
1: क्रिश हेलो।

टू स्टेट्स से लिया गया ये गाना सुन रहे थे आप, जो कि आलिया भट्ट और अर्जुन कपूर पर पिक्चराइज किया गया था, एंड आई बिलीव आवाज थी अरिजीत सिंह की. आई होप यू गाइस एंजॉयड इट. इट्स 52 मिनट्स पास्ट वन ऑन दिस 8th of October. आप सुन रहे हैं 104.9 FM की फ्रीक्वेंसी पर मुझे, यानी कि आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात. टू स्टेट्स वॉज अ रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा. दिस केम आउट बैक इन 2014, जिसमें एक पंजाबी हिंदू फैमिली के लड़के को एक तमिल ब्राह्मण फैमिली की लड़की से हो जाता है प्यार, एंड दैट्स वेयर द कॉन्फ्लिक्ट बिगिंस. और इसी तरह की फिल्मी गीत आज हम आपको इस सेगमेंट पर सुनवा रहे हैं, एंड द नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी नो डिफरेंट. This one taken from the film Ishq Zade.

0: जावेद अली की आवाज में सुन रहे थे आप ये गाना जो पिक्चराइज किया गया था अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा पर। अब इस फिल्म में इट वाज एक्चुअली अ डबल व्हैमी इफ आई कैन कॉल इट दैट, कि ना सिर्फ हीरो हीरोइन के धर्म अलग थे बल्कि दे वर एक्चुअली फ्रॉम राइवल पॉलिटिकल फैमिली। तो अब आप सोच ही सकते हैं कि उनके रोमांस में कितने ज़्यादा चैलेंजेस थे। खैर, लेकिन जो लोग सच्ची मोहब्बत करते हैं वो किसी भी चैलेंज का सामना कर सकते हैं। तभी तो कहते हैं ना कि प्यार करने वाले कभी डरते नहीं और जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। इट इज़ 58 minutes past 1 ऑन दिस 8th of October। आई होप यू गाइज आर हैविंग अ लवली afternoon so far. I know मौसम तो बहुत अच्छा है बाहर, as in it's not too hot, it's not too cold, and music भी बुरा नहीं, क्या कहते हैं आप? I've been trying to play some of the best songs from the movies that fit this criteria, this category. और अगर अभी अभी tune in किया है तो आपको बता दें कि आज हम ऐसी फिल्मों के गाने सुनवा रहे हैं जिसमें प्यार करने वालों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आता है उनकी फैमिली की वजह से, बिकॉज देर आर डिफरेंसेस इन आइदर द फेथ और द कास्ट और द क्या कहते हैं कम्युनिटी या लोकेशन। यू नो, बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि अगर वो पंजाबी हैं तो गुजरातियों में शादी नहीं करेंगे, शिया हैं तो सुन्नी में शादी नहीं करेंगे, हिंदू हैं तो मुसलमान से नहीं करेंगे, सिख है तो क्रिश्चियन से नहीं करेंगे। सो देयर इज ऑलवेज दैट कॉन्फ्लिक्ट दैट मेनी पीपल हैव ड्यू टू विच, अगर कोई भी दो लोग जिन्हें एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है तो उनकी जो फैमिलीज होती हैं वो उस रिश्ते को अप्रूव नहीं करती, एंड हेंस देयर इज एन एंटायर स्टोरी लीडिंग टू अ मूवी, एंड मूवी के थ्रू बनते हैं गाने जो हम आपको सुनाते हैं 104.9 FM की फ्रीक्वेंसी पर। दिस सेगमेंट विल कंटिन्यू आफ्टर द ब्रेक, सो कहीं जाइएगा नहीं, स्टे राइट हियर ऑन 104.9 FM। मोर म्यूजिक लेस टॉक फनीशा।
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
4: कौन सा?
3: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
4: अरे सारे तो सेम है।
3: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
4: ओ हाँ, ये तो अलग है।
5: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
6: Discover Tassels by Renu in Frisco. Designer ethnic wear at great prices.
7: From elegant saris, lehengas to Indo-Western fusion sets and men's ethnic wear. Find festive and wedding styles.
6: For exclusive deals and collections, join Renu's weekly Facebook Live or follow them on Insta.
7: Visit tasselsbyrenu.com or call 563-508-5673. That's 563-508-5673. Tassels by Renu. Dress beautifully, celebrate stylishly.
8: It's the time to clock out. It's the time to catch up.
9: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन। एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM, ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री। ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
10: दिल की बात किससे कहें?
11: पंडित गुरुदेव से। 35 साल से ज्यादा के एक्सपीरियंस के साथ पंडित गुरुदेव करते हैं कुंडली रीडिंग, बर्थ चार्ट एनालिसिस, पाम रीडिंग और फेस रीडिंग, ब्लैक मैजिक और नेगेटिव एनर्जी रिमूवल में एक्सपर्टाइज। प्यार, शादी या रिश्तों की उलझन हो तो पर्सनल गाइडेंस लीजिए। कॉल 4695811777। दैट्स 4695811777। पंडित गुरुदेव, आइए अपनी बात कहिए।
5: एलविंग वालों, ध्यान से सुनो, ये सिर्फ म्यूजिक नहीं, हिंट है। Because the best chicken in Dallas is finally in Irving. Crispy, juicy, bold. The chicken Dallas has been craving after Plano and Richardson. Sal's Hot Chicken is now in Irving, bringing the crunch, the flavor, and the heat. You heard chicken, we heard Sal's. Grand opening on 10th October.
12: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
13: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
12: नहीं।
13: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
12: नहीं।
13: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
12: वो भी नहीं।
13: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
5: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG FinTechs, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
9: Filmon ka maza action, drama aur romance mein hai. Aur khane ka maza har flavor ke zabardast performance mein.
14: Kabhi chatpata sa twist, kabhi teekha sa kick, kabhi meetha sa sukoon.
9: Jahan har flavor kare full on entertain. The Flavor Lounge.
14: Papri chaat se malpua rabri tak, har dish mein mile zindagi ke flavors ka asli swaad. Visit their new website or download the Flavor Lounge app. For exclusive deals, The Flavor Lounge, har bhai super hit.
15: Shopping? बिल्कुल, पर कहाँ? Festive looks के लिए वही दो से तीन options?
14: Options? I will give you the latest destination.
5: Introducing Pooja's Trends, lehengas, co-ord sets, fusion wear, shararas aur jewelry. Premium quality, affordable prices. Grand opening sale, flat 15% off. Visit 10202 Coit Road, Suite 400, Frisco. Call 214-457-4897. Pooja's Trends, your trend, your style.
16: Want to explore properties in India? You don't need to fly to India. The Gruh Pravesh India Property Expo is coming to Frisco. Meet top developers from Bengaluru, Hyderabad, Mumbai, Pune, Chennai and Delhi NCR. Explore 200 plus projects for your dream home or next investment. October 10th and 11th, Hath Regency Frisco, 10 a.m. to 8 p.m. Free entry, free parking. Gruh Pravesh India Property Expo by My Square Feet.

अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाज में सुन रहे थे आप ये गाना टेकन फ्रॉम द फिल्म केदारनाथ। ये गाना सारा अली खान और अरिजीत सिंह पर पिक्चराइज किया गया था। एंड दिस अगेन वॉज एन इंटरफेथ लव स्टोरी जिसमें सारा अली खान प्लेड एक बहुत पैसे वाली हिंदू ब्राह्मण लड़की जिससे प्यार हो जाता है एक गरीब मुसलमान लड़के से। सो वैसे भी बॉलीवुड में तो बेशुमार ऐसी फिल्में हैं जिसमें अमीर गरीब फैमिली का कॉन्फ्लिक्ट रहता है, यहाँ तो फेथ का इशू भी आ जाता है। और फिर इस फिल्म में अगर आपने देखी है तो 2013 में जो उत्तराखंड में सैलाब आया था, दिस आल्सो हैड दैट डिजास्टर एज पार्ट ऑफ द स्टोरी लाइन। ऑफ कोर्स दिस इज अ फिक्टिशियस स्टोरी, लेकिन स्टोरी नॉनदलेस। होप यू एंजॉयड दिस सॉन्ग। इसी तरह के फिल्मी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिसमें प्यार करने वालों का कोई ना कोई दुश्मन ज़रूर होता है। आइदर इट इज़ इन रेफरेंस टू देयर फेथ, यानी कि उनका मजहब, उनका धर्म, या फिर उनका सोशल स्टेटस, या फिर उनका पोलिटिकल, उनकी एफिलिएशन, या फिर कास्ट का भी डिफरेंस हो सकता है। वॉट एवर द केस मे बी, देर इज़ अ डिफरेंस and which leads to the conflict.

और अजय गोगावले की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये गाना जो ईशान और जाह्नवी कपूर पर पिक्चराइज किया गया था. दिस सॉन्ग टेकन फ्रॉम द फिल्म धड़क. नाउ ऑब्वियसली एवरीवन नोज धड़क एक रोमांटिक मूवी थी, बट इट्स एक्चुअली अ रीमेक ऑफ ए मराठी फिल्म. और कहानी है ये एक बहुत ही पैसे वाली अपर कास्ट हिंदू लड़की की. सेम कम्युनिटी, सो एज इन कम्युनिटी एज इन देयर ऑल मराठी स्पीकिंग, राइट? सो एक इलाके के लोग हैं, लेकिन लड़का जो है वो लोअर क्लास का है और बहुत गरीब है. सो ऑब्वियसली व्हेनेवर देयर इज गोइंग टू बी दैट डिफरेंस, देयर इज गोइंग टू बी अ कॉन्फ्लिक्ट. एंड अपनी फैमिली से लड़ झगड़ कर भी वो भाग जाते हैं, बट इट डजंट एंड वेल फॉर दैम. सो दैट वॉज अ ब्यूटिफुल सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म धड़क. आइए सेगमेंट को कंटिन्यू करते हैं, लेकर चलते हैं आपको नेक्स्ट गाने की तरफ.

बनारसिया श्रेया घोषाल की आवाज में सुन रहे थे आप ये गाना जो सोनम कपूर और धनुष पर पिक्चराइज किया गया था. इट वॉज टेकन फ्रॉम द 2013 मूवी रांझना. रोमांटिक ड्रामा थी ये फिल्म भी, लेकिन इसमें भी था कॉन्फ्लिक्ट. एक तमिलियन ब्राह्मण फैमिली का लड़का कुंदन, उसे हो जाती है मोहब्बत जोया एक मुसलमान लड़की से. एंड ऑफ कोर्स उनके दरमियान स्टेटस का डिफरेंस भी है अब, लेकिन जोया को आई डोंट बिलीव वैसी वाली मोहब्बत हुई थी. खैर, इट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी, बट यस, देयर वाज द डिफरेंस इन देयर आई गेस बैकग्राउंड्स एंड कल्चर एज वेल. यू आर लिसनिंग टू 104.9 FM. नाउ इफ यू आर इन द मार्केट लुकिंग टू बाय अ होम, ऑब्वियसली घर खरीदने के लिए मोर्टगेज भी चाहिए होगा, और मोर्टगेज मिलेगा आपको ड्रीम होम मोर्टगेज से. Why should you choose Dream Home Mortgage? Well, they have been serving the community, helping families achieve their dream of owning a home and making it a reality since 1998. Kuch to theek kar rahe honge, right? For a company to be in business for that long, that means they know what they are doing. And guess what? They are certified and they are licensed to provide mortgage solutions for buying or refinancing across the nation, yani ke multiple states mein. Zaruri nahi hai ki aap sirf Texas mein rehte hain to hi Dream Home Mortgage can help you. They are licensed to serve any state in the US. So give them a call, find out what they can do for you. 972-245-5626 or visit dreamhomemortgage.com.

और आप सोच रहे होंगे कि नमस्ते लंदन का गाना हमने इस सेगमेंट में कैसे शामिल किया. वेल, बिकॉज यहाँ पर भी था कॉन्फ्लिक्ट. एक पंजाबी किसान की शादी हो जाती है एक ब्रिटिश बोर्न अमीर लड़की के साथ. सो ऑब्वियसली वेस्टर्न वैल्यूज और कल्चरल क्लैश आ जाता है लंदन और पंजाब के बीच. आई होप आज के इस सेगमेंट को आप सभी ने इंजॉय किया. वी प्ले डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉन्ग्स टुडे फॉर यू. Before I wrap up, just want to remind you that if you're ever in an accident, you can reach out to attorney Umar Khwaja because he knows how to deal with insurance company and get you the compensation you deserve. Koi fees charge nahi karte, wo consult ki and nothing till you win. So call them 469-300-5046. Aur aaj ke is segment ko hum conclude karte hain film DDLJ ke is gaane ke saath. Yahan par bhi difference tha. Difference ye tha ke it was kind of cross-cultural, right? Because the girl's father wants her to marry a guy from India who lives in India and she ends up falling in love with someone from the West. Still Indian though. Hope you enjoyed today's segment. Aapse kal hogi mulaqat 12:30 p.m. This is Amreen Hasnat signing off.

0: जाना।
1: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइज़रवे, स्वीट 205, फ्रिस्को।
2: Order, order. Mr. Impressions, campaign का result.
3: Your Honor, हजारों लोगों ने ऐड देखा.
2: Miss Clicks?
4: 100 लोगों ने क्लिक भी किया.
2: Customers कितने आए?
5: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
4: Marketing में clicks नहीं, customers matter करते हैं. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smartreach AI. Turn attention into customers. Smartreach AI, a Phanasia Network product.
6: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सस के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सस बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
7: यार, फेस्टिवल सीजन आ रहा है और मेरी वाइफ ने शॉपिंग लिस्ट भी दे दी है।
8: कितनी लंबी लिस्ट है?
7: बस 2 pages. इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ, एक पूजा मंदिर भी।
8: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो, SFL Worldwide है ना। इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं। पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है।
9: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL Worldwide. शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड Worldwide. विजिट SFLWorldwide.com.
10: ये लास्ट दिवाली पहना था, ये नेहा की शादी में, इस पे तो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर DP है।
11: हे भगवान, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है।
12: जब वार्डरोब में हो फैशन का अकाल, तो सीधा इंडियन अटायर जाओ बालिके।
10: प्रभु, डिस्काउंट भी मिलेगा?
12: ऑफ कोर्स, फेस्टिव कलेक्शन पर अप टू 25% ऑफ। तथास्तु।
13: डिस्कवर स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी एंड फेस्टिव स्टाइल्स फॉर मेन एंड किड्स, ऑल एट इंडियन अटायर ऑन 2995 प्रेस्टन रोड, फ्रिस्को। इंडियन अटायर, फ्रिस्को, योर डिवाइन डेस्टिनेशन फॉर फेस्टिव फैशन।
14: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
15: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
16: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं।
17: तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
18: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
17: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
19: भूख लगी,
3: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
7: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery. ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
13: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी।
2: Your Dubai investment opportunity is here. Success Real Estate and Danew Properties present the Grand Dubai Property Show, October 17th and 18th, 10 a.m. to 9 p.m. at Lux Hotel Arlington. Explore luxury properties with payment plans starting at $1,300 a month. Meet the developer directly, book at the show and qualify for round-trip flights to Dubai and a luxury hotel stay for two. Call Habib Mita at 954-790-2620. That's 954-790-2620.

0: कहिए, क्या सुनेंगे आप?
1: अरे पहले ये कहिए, कहाँ थी आप?
0: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार, और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।

कुछ आवाजें सिर्फ आवाजें नहीं होती, वो किसी दौर की पहचान बन जाती हैं, किसी एरा की पहचान बन जाती हैं। और 90s के बॉलीवुड को याद किया जाए तो फिर गाने लाइक पहला प्यार और यू नो द फीलिंग ऑफ कॉलेज रोमांस एंड पहली मोहब्बत एंड शादी ब्याह के गाने एंड मिलना एंड जुदाई एंड दोस्ती एंड बारिश और चांदनी रात और ये सारे जो एहसासात हैं इनके लिए एक आवाज बार बार इस्तेमाल की गई इन एहसासात को हमारे तक कन्वे करने के लिए, और वो आवाज थी अलका याग्निक की। तो मैं लेकर आई हूं आज आपके लिए वो 90s का स्पेशल में अलका याग्निक के गाए हुए कुछ 90 की दिहाई के गाने। वैसे तो अलका याग्निक ने अपने करियर का आगाज जो है वो 80s से किया था। 1980 में पहली फिल्म पायल की झनकार के लिए उन्होंने गाना गाया था, बट हम चूंकि 90s का बॉलीवुड कर रहे हैं तो मैं आपको 90s ऑनवर्ड्स, ये वैसे 89-88 कर लेते हैं क्योंकि वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा वहीं से सिलसिला शुरू हो गया था, क्योंकि ये जो गाना था जो मैंने आपके लिए प्ले किया 1 2 3 ये वो गाना था अलका याग्निक के करियर का। हालांकि वो 80s से गाने गा रही थी और बहुत सारे गाने गा चुकी थी, लेकिन 1 2 3 वाज द फर्स्ट सॉन्ग जिसके लिए मिला था उन्हें बेस्ट फीमेल सिंगर का अवार्ड इन 1989 फॉर द मूवी तेजाब। ऐसे ही कुछ शानदार गाने मेरे पास आपके लिए लाइन अप हैं। अलका याग्निक जी का बात की बात हो और शानदार गाने ना हो ये नहीं हो सकता।

बेहतरीन फिल्मों के बेहतरीन गाने, और यहाँ से मुझे लगता है 1988 और 89 से अलका याग्निक की जो म्यूजिकल जर्नी है उसका रुख बिल्कुल बदल गया, क्योंकि कुछ ऐसे गाने उन्होंने गाए जिनसे वो एकदम से, वो कहते हैं ना, मैप ऑफ द म्यूजिक इंडस्ट्री पे नजर आने लगी कि ये एक आवाज़ है जो बहुत ही रोमांटिक भी है, मिस्चीवियस भी है, सेंट्रल भी है, इमोशनल भी है, क्लासिकल भी है और एकदम फिल्मी. तो एक तरफ तो जैसे एक दो तीन मैंने आपको सुनाया उसकी एनर्जी थी, दूसरी तरफ इस तरह का एक रोमांटिक सा पार्टी सा नंबर था, गली गली में फिरता है, और एक तरफ था कंप्लीट रोमांस, जैसे कि अब आप जो गाना सुनेंगे फ्रॉम कयामत से कयामत तक.

कोई भी मूड हो, अलका याग्निक जी उसे एकदम से पकड़ लिया करती थी। जैसे कि हम इसका रोमांस इस गाने का आपने सुना, घूंघट की आड़ से जो गाना था, ये सारे गाने मेरे पास आपके लिए लाइंड अप हैं। जिक्र मैं इन गानों का करूंगी लेकिन एक एक करके आपके लिए प्ले करते हैं। और मैंने 90 से आपके लिए लिस्ट बनाई हुई है, 90 से लेकर 99 तक के जो गाने हैं, या 88 से एक्चुअली लिस्ट बनाई थी, तो वो सारे गाने आपके लिए वन बाय वन करके सीक्वेंस में प्ले होंगे ताकि आपको उनकी जर्नी का एहसास हो कि किस तरह उनकी जर्नी आगे बढ़ी थी। तो अब जो अगला गाना मैं आपके लिए प्ले करने लगी हूँ, दैट इज टेकन फ्रॉम द मूवी। कौन सी मूवी जी? ये मूवी थी नरसिम्हा, जिसमें हमें नजर आई उर्मिला मातोंडकर और रवि बहल के ऊपर ये गाना पिक्चराइज था। तो ये गाना आपके लिए प्ले कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती चलूं, ये आपका ब्रांड नीड्स मोर देन जस्ट सोशल मीडिया पोस्ट, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और हर चीज़ जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट की जाती है, एंड द बेटर द प्रेजेंटेशन द मोर द रीच। तो फिर आप भी

वो फिर पूरी 90s की दिहाई में हमने उनको सिर्फ उड़ान ही भरते देखा. एवरी सॉन्ग विद एवरी सॉन्ग वो बढ़ रही थी एक और कदम ऊपर, जैसे पूरा वो कहते हैं ना चांद को हाथ लगा के छोड़ेंगी. एंड शी इज ऑलरेडी डन दैट ऑफ कोर्स. दिस इज अलका याग्निक स्पेशल गोइंग ऑन वो 90s का बॉलीवुड. प्ले कर रही हूँ आपके लिए अलका याग्निक जी के गाए हुए कुछ खूबसूरत गाने और उसको बिल्ड किया है प्ले लिस्ट को फ्रॉम 90s गोइंग अप, 90 में क्या गाया, 91 में क्या गाया, 92 में, ताकि आप उनके ग्राफ को देख सकें और उनके तरीके तरीके के या तरह तरह के गानों को एंजॉय कर सकें. This is another number that became a romance anthem back then.

1980 से लेके 1989 तक अलका याग्निक ने गाए अराउंड 342 सॉन्ग्स, जो नंबर मेरे रिसर्च से नजर आया मुझे, इट माइट बी लिटिल बिट हियर एंड देयर, लेकिन अबाउट 350 गाने गाए. कोई भी गाना एज सच बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, बहुत सारे पॉपुलर हुए लेकिन अवार्ड विनिंग गाना जो है वो उन्होंने 1988 की फिल्म के लिए गाया, और वहां से जो उनके करियर को पर लगे

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
3: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
4: अच्छा मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है
5: बाय टू गेट वन फ्री ऑफर
4: तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग डायमंड रिंग्स पेंडेंट्स इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर चाहे प्रपोजल हो वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो अब शाइन डबल विद इन बजट लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग हुजूर आपको चुनना होगा हम या ये बिरयानी
6: बेगम मोहब्बत अपनी जगह लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह
4: आखिर क्या है इस बिरयानी में
6: दम में नरमी मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद
7: प्रेजेंटिंग बिरिस्ता हाउस बाय प्रिज्म बार एंड ग्रिल ऑथेंटिक हैदराबादी फ्लेवर्स एंड अ ट्रूली नवाबी एक्सपीरियंस नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स डिलीशियस डेजर्ट्स एंड मेनी मोर टू एक्सप्लोर Denton's famous Barista House is now in Frisco, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
3: Happy hours, Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
7: Barista House, richness of biryani bliss.
8: Buying a home comes with a lot of firsts. Your first walkthrough, your first offer, your first, they accepted. But there's one first you definitely don't want. Your first title problem. Before the keys are yours, make sure everything behind them is clear. With First United Texas Title, get the confidence of a smooth title and closing process. So the only surprise at your new home is what the neighbors bring over. First United Texas Title. Close with confidence. Own with peace of mind. Call 972-897-1530 or visit www.firstunitedtexastitle.com.
9: एक और लड्डू ले लो
10: थोड़ी और बिरयानी
9: अरे अमेरिका जाके थोड़ी मिलेगा
11: अब सिर्फ सूटकेसेस ही नहीं वेट कोलेस्ट्रॉल और शुगर भी एक्स्ट्रा बैगेज बन के साथ आ गए
12: इंडिया ट्रिप के बाद या कभी भी अपनी हेल्थ को गेस वर्क पर मत छोड़िए Schedule your annual health checkup at Passion Health Primary Care. Along with blood pressure, blood sugar, cholesterol and weight checks, they also offer depression and anxiety screening, alcohol health assessment, fibro scan, vitamin B12 testing and many other preventive health screenings. Call or text 214-666-6259. Passion Health Primary Care.
4: Floors clean.
13: Check.
4: Windows clean.
13: Check.
4: Kitchen clean.
13: Check.
4: Air ducts clean.
13: Wait, air ducts भी clean करना होता है?
14: बिल्कुल. जो दिखता है, वो तो हम clean कर लेते हैं. लेकिन जो नहीं दिखता, उसका क्या? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush. Plus dryer vent or chimney cleaning. घर हो, restaurants, hotels, offices या फिर any business. Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
15: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
16: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में
15: दैट मैजिक रिमूवल हो लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी
16: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से नाउ इट्स योर टर्न समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com
17: In one moment, an accident can change everything.
10: When it does, you don't need sympathy. You need strength. Attorney Umar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Umar Khawaja, your legal lifeline.
17: Your Dubai investment opportunity is here. Success Real Estate and Danu Properties present the Grand Dubai Property Show, October 17th and 18th, 10 a.m. to 9 p.m. at Lux Hotel Arlington. Explore luxury properties with payment plans starting at $1,300 a month. Meet the developer directly, book at the show, and qualify for round-trip flights to Dubai and a luxury hotel stay for two. Call Habib Mita at 954-790-2620. That's 954-790-2620.
18: Hi guys, this is Tiger Shroff. Enjoy FunAsia Radio.
19: जुड़ जाओ अपनी धरती से देसियों का सच्चा रेडियो चैनल FunAsia 104.9 FM.

और अगर आप ढूंढ रहे हैं, यू लुकिंग फॉर समवन हु कैन ऑफर यू पर्सनलाइज स्ट्रैटेजीज फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, या फिर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स के लिए, और रिटायरमेंट प्लानिंग, किसी भी किस्म की आपकी इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है, तो माई टाइम एक्विटी कैन हेल्प यू. लेड बाय CPA सुधीर पाई, माई टाइम एक्विटी ऑफर करता है आपको पर्सनलाइज सॉल्यूशंस दैट विल हेल्प यू एंड गाइड यू मेक द राइट चॉइसेस. तो आपको क्या करना है, माई टाइम एक्विटी को कॉल करना है 4697021272 उनका नंबर, या फिर आप उनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं mytimeequity.com. 1991 में ये मूवी आई थी जी, साजन, जिसमें एक बार फिर बहुत ही खूबसूरत गाने, साजन में बहुत सारे गाने अलका जी ने गाए. एक गाना मैंने उस फिल्म से आपके लिए पिक किया था ताकि रिपीट ऑफ फिल्म या रेपिटेटिव ना हो जाए. तो उसके साथ अब उसके बाद कई सारी फिल्मों में उन्होंने गाने गाए, और फिर जो एक आउटस्टैंडिंग गाना अगला आया वो 1992 की इस फिल्म में आया, जिसमें हमें नजर आए पहली बार शाहरुख खान, और ये फिल्म थी दीवाना. और दीवाना की जो टाइटल ट्रैक था, दीवाना तेरा नाम रख दिया, वो आवाज थी अलका याग्निक और विनोद राठौड़ की. लेकिन अलका याग्निक की कहानी 1980s से नहीं शुरू होती, ऑफ कोर्स उनकी कहानी शुरू होती है कोलकाता से, 1966 20th मार्च 1966 वो कोलकाता में पैदा हुई. और अलका एक म्यूजिकल फैमिली से बिलोंग करती थी, उनकी मदर वाज अ क्लासिकल सिंगर, और नेचुरली घर में म्यूजिकल माहौल था, म्यूजिक जो है वो घर का हिस्सा था. और सिर्फ 6 साल की उम्र में ऑल इंडिया रेडियो कोलकाता पर उन्होंने, यानी कि अलका याग्निक ने, सिंगिंग शुरू कर दी. सो सोचिए, अभी जब सब 6 साल की उम्र में, तो अभी बच्चा कुछ सोच ही रहा होता है, मतलब कि अगली शैतानी क्या करनी है. लेकिन अलका जी ने ऑलरेडी गाना शुरू कर दिया था ऑल इंडिया रेडियो कोलकाता पे. अच्छा, ये गाना, दिस इज दीवाना.

104.9 FM Fanasia Radio पे वो 90s का बॉलीवुड सुन रहे हैं आप. आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण में. और 90s के बॉलीवुड की बात हो और इस सिंगर की बात ना हो, बिल्कुल नहीं. और बात हो नहीं, एपिसोड हो पूरी. एक एपिसोड नहीं, दो एपिसोड्स गालिबन लेके आऊंगी आपके लिए. अलका याग्निक स्पेशल ऑन वो 90s का बॉलीवुड. और प्ले कर रही हूँ आपके लिए उनके गाए हुए कुछ खूबसूरत गाने. एक सीक्वेंस में चल रहे हैं हम ताकि उनकी जर्नी को आप एक्सपीरियंस कर सकें वन बाय वन, जो पॉपुलर गाने उन्होंने गाए. अगला गाना मैं आपके लिए प्ले करने से पहले आपको बताती चलूं कि अगर आपका आज कुछ खाना पकाने का दिल नहीं कर रहा, या वैसे वीकेंड पे नहीं दिल कर रहा, कोई मेहमान आ रहे हैं, कुछ आपको बाहर से मंगवाना है लेकिन घर जैसा फ्लेवर आपको चाहिए, तो फिर तंदूरी फ्लेम जो कि गार्लैंड में लोकेटेड है इज द राइट प्लेस फॉर यू. चाहे आपको बटर चिकन मंगवाना है, खाना है, बिरयानी है, पनीर टिक्काज है, दाल मखनी है, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली डिलिशियस घर जैसे जायके के साथ. आप उनकी वेबसाइट चेकआउट कीजिए टू फाइंड आउट मोर अबाउट देयर मेन्यू, देयर ऑपरेशन एंड एवरीथिंग एल्स. tandooriflametx.com is where you need to log on. और मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त आजकल उनका जो स्पेशल चल रहा है उसके बारे में बताती हूँ. दैट इज फ्लेम आवर. अब फ्लेम आवर में क्या है, मंडे थ्रू थर्सडे आपको क्या मिल सकता है, यानी कि आज हफ्ते का आखिरी दिन है, 5 बजे से लेके 8 बजे तक अगर आप तंदूरी फ्लेम जाएंगे फ्लेम आवर के दौरान, विच इज फ्रॉम 5 PM टिल 8 PM मंडे थ्रू थर्सडे, तो यू विल ऑर्डर एनी टू entrees एंड यू विल गेट एन appetizer absolutely फ्री. कॉम्प्लीमेंट्री appetizer होगा तंदूरी फ्लेम की तरफ से आपके लिए. सो जरूर मिल जाइए, अवेल कीजिए इस फ्लेम आवर को और खाइए घर जैसा खाना. दिस नेक्स्ट नंबर 1992 में अलका याग्निक ने बैक टू बैक कुछ आउटस्टैंडिंग गाने गाए, जिनमें से एक तो अभी मैंने आपके लिए प्ले किया. और अब ये फिल्म थी खिलाड़ी. आप देखिए तमाम जो बहुत सारे जो गाने, जैसे ये ऐसी दीवानगी हमने देखा, उससे पहले तू शायर है देखा, तो माधुरी के लिए उन्होंने खैर काफी सारे गाने गाए, लेकिन नए नए लोग जो आ रहे थे उन्हें अलका की आवाज मिल रही थी और बन रहे थे वो रातों रात सितारे.

खिलाड़ी के फौरन बाद फिल्म रिलीज हुई खुदा गवाह, एक बार फिर अलका की आवाज मिली एक बहुत ही पावरफुल हीरोइन को, जो थी श्रीदेवी जी. और गाना जो हमारे सामने आया उसने जी हिला दिया सबको. दैट वॉज द आइकॉनिक सॉन्ग ऑफ खुदा गवाह. लेकिन उस गाने पे जाने से पहले मैं आपसे बात कर रही थी जी उनके अर्ली लाइफ की, कि उन्होंने 6 साल की उम्र से रेडियो पे परफॉर्मेंस देनी शुरू कर दी थी. और ये उनकी जो पहली गुरु थी वो उनकी मदर थी, क्योंकि वो खुद क्लासिकल सिंगर थी. और फिर मुंबई तक का जो सफ़र था वो टैलेंट के साथ साथ काफी ज्यादा हार्ड वर्क उसके अंदर शामिल था. और उनकी अलका जी याग्निक जी की कहानी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये, कि टैलेंट को भी अपना वक्त लगता है. इंतजार के बाद, वो कहते हैं ना, सोना जो है वो तप कर और आग में जल कर ही बनता है कुंदन. सो 1980-81 से जो उन्होंने अपने करियर का आगाज शुरू किया, गाने गाए, लेकिन आठ नौ साल तक उन्हें स्ट्रगल से गुजरना पड़ा. बिकॉज वो जो कहते हैं ना, एक ऐसा गाना जो किसी को चाहिए होता है, जो उनकी पहचान बन जाए, वो गाना अब तक उन्हें नहीं मिल रहा था. फिर आई 1988 में मूवी तेजाब, और उससे उनको गाना मिला 1 2 3. अब 1 2 3 मैंने आपके लिए प्ले तो कर दिया है, लेकिन थोड़ी सी इस गाने के बारे में आपको कहानी जरूर बताऊंगी. बातें इतनी सारी हैं और गाने भी इतने सारे हैं, लेकिन इस वक्त हम वापस जाते हैं उस बात की तरफ. श्रीदेवी को मिली जब अलका याग्निक जी की आवाज़, और फिल्म थी खुदा गवाह, तो गाना बना ये.

0: Hey, Frisco, get ready to celebrate silver like never before. Chandrika Silver by Shri Krishna Jewelers celebrates its grand launch. Discover exquisite handcrafted silver jewelry and artifacts with exciting inaugural offers and raffle prizes. Visit 7777 Warren Parkway, Suite 280, Frisco. Chandrika Silver, the tradition shines in silver.
1: As a Texas state legislator, James Tallarico has stood with the South Asian community and fought to lower our costs. He believes that being a Texan isn't about where you come from or how you pray. It's about how you love your neighbors. He's running for U.S. Senate to stand up for all Texans and end the corruption raising our prices. Vote to bring light and hope to Texas. Vote James Tallarico.
2: I'm James Tallarico and I approve this message.
1: Paid for by Tallarico for Texas.
3: Yaar, boss ne fir se daat diya. Traffic alag. और ऊपर से स्ट्रेस।
4: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
3: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
4: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
3: ये क्या होता?
4: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
5: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
6: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
5: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
6: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
7: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
8: Aji sunte ho, soch rahi thi बेटे की शादी इंडिया में करें?
9: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
8: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
9: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
8: सच में सब संभालेंगे?
9: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर, वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह, सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
7: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.
10: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
11: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
10: नहीं।
11: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
10: नहीं।
11: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
10: वो भी नहीं।
11: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
7: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. AG Fintax, योर ग्रोथ आर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
12: अगर किसी चीज को दिल से चाहो,
13: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं।
14: डील कहाँ?
13: सिंपल, पास्या पे। इंट्रोड्यूसिंग पास्या, डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ। ओपन पास्या, सी व्हाट्स अराउंड यू, फाइंड अ डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन।
7: डाउनलोड पास्या, दैट्स PAASYA टुडे, बिकॉज डील्स दूर नहीं, पास है।
15: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
16: कुछ भी नहीं। Ura Debt Relief will do it for us.
15: क्या मतलब?
16: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
15: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
16: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
15: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
17: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
18: A.R. Rahman, live with a full orchestra. Experience the Grammy and two-time Academy Award-winning composer behind Slumdog Millionaire like never before. The A.R. Rahman Symphonic Experience brings his iconic music to life in an extraordinary symphonic celebration, October 29th at Texas Trust Credit Union Theater. One night, a live orchestra, the music of A.R. Rahman. Don't miss it. Get your tickets now.
14: डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो।

उदित नारायण और कुमार सानू जी के साथ अलका याग्निक की बनी ऐसी जोड़ी, कोई गाना उदित नारायण के साथ, कोई कुमार सानू के साथ, मतलब ऐसे था जैसे बैक एंड फोर्थ चल रहा है। जैसे ये गाना आप कुमार सानू जी के साथ सुन रहे थे, उससे पहले कई सारे गाने उदित नारायण जी के साथ थे। आप सुन रहे हैं अलका याग्निक स्पेशल राइट हेयर ऑन वो 90s का बॉलीवुड ऑन आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण। अगला गाना प्ले करने से पहले आपको बताएं जी, अगर आपके पास टाइम नहीं है कि आप वीकडे में अपने आप को, मतलब कोई आपकी रेगुलर विजिट है, प्राइमरी केयर विजिट है, प्रिवेंटिव केयर विजिट है, और आपके पास वीकडे में टाइम नहीं है, तो वीकेंड पे भी सोल्यूशन मिल चुका है, और वो है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। सबसे पहले, अगर पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर आपके नेटवर्क में नहीं है या फिर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, तो बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर अब इंट्रोड्यूस कर रहा है पैशन हेल्थ डायरेक्ट। और इसमें क्या होगा जी, $85 अ मंथ की आप ये मेंबरशिप लेंगे। दिस इंक्लूड्स प्राइमरी केयर, प्रिवेंटिव केयर, मेडिकेशन मैनेजमेंट, टेली हेल्थ और भी बहुत कुछ। सो सबसे पहले ये जान लीजिए, दिस इज नॉट अ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, सम रिस्ट्रिक्शंस डू अप्लाई। तो यू नो, यू वांट टू कॉल देम, यू हैव एनी क्वेश्चंस, गिव देम अ कॉल और टेक्स्ट देम एट दिस नंबर 214-666-6259, 214-666-6259 उनका नंबर, या फिर passionhealthphysicians.com इज वेयर यू नीड टू लॉग ऑन। दे आर ओपन Saturday and Sunday. The Frisco and Irving location is open for you Saturday and Sunday, ताकि आप अपनी सेहत को बिल्कुल neglect ना करें, और weekend पे भी आपको appointment मिल सकती है। All you have to do, give them a call or text 214-666-6259.

अच्छा जी, हम ब्रेक पे जाते हुए कुछ आपको उनकी अर्लियर करियर के बारे में बता रही थी कि 10-8 साल उन्होंने फिल्मों में गाया, लेकिन जो ब्रेक मिला या आप कह लीजिए जो पहचान मिली वो मिली तेजाब के गाने 1-2-3 के साथ। माधुरी दीक्षित, इस सॉन्ग ने ना सिर्फ माधुरी दीक्षित को डांस आइकॉन बनाया, अलका याग्निक को भी सुपरस्टार प्लेबैक सिंगर बना दिया। इस सॉन्ग के लिए उन्होंने फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड जीता, पहले करियर का पहला अवार्ड था उनके करियर का। और इंटरेस्टिंग बात यह कि यह अवार्ड उनके करियर की बिगनिंग का एक सिग्नल था, ऑफ कोर्स, बिकॉज देन शी हैड अराइव्ड। उसके बाद वो कहती है ना, मुझे लगता है कोई देवी उन पे मेहरबान हो चुकी थी, क्योंकि उसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक गाने दिए और कई बार नॉमिनेशंस पाई, बेतहाशा नॉमिनेशंस पाई उन्होंने। ऑल्दो हर बार उन्हें अवार्ड नहीं मिलता था, मगर कोई ना कोई गाना उनके लिए उनके गाया हुआ नॉमिनेटेड ज़रूर होता था। तो अब जो है, जहां गानों की बात हो रही है, तो मैं आपके लिए गिव अवे लेकर आई हूं फन पिज्ज़ा किचन की तरफ से। सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि funpizzakitchen.com पे लॉग ऑन कीजिए, चेकआउट कीजिए उनका मेन्यू, देयर डिलिशियस पिज्ज़ाज। और अब उन्होंने एक नया मेक्सिकन इंस्पायर्ड पिज्ज़ा लाइनअप शुरू किया है, तो वेजिटेरियन लवर को कॉल कर रहे हैं, पोयो लोको यानी कि चिकन लवर्स को कॉल कर रहे हैं, सी फूड लवर्स को कॉल कर रहे हैं, आपको मिलेगा कुछ यूनिक बिल्कुल मेक्सिकन स्टाइल पिज्जा। और बाकी उनके लोकल और जो वैसे फ्लेवर्स हैं वो तो हैं ही। So what you have to do, go visit Fun Pizza Kitchen, and they are located in Colony as well as Frisco. Ya phir funpizzakitchen.com is where you need to log on. Aur ab ye mauka de rahi hu aapko $10 off hasil karne ka on your next bill at Fun Pizza Kitchen Frisco location. To ye baat yaad rakhiyega, Frisco location pe aapka ye giveaway valid hoga, $10 off aapko mil sakte hain your next bill. Aur aapko mujhe ye batana, ye to maine aapko bata diya ki 1-2-3 wo pehla गाना था जिसके लिए अलका याग्निक जी ने पाया अपना फिल्म फेयर अवार्ड। 1990s में अलका याग्निक को बहुत सारे नॉमिनेशंस मिले, लेकिन दो बार उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड जीता। आपको मुझे ये बताना है, अच्छा एक्चुअली मैं आपको नेशनल फिल्म अवार्ड्स की तरफ लेकर आती हूँ, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि नेशनल फिल्म अवार्ड किसी ने जीता हो। तो मुझे बताइए कि अलका याग्निक ने अपना पहला नेशनल फिल्म अवार्ड किस गाने के लिए जीता था। 9722355555 इज द नंबर टू द स्टूडियो, यू हैव टू कॉल एंड टेल मी व्हाट सॉन्ग वन हर फर्स्ट नेशनल फिल्म अवार्ड। द नंबर टू द स्टूडियो इज 9722355555।

आज आप सब बाजीगर हैं क्योंकि आपने पार्टिसिपेट किया फन पिज्जा किचन के इस गिव अवे में जो कि आया था आपके लिए. $10 ऑफ मिल सकता है आपको नेक्स्ट बिल एट द फ्रिस्को लोकेशन. और आप तमाम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया. उनको अपने करियर का पहला नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था फॉर द सॉन्ग घूंघट की आर से. 1993 में यह अवार्ड उन्होंने हासिल किया फॉर द मूवी हम हैं राही प्यार के. नदीम श्रवण का म्यूजिक था. और अब आप देख लीजिए क्या सिलसिला उनका ऐसा बन पड़ा था कि गाने एक से बढ़कर एक आ रहे थे, अवार्ड्स मिल रहे थे, लोग अप्रिशिएट कर रहे थे. अलका याग्निक जो हैं वो एक बहुत बड़ी स्टार बन चुकी थी बॉलीवुड की आवाज की दुनिया में. अच्छा, सबसे पहले मैं आपको विनर बता देती हूँ. जिस सीक्वेंस में आप कॉल करते हैं जी, वो सीक्वेंस को एक नंबर असाइन होता है, मैथ के फॉर्मूले में जाता है, आपकी लक आपका विन अनाउंस करती है. और आज की हमारी लकी विनर है मृणाल देवधर. मृणाल कंग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आपने ये $10 गिव ऑफ योर नेक्स्ट बिल एट फ्रंट पिज्जा किचन फ्रिस्को लोकेशन. दो दिन का टाइम दीजिए आपका नाम और नंबर रेस्टोरेंट पे पहुंचाने के लिए. एंड देन यू विल हैव 7 days टू गो एंड अवेल योर $10 ऑफ. एंड टू ऑल ऑफ यू हु पार्टिसिपेटेड, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. एज आई ऑलवेज से, मेरे लिए तो आप सब विनर हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. आप फोन उठाते हैं, कॉल करते हैं, यू टेक दैट टाइम, यू मेक दैट एफर्ट, इट रियली मीन्स अ लॉट. अच्छा जी, तो फिर घूंघट की आर इज द सॉन्ग दैट वी वर टॉकिंग अबाउट, तो वही प्ले करते हैं आपके लिए. एंड दिस इज स्पेशली गोइंग आउट टू सफी.

जी हाँ, ये खूबसूरत गाना जिसने लिया नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर अलका याग्निक फॉर हर वॉइस बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल फॉर दैट ईयर. और इससे मुझे एक, जब वो घूंघट की बात करती हैं और सिंघार की बात करती हैं तो जेवर की बात याद आती है. और इससे मुझे याद आया कि पीएमजे ज्वेल्स अब आपके लिए फ्रिस्को में ओपन है. दे आर ब्रिंगिंग ओवर 60 ईयर्स ऑफ ज्वेलरी एक्सलेंस एंड टाइमलेस इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप. चाहे आपको सोना खरीदने का दिल कर रहा हो, वैसे ही जस्ट टू पैम्पर योरसेल्फ, या फिर कोई इवेंट आ रहा है जैसे कि कोई ब्राइडल कलेक्शन आपने देखनी है, कोई एंगेजमेंट आ रही है, एनिवर्सरी आ रही है, या फिर आपको डायमंड्स खरीदने हैं, कोई डायमंड की बेहतरीन खूबसूरत ज्वेलरी खरीदनी है, सब कुछ मिलेगा आपको पीएमजे ज्वेल्स पे. दे आर लोकेटेड ऑन मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को. हमारा जो ज्वेलरी हम पहनते हैं वो हमारे लिए बहुत स्पेशल होती है बिकॉज इट होल्ड्स अ सिग्निफिकेंस, अ स्टोरी. कभी वो ज्वेलरी माँ की तरफ से आई होती है, कभी वो ससुराल की तरफ से आई होती है, कभी वो आपके किसी लव्ड वन ने दी होती है, कभी आपने खुद अपने आप के लिए खरीदी होती है. सो एवरी पीस ऑफ ज्वेलरी हैज अ स्टोरी फॉर अस, एंड पीएमजे ज्वेल्स वो जगह है जहां मिलेंगी आपको ऐसे ही पीसेज जो बन जाएंगे आपके लिए बहुत स्पेशल कहानियां.

0: अच्छा, मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवीज में दामिनी शुमार होती है. बिल्कुल डिफरेंट किस्म की एक कहानी हमें देखने को मिली, एंड आई थिंक मीनाक्षी शाद्री वॉज एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल इन द मूवी. अच्छा, लेकिन इस वक्त बात हो रही है अलका याग्निक की, तो हम ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं. ब्रेक की तरफ बढ़ते हुए आपको बताऊंगी कि 90s के बॉलीवुड में एक नया म्यूजिकल लैंडस्केप लिखा जा रहा था, डेवलप हो रहा था. नए नए हीरोज आ रहे थे, नई नई हीरोइंस आ रही थी, नई नई लव स्टोरीज हमें नजर आ रही थी. कैसेट्स का कल्चर और भी ज्यादा पॉपुलर हो रहा था. मैं और आप उस कल्चर का हिस्सा हैं, बाय द वे, बहुत कैसेट्स खरीदी हैं हमने. म्यूजिक कंपनीज नई इंट्रोड्यूस हो रही थी, ऑडियो ज्यूक बॉक्सेस, शादी ब्याहों के जो गाने थे वो बहुत पॉपुलर हो रहे थे. फिल्मों से वो गाने लिए जाते थे और बड़ा उनके ऊपर जी परफॉर्मेंसेस तैयार की जाती थी. कॉलेज के फंक्शंस के गाने स्पेशली अलग से होते थे. कॉलेज रोमांस बहुत मशहूर हो रहा था, और कॉलेज हर फिल्म में कोई ना कोई, जो कॉलेज की फिल्म है उसमें कोई ना कोई कॉलेज का यूथ को टारगेट करने का एक नया ट्रेंड मैंने देखा था 90s की फिल्मों में. जैसे कि कल कॉलेज बंद हो जाएगा, या फिर और भी खुद को क्या समझती है, इतना करती है, या फिर आज ना छोड़ेंगे तुझे, दम दमादम, इस तरह के गाने जो हैं वो बड़े मतलब हेटरेड टू लव वाली थीम्स बहुत मशहूर हो रही थी. अलका याग्निक बिकेम वन ऑफ द मोस्ट रिकग्नाइजेबल फीमेल वॉइस ऑफ दैट जनरेशन. वो कौन सी जनरेशन? हमारी जनरेशन ऑफकोर्स. तो सारे गामा भी उन्हें स्पेसिफिकली 1990s की प्लेबैक सिंगिंग क्वीन के रूप में डिस्क्राइब करता है. तो जो हम उनके बारे में रिसर्च कर रहे थे, तो उनको बाय फार ये कहते हैं ना मेलेडी क्वीन का खिताब मिला 90s में. मजीद बातें अलका याग्निक के बारे में, बट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: कहाँ गया? कहाँ रखा था?
9: सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
10: कौन सा?
9: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोल की भी है.
10: अरे सारे तो सेम है.
9: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो, ये वाला.
10: ओ हाँ, ये तो अलग है.
11: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो हैं. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
12: पार से आप, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, कल हिंदी हिंदी बोल.
13: यू नो माय वॉइस ऑन द रेडियो, नाउ लेट मी बी अ वॉइस यू कैन ट्रस्ट इन रियल एस्टेट. मैं हूँ नवनीता खेमका, रियल्टर विद केलर विलियम्स रियल्टी. बाइंग, मूविंग और सेलिंग अ होम, आई ब्रिंग मार्केट नॉलेज, क्रिएटिव मार्केटिंग एंड पर्सनल कमिटमेंट टू योर जर्नी. बिकॉज टू मी रियल एस्टेट इजंट जस्ट अबाउट प्रॉपर्टीज, इट्स अबाउट यू मेरे दोस्तों, योर पॉसिबिलिटीज एंड योर न्यू बिगिनिंग्स. Every home has a story. Let's create yours together.
11: Call Namrita Khemka at 347-449-4242.
12: Phone uthaye, number dabaye.
13: 347-449-4242.
14: It's the time to clock out. It's the time to catch up.
15: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame. जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन. एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM. ऑर्डर एनी 2 entrees एंड गेट 1 appetizer एब्सोल्यूटली फ्री. ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
16: स्टॉप फेस्टिव फैशन चेक नवरात्रे के आउटफिट्स रेडी है
17: दो चनिया चोली है मिक्स एंड मैच कर लूंगी
16: फैशन वायलेशन सेम आउटफिट को नौ रात ओवरटाइम
17: तो सॉल्यूशन
18: इंडियन एथनिक वेयर बाय ज्योतिका पटेल एक्सप्लोर अ स्टनिंग कलेक्शन ऑफ स्टाइलिश कंटेम्प्रेरी चनिया चोलीज फॉर अ न्यू लुक एवरी डे इन नवरात्रि प्लानिंग अ वेडिंग डिस्कवर क्वालिटी वेडिंग एंड कस्टमाइज्ड ब्राइडल वेयर फॉर मेन एंड वुमेन एट ग्रेट प्राइसेस कॉल 9454442194 और एक्सप्लोर jyotikapateldesigns.com इंडियन एथनिक वेयर बाय ज्योतिका पटेल डिजाइंड फॉर सेलिब्रेशंस
19: एलविंग वालो ध्यान से सुनो ये सिर्फ म्यूजिक नहीं हिंट है Because the best chicken in Dallas is finally in Irving. Crispy, juicy, bold. The chicken Dallas has been craving after Plano and Richardson. Sal's Hot Chicken is now in Irving, bringing the crunch, the flavor, and the heat. You heard chicken, we heard Sal's. Grand opening on 10th October.
20: Hey, tumne kabhi insurance liya?
21: Liya.
20: Kabhi policy samajh bhi aaya?
21: Nahi aaya.
20: Mujhe bhi nahi aaya. आएगा भी कैसे इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस वेदर इट्स होम ऑटो हेल्थ और बिजनेस एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू होटल्स मोटेल्स गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर नो कंफ्यूजन नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-7772 That's 972-863-7772
22: Visit www.senadainc.com today
23: Desi flavors bhi aur Texas ke favorites bhi Ab sab kuch milega ek hi jagah HEB mein Sona Masoori Rice, Nanak Paneer, Pale Ji Biscuits aur bahut kuch Wahi authentic swaad jiske saath aap bade hue hain Aur saath hi HEB ke exclusive Texan favorites Jo aapko yahan pasand hai Ab ek hi shopping trip mein zyada kaam niptaiye Aur is summer zarur dekhiye HEB ke naye DFW stores Mid Cities Irving और मर्फी में खुल रहे हैं तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स HEB Here everything is better
24: Hi this is Varun Sharma and you are listening to the most popular FM station in the US 104.9 FM Fun Asia Radio
25: जुड़ जाओ अपनी धरती से देसियों का सच्चा रेडियो चैनल Fun Asia 104.9 FM

104.9 FM Furniture Radio पे Afternoon Drive Time with Sunehri Kiran में वो 90s का Bollywood Special चल रहा है. अलका याग्निक पे आज हमने बात करी है. 90s का दौर हो, 90s का म्यूजिक हो, 90s के Bollywood का रोमांस हो और अलका याग्निक का तस्करा ना हो तो 90s मुझे लगता है स्किप कर देना चाहिए हमें. 80s से सीधा 2000 में आ जाना चाहिए बिकॉज 90s हो और अलका याग्निक इज द प्रेजेंस. अच्छा, उस जमाने में जो रोमांस की डेफिनेशन थी या गाने जो रोमांस के थे वो बार बार एक ही कॉम्बिनेशन हमारे सामने आता था. ऑफकोर्स एक मेल वॉइस होती थी और एक फीमेल वॉइस होती थी और उसके बाद दरमियान में होती थी बहुत सारी मोहब्बत, प्यार, जैसे कि मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, या फिर देखा है पहली बार, साजन की आंखों में प्यार, या फिर चुरा के दिल मेरा, गोरिया चली. ये सारे गाने अभी आपके लिए लाइंड अप है. पता है हम कहाँ तक पहुँचे हैं? अभी हम पहुँचे हैं जी, जो मेरे पास लिस्ट है गानों की, We have reached around 1994. जी हाँ, 1994 के गानों तक हम पहुंच 93 एक्चुअली. अभी हम 93 के गानों तक पहुंच चुके हैं, यानी कि एपिसोड 2 तो आ रहा है, इसका मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ. अच्छा, 1993 में अलका याग्निक ने एक बार फिर माधुरी को अपनी आवाज दी और जैसे कि 1, 2, 3 से माधुरी स्टार बनी थी, डांसिंग स्टार भी बनी थी और अलका याग्निक को मिला था अपने करियर का पहला फिल्म फेयर अवार्ड. तो फिर अलका याग्निक को मिला अपने करियर का दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड एक बार फिर माधुरी की वजह से. माधुरी के ऊपर परफॉर्मेंस, द डांस डीवा क्वीन माधुरी दीक्षित और आवाज अलका याग्निक की. फिल्म थी खलनायक और ये गाना बन गया उस वक्त के हर महफिल की जान.

एक बार फिर 1994 के फिल्म फेयर अवार्ड में इस गाने के लिए जीता अलका याग्निक जी ने बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल का अवार्ड. अब तक दोनों के दोनों अवार्ड उन्होंने जो गाने गाए और मिले उनको वो माधुरी दीक्षित पे पिक्चराइज थी और दोनों ही डांस नंबर्स थे. लेकिन 1998 में ये सिलसिला टूटा. बट 1998 तक जब हम पहुंचेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि उन्हें अगला अवार्ड किस गाने के लिए मिला था. बीच में उन्हें मिली बेतहाशा नॉमिनेशंस, बट बहुत सारी नॉमिनेशंस उनको हम आहिस्ता आहिस्ता में गानों के थ्रू आपके लिए कवर कर रही हूं. तो जी कुछ जोड़ी जो जोड़ियां जो अलका याग्निक की बनी और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई वो उनमें सबसे पहली जोड़ी थी अलका याग्निक और उदित नारायण की. अलका याग्निक और उदित नारायण जी की केमिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आई म्यूजिक कंपोजर्स को भी और हम एज अ लिसनर, बिकॉज जब हम सुनते हैं किसी चीज़ को और धड़ाधड़ कैसेट्स खरीदते थे, 25 रुपये की कैसेट होती थी और बड़े पैसे जमा होते थे जी, बड़े अहतमाम से वो 25 रुपये जमा किए जाते थे और जाके उस फिल्म की कैसेट खरीदी जाती थी. 5 गाने फिल्म में होते थे, साइड पे एक फिल्म और दूसरी साइड पे दूसरी फिल्म, तो बड़ी मैचिंग ढूंढी जाती थी कि ये जो दूसरी फिल्म है ये जो अगली साइड है 5 वाली वो भी अच्छी फिल्म होनी चाहिए ताकि गाने हमारी जो 25 रुपए हैं वो वसूल हो जाएं. एनीवेज उदित नारायण के साथ उनकी जो पेयरिंग थी वो एब्सोल्युटली मैजिकल कंसिडर की जाती थी और बहुत सारे गाने जो हैं बेइंतहा खूबसूरत गाने उनके ऊपर पिक्चराइज थे और ऐसा लगता था अलका याग्निक की आवाज़, उदित नारायण की तो खैर आवाज़ हम कभी, मैं आपके लिए उदित नारायण स्पेशल भी लाऊंगी फॉर द 90s, तो फिर हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अलका याग्निक की आवाज़ हर हीरोइन पे ऐसा लगता था यही गा रही हैं, चाहे वो माधुरी हो, चाहे वो करिश्मा हो, जूही चावला हो, काजोल हो, मनीषा कोइराला हो, हर हीरोइन की आवाज़ बन जाती थी अलका याग्निक. आई थिंक सिंगर की सबसे जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि जब वो गाएं तो ऐसा लगे कि वो उस ही हीरोइन के लिए गाया गया है.

एक से बढ़कर एक खूबसूरत गाना, चाहे वो पार्टी नंबर हो, चाहे वो डांस नंबर हो, चाहे वो रोमांटिक नंबर हो, चाहे वो कॉलेज नंबर हो, सारे ही गाने अलका याग्निक ने गाए. अच्छा, मैंने आपको बताया था कि 1980 से लेके 89 तक अलका याग्निक ने अराउंड 350 गाने गाए. एग्जैक्ट नंबर अगर हम देखें तो आई थिंक 342 मैंने पढ़ा था, बट यू नो दैट कैन बी प्लस माइनस कुछ हो सकते हैं. और फिर 1990 से लेके 1999 तक, यानी कि जो 90 की दिहाई थी, इसमें अलका याग्निक ने अराउंड 1220 यानी कि 1220 सॉन्ग्स गाए, जो कि अंदाजे के मुताबिक जो नंबर मैं आपको कैलकुलेट कर रही हूँ. सो हजार से ज्यादा गाने उन्होंने गाए और बहुत सारे गाने उनमें से स्टैंड आउट करते हैं हमारी मेमोरीज में. अगला गाना जो मैं आपके लिए प्ले कर रही हूँ, बिफोर आई प्ले दैट आपको बताती चलूँ कि अगर आप यू लुकिंग फॉर अ ड्रीम होम इन इंडिया, या फिर आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, यू आर लुकिंग फॉर योर नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो आप बिल्कुल मिस मत कीजिए ये एक्सपो जो आपके लिए आने वाला है. दिस इज गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो प्रेजेंटेड बाय माय स्क्वायर फीट, द बिगेस्ट इंडियन प्रॉपर्टी एक्सपो दैट इज हैपनिंग इन फ्रिस्को. ये आपका मौका है लीडिंग जो डेवलपर्स हैं इंडिया के उनसे मिलने का. बेंगलुरु से आए हैं, हैदराबाद से डेवलपर्स आए हैं, चेन्नई से आए हैं, मुंबई, पुणे, दिल्ली, हर तरफ से डेवलपर्स आए हैं. 200 से ज्यादा एक्साइटिंग प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट्स आपके लिए डिस्प्ले हैं वहां पे. एवरीथिंग इज अंडर वन रूफ. ऑल यू हैव टू डू इज गो एंड अटेंड गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो. और हो रहा है ये आपके लिए अक्टूबर 10th एंड 11th को, यानी कि परसों. आज 8, 9, 10 परसों से ले, परसों और उससे एक दिन बाद 10 बजे सुबह से शाम 8 बजे तक. सो 10 AM to 8 PM अक्टूबर 10th and 11th एट हायत रीजेंसी फ्रिस्को. और पार्किंग बिल्कुल फ्री है जी, सो उसकी फिक्र मत कीजिए कि पार्किंग कहाँ करनी है. सो मार्क योर कैलेंडर्स, ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स, योर बिजनेस पार्टनर्स, हूएवर यू वांट टू विजिट विद. गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो, दिस इज योर परफेक्ट प्रॉपर्टी डेस्टिनेशन. आप यहाँ आइए, देखिए इंडिया में क्या चल रहा है, और यू माइट जस्ट लाइक समथिंग टू बाय.

0: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
1: Call 857-891-8942 today.
2: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
3: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
2: Kya matlab?
3: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
2: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
3: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
2: Ab to karna hi padega, madam.
4: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
5: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar. खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है
6: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग
7: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Umar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Umar Khawaja, your legal lifeline.
8: जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना
6: लाइफ हो या हेल्थ कब क्या हो जाए पता नहीं 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर अर्जेंट केयर एक्सरे सीटी स्कैन हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा सब कुछ एक ही रूफ के नीचे लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 डेज a week 8 a.m. to 8 p.m. walk in anytime 9191 Kaiser Way suite 205 Frisco
9: filmon ka maza action drama aur romance mein hai aur khane ka maza har flavor ke zabardast performance mein
10: kabhi chatpata sa twist kabhi teekha sa kick kabhi meetha sa sukoon
9: jahan har flavor kare full on entertain the flavor lounge
10: papri chaat se malpua rabri tak har dish mein mile zindagi ke flavors ka asli swaad visit their new website or download the flavor lounge app for exclusive deals the flavor lounge har bhai super hit
11: dil ki baat kisse kahe
12: pandit gurudev se 35 saal se zyada ke experience ke sath pandit gurudev karte hain kundali reading birth chart analysis palm reading aur face reading black magic aur negative energy removal mein expertise pyar shaadi ya rishton ki uljhan ho to personal guidance lijiye call 469-581-1777 That's 469-581-1777. Pandit Gurudev, aaiye, apni baat kahiye.
13: Order, order. Mr. Impressions, campaign ka result.
14: Your Honor, hazaron logon ne ad dekha.
13: Miss Clicks?
15: 100 logon ne click bhi kiya.
13: Customers kitne aaye?
16: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
17: Marketing mein clicks nahi, customers matter karte hain. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smart Reach AI, turn attention into customers. Smart Reach AI, a FunAsia Network product.
18: इंडिया में घर खरीदना हुआ आसान गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो आ रहा है फ्रिस्को में अक्टूबर 10th एंड 11th हैथ रीजेंसी फ्रिस्को 10 a.m. to 8 p.m. मुंबई बेंगलोर पुणे चेन्नई हैदराबाद एंड दिल्ली एनसीआर के टॉप डेवलपर्स से मिलने का एक ही मौका चूज योर होम फ्रॉम 200 प्लस प्रोजेक्ट फ्री एंट्री एंड फ्री पार्किंग एन इवेंट बाय माई स्क्वायर फीट
19: कितने आदमी थे
4: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है

104.9 FM Fun Asia Radio पे आप सुन रहे हैं वो 90s का बॉलीवुड और अलका याग्निक स्पेशल आपके लिए लेकर आई थी 2:30 बजे से 4:30 बजे तक, दो घंटे एपिसोड 1, बिकॉज अभी तो बहुत सारे, अभी तो हम 1994 तक के गानों पर पहुंचे हैं और 4 भी पूरा नहीं हुआ. सो एपिसोड 2 डेफिनेटली आ रही है और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें एपिसोड 2-3 लानी है कि नहीं. ये एक जर्नी है जो मैं आपको लेके जा रही हूँ 90s की अलका याग्निक की और किस तरह से उन्होंने उनके गाने उनके करियर में, उनके ग्राफ में कौन कौन से गाने आए, कौन कौन से पॉपुलर गाने आए और किस तरह से उनका ग्राफ आगे बढ़ता गया. एंड शी बिकेम वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल वॉइसेज बॉलीवुड हैज एवर सीन, दैट इज अलका याग्निक. और अब जो है वो आपके लिए कुछ गाने, क्योंकि 90s के बॉलीवुड में मैं रिस्ट्रिक्टेड होती हूँ, 90s के गाने प्ले करती हूँ आपके लिए. अब कुछ दो चार आपके लिए 2000s के गाने भी उनके जरूर प्ले करूंगी, बिकॉज ये आधा घंटा या ये 20 मिनट अब हम करेंगे थोड़ा सा जनरल गाने प्ले. लेकिन उससे पहले मैं आपको बताने लगी हूँ वेदर अपडेट, बिकॉज इट इज टाइम नाउ टू टेल यू. थर्सडे अक्टूबर द 8th 4:39 PM स्टूडियो में हो चुका है जी, और सिटी ऑफ मिकिनी में इस वक्त है 90 degrees एंड इट फील्स लाइक 90 degrees एज वेल. आज का दिन रहा सनी, हाईज इन द अपर 80s to 90s, जबकि शाम रहेगी क्लियर विद लोज इन द मिड 60s. पॉलन काउंट आज का 8.3 विच इज मीडियम हाई. रैगवीड एंड एल्म इज वॉट इज बॉदरिंग, प्लीज मेक श्योर आप अपनी रेमेडीज ले लें, जो भी आप दवाई लेते हैं, शहद लेते हैं, वट एवर सूट्स यू. यूवी इंडेक्स इज 6 विच इज मीडियम. सनराइज आज का हुआ 7:25 AM पे, जबकि आज का सनसेट होगा 7:02, यानी कि रातें हो रही हैं लंबी और दिन होने लगे हैं आहिस्ता आहिस्ता छोटे.

करीना, थैंक यू सो मच आपकी फोन कॉल का. बहुत कभी कभी होता है कि बिल्कुल एक नया लिसनर फोन कॉल करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं शो को और एंजॉय कर रहे होते हैं. आई एम सो एक्साइटेड एंड ग्लैड टू हेयर फ्रॉम यू. ये हमारा कॉन्सेप्ट आपको बहुत पसंद आया 90s के बॉलीवुड, वो तो खैर हर थर्सडे. जस्ट टू रिमाइंड एवरीवन, थर्सडे के थर्सडे मैं आपके लेकर आती हूँ वो 90s का बॉलीवुड, बिकॉज आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण में आपको मिलता है हर रोज एक नया फ्लेवर. सो 90s के बॉलीवुड का फ्लेवर होता है थर्सडे स्पेशल. और आज हमने अलका याग्निक को की कुछ बेहतरीन 90s के गाने आपके लिए प्ले किए. अभी मैं 93 खत्म करके 94 तक पहुंची हूं और अगली एपिसोड जो कि एपिसोड 2 होगी उसमें हम 94 ऑनवर्ड सिलसिला 1999 तक का जारी रखेंगे और आपको सुनाऊंगी 90s के बॉलीवुड में एक ऐसे सिंगर की आवाज जिन्होंने हमें कुछ बेहतरीन 90s के गाने दिए जो सिर्फ 90s तक महदूद नहीं है जी, उन गानों की रीच आज तक. वो कहते हैं ना अगर आपने कर्मा फिल्म देखी है तो एक पुरानी फिल्म थी जिसमें अनुपम खेर थे जिन्होंने डैंग डॉक्टर डैंग का किरदार अदा किया था, तो उनको थप्पड़ पड़ता है दिलीप कुमार से. दिलीप कुमार जी उनके मतलब किसी बात पे उनको थप्पड़ लगा देते हैं तो डॉक्टर डैंग कहते हैं इस थप्पड़ की गूंज तुम्हें बहुत दूर तक सुनाई देगी. तो ये जो कुछ ऐसे सिंगर्स हैं 90s के जिनके आवाज़ की गूंज हमें आज तक सुनाई देती है और हम आज तक करते हैं उन्हें एंजॉय, इट इज जस्ट एब्सोल्युटली mesmerizing. ये हुआ बात आपके लिए. Wait for that next episode. Thank you, Kareena, for calling and for appreciating and enjoying the show. And all of you जो मुझे call करके show को पसंद कर रहे हैं, आप हमेशा 90s के show को enjoy करते हैं, इसलिए आपके लिए खास लेकर आती हूँ. अच्छा जी, अब आगे बढ़ रहे हैं. आगे बढ़ते हुए आपको करेंसी की अपडेट देते चलें. US डॉलर कहाँ स्टैंड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू अदर करेंसीज इन द वर्ल्ड. यूरो इस वक्त ट्रेड कर रहा है 0.89 पे, जबकि ब्रिटिश पाउंड 0.75 पे स्टैंड कर रहा है. इंडियन रुपी 96.77, कनेडियन डॉलर 1.42, जबकि पाकिस्तानी रुपी 277.02 पे ट्रेड कर रहा है. नेपाली रुपी 154.91, जबकि बांग्लादेशी टका 123.30 बांग्लादेशी टकास आर ट्रेडिंग फॉर वन यूएस डॉलर.

और इसी के साथ इट इज टाइम टू गिव यू द गोल्ड प्राइस अपडेट. सोना आज इस वक्त भाव है जी, अकॉर्डिंग टू गोल्ड प्राइस डॉट ऑर्ग, एक आउंस सोने की कीमत इस वक्त है $4,133.55, जबकि एक ग्राम सोने की कीमत राइट नाउ इज $132.90. कल की निस्बत एक ग्राम सोने की कीमत में 62 सेंट्स का इजाफा हुआ, जबकि एक आउंस सोने की कीमत में $19.32 का इजाफा देखने को मिला. But that's pretty much all that I have for you where your finance matters right here on Afternoon Drive Time with Sunehri Kiran. इस गाने के साथ जब हम वापस आएंगे तो I will give you the traffic update और एक amazing concert के बारे में आपको बताना है जो Dallas में आ रहा है. कहीं मत जाइए.

और इसी के साथ ट्रैफिक की अपडेट देते चलें आपको. इफ यू आर हेडिंग समवेयर तो दो इंसिडेंट्स नजर आ रहे हैं जी. देयर इज अ कोलिजन एट IH-635 टुवर्ड्स डैलस नॉर्थ टोलवे ईस्ट बाउंड, जिसकी वजह से 3 लेन्स आर ब्लॉक्ड इंक्लूडिंग एन एग्जिट लेन एज वेल. और सिवेरिटी ऑफ दिस इंसिडेंट इज रिपोर्टेड हाई. एम्बुलेंस हैज बीन कॉल्ड, ऑल्दो इट हैज बीन अबाउट एन आवर जब ये इंसिडेंट वेरीफाई हुआ है. तो इसका मतलब ये है कि अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिलीफ बहुत जल्द मिलने के इम्कान है. जबकि एक और कोलिजन हमें नजर आ रहा है US-75 पे टुवर्ड 635 साउथ बाउंड, जिसकी वजह से 1 लेन इज ब्लॉक्ड, दैट इज द एग्जिट लेन टुवर्ड साउथ बाउंड. द सेवेरिटी ऑफ दिस इंसिडेंट इज रिपोर्टेड हाई. दिस हैज बीन वेरीफाइड 30 मिनट्स अगो. तो यहां अभी आपको काफी बैकअप मिलेगा. सो दीज आर द टू कोलिजन्स जो हम देख रहे हैं इस वक्त ऑन द रोड्स ऑफ डैलस. अदर देन दैट थिंग्स सीम प्रीटी मच यू नो क्लियर. अच्छा, अब ये तो हुई हमारी ये बात, और आपको एक जबरदस्त इवेंट की इन्फॉर्मेशन के साथ रैप अप कर रही हूं, और वो इवेंट है राहत फतेह अली खान साहब का. जी हां, आ रहे हैं राहत फतेह अली खान लाइव. ही विल इज कमिंग विद हिज सन शाहजमान अली खान, एंड ये टूर है जी वंस अपॉन अ लाइफ टाइम वर्ल्ड टूर 2026. तो आइए एंजॉय कीजिए अ नाइट ऑफ कवाली एंड सूफी म्यूजिक एंड बॉलीवुड हिट्स एंड टाइमलेस मेलोडीज. कब? फ्राइडे अक्टूबर द 16th 8:30 PM एट कमेरिका सेंटर इन फ्रिस्को. This event is brought to you by Rehan Siddiqui, Dr. Yasmin Qureshi and True Payment Solutions. So, exclusive jo food concessions hain, wo available hungi by the grand sponsor, Kadai Point Plano. So, aaiye aur enjoy kijiye an evening of music and flavors, all under one roof. Tickets are available. You can buy them exclusively at Ticketmaster ya phir Sulekha.com. In dono pe aapko ye, yani ki Once Upon a Lifetime World Tour 2026, Rahat Fateh Ali Khan and his son Shah जमान अली खान विल बी हेयर लाइव. आपके लिए इस अपडेट के साथ छोड़े जा रही हूं आपको. कल मिलूंगी. कल है फ्राइडे, एंड यू नो व्हाई आई लव फ्राइडे इज बिकॉज वन, फ्राइडे इज वन ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ द वीक बिकॉज वीकेंड आ रहा होता है, और टू इट इज किड्स जंक्शन. सो आई विल ब्रिंग यू किड्स जंक्शन एंड 3 PM टिल 4:30 PM किड्स कैन कॉल इन एंड मेक ऑल योर रिक्वेस्ट. गाइज, आई विल टेक योर रिक्वेस्ट, बट आई विल बी हेयर सेम टाइम सेम प्लेस 2:30 PM से 5 बजे तक मैं आपके साथ मौजूद होती हूँ. मिक्स पॉट से हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं, जुम्मे की, कुछ पुराने और नए गानों का गुलदस्ता, फिर हम जाते हैं किड्स जंक्शन के ऊपर. सो बने रहिए मेरे साथ, एंजॉय कीजिए, हैव अ लवली रेस्ट ऑफ योर इवनिंग. आई विल सी यू टुमारो.

0: हेलो
1: हेलो
0: मेरे साथ डांस करोगे?
1: नहीं।
0: ए जरा मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करो हुँ? अब तुम वही करोगे जो मैं चाहूंगी।

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: अरे डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सस के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सस बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
3: अरे यार, घर मिल गया।
4: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग।
1: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट। अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर। वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी।
4: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी?
1: बिल्कुल। विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम।
5: Discover Tassels by Renu in Frisco. Designer ethnic wear at great prices.
6: From elegant saris, lehengas to Indo-Western fusion sets and men's ethnic wear. Find festive and wedding styles.
5: For exclusive deals and collections, join Renu's weekly Facebook Live or follow them on Insta.
6: Visit tasselsbyrenu.com or call 563-508-5673. That's 563-508-5673. Tassels by Renu. Dress beautifully, celebrate stylishly.
7: एलविंग वालो, ध्यान से सुनो, ये सिर्फ म्यूजिक नहीं, हिंट है।
8: Because the best chicken in Dallas is finally in Irving. Crispy, juicy, bold. The chicken Dallas has been craving after Plano and Richardson. Sal's Hot Chicken is now in Irving, bringing the crunch, the flavor and the heat. You heard chicken, we heard Sal's. Grand opening on 10th October.
9: 2026 mein aapki rashi ke liye dhan aur safalta ke yog hain.
10: Are sun, ye astrologer bol raha hai 2026 teri rashi walon ke liye bahut lucky hai.
11: Ma, reels pe sab lucky hi hote hain. Generic predictions sabko thodi help karti hain. To phir agar real clarity chahiye to personalized guidance lo.
12: Guidance ki baat ho to ek hi naam hai, Pandit Ram तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
11: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
13: Are you trying to protect your business, retain top talent and plan for future succession all at the same time? An executive retention strategy using life insurance may help address multiple business goals, including key person protection, employee retention incentives and future buyout planning. To explore business life insurance strategies, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Business planning strategies should be reviewed with qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
14: Marvin Das and Bindas Services present the 6th Annual South Asian Food Festival on 1st November from 12 noon to 8 p.m. at the Sound Venue in Koppel. Enjoy food, shopping, dance and live music with free entry and parking. Vendors and exhibitors, showcase your business to thousands. Call Marvin at 972-302-7012 to reserve your spot.

0: भैया देखो, दुनिया में ना जो नहीं होता वो होता है और जो होता है वो नहीं होता है। अब जैसे एक फ्रूट है, ठीक है जी, वो रियल होके भी रियल नहीं है, उसका नाम है नारियल। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो साइंस कहती है कि पानी उबालने से ना कीटाणु मर जाते हैं, पर साइंस को ये भी नहीं पता उल्लू के पट्टी को कि कीटाणु तो मर जाते हैं पर उनकी डेड बॉडी वो तो पानी में रह जाती है। स्टूपिड है साइंस, इसलिए मैंने चुपचाप आर्ट्स ले लिया। प्योर वेजिटेरियन लोगों, सोचो कितनी मौतें हैं तुम्हारे अंदर, हैं?
1: रस पीने की प्यास है, बंदा ये
0: चलो एक्सीडेंटली स्कूटर पे जाते जाते मच्छर तो सभी ने खाया है, पर ये जान के देखो कि अच्छा, पाप का लेवल देखो तुम, पाप का इंटेंसिटी ऑफ पाप देखो। पहले आप उन कीटाणुओं को पानी में भरते हो, फिर उसको पतीले में डालते हो, फिर उनको उबालते हो, गड़ गड़ गड़ गड़ वो जो गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ होता है ना, वो चीख रहे होते हैं, बचा लो बचा लो बचा लो। पर ना ना ना, कहीं मजाल है, मैंने उस दिन भी बोला था, आपको तो सिर्फ अपने आप से मतलब है, छोड़ो। All right, welcome back to your evening drive time show right here on Fun Asia. This is the Bindas show. 5:26. Swagatam wapas on this station. This part of the show is brought to you by Seema Mehta Law Firm, jo ki aapke liye leke aate hain immigration ki expertise. Anything to do with immigration, she is the lady to go to. Unki website hai seemamehtalawfirm.com. Get all the information there. Perms ho, certifications ho, ya ho aapki green card filing, ya fir agar aap chahte hain ki EB5 program ka fayda le, she can do that for you. Questions hain, koi baat nahi, answer milenge. आपको होमवर्क नहीं मिलेगा, होमवर्क तो आप उनको दोगी, हमें होमवर्क मिलता था। चलो आप उनको होमवर्क दे सकते हैं, कैसे, अपने सवाल टाइप कीजिए और भेज दीजिए info@seemamehtalawfirm.com। गानों का सफर रुकना नहीं चाहिए बड़े भैया, अच्छे अच्छे गाने चलाते रहो। लो फिर

धुरंधर, व्हाट अ फिल्म इट वाज इंडीड. यू आर गोना बी विद मी टिल 7 o'clock. तो अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है आ सकती है मेरी तरफ. आई हैव सम रिक्वेस्ट लाइंड अप, बट अगर आप अच्छा नया तरीन तरह मतलब सैड ना हो, बस रोने धोने वाला ना हो, आप ही का मूड गाड़ी में जाते हुए खराब ना हो जाए, ये मैंने क्या रिक्वेस्ट कर दी. तो कोई बढ़िया सी रिक्वेस्ट हो तो आप मुझे जरूर कॉल कर सकते हैं 972-235-5555. ऑफ कोर्स इफ यू सेलिब्रेटिंग अ बर्थडे, एनिवर्सरी, कोई भी खुशी का मौका आज आपकी लाइफ में है, देन आई विल बी लवली, आई मीन आई विल फील माई सेल्फ, क्या बोलूँ, आपने मेरे को अपने घर बुला लिया, ऐसी सी फीलिंग आ जाएगी. तो अगर आप बिना घर बुलाए मुझे यू नो प्रेजेंस फील करना चाहते हो, या मैं वो गलत फहमी में जी लूँ, तो आप मुझे स्टूडियो की लाइन पे कॉल कर सकते हैं. आई विल टेल यू मोर अबाउट अनदर थिंग कॉल्ड रिलेटिव मीडिया, विच इज़ अ न्यू प्रोडक्ट फ्रॉम फन एशिया. वो मैं बताऊँगा आपको इस अगले गाने के बाद. एंड अगले गाने के बाद ये भी बताऊँगा कि एक गिव अवे दैट इज़ कमिंग योर वे बरिस्ता हाउस का, वो आप कैसे जीत सकते हैं. फरनाल आपको ये बताना चाहता था कि नवनीता खेम का, जो हमारे यहाँ फन एशिया की आरजे हैं, आप उनको सुनते हैं फ्राइडेज़ को, एंड नाउ शी इज़ अ रियल्टर विद केलर विलियम. तो अगर आप चाहते हैं अपना घर लेना या अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, शी कैन डू बोथ ऑफ दैट फॉर यू, एंड फॉर दैट जस्ट गिव हर अ कॉल. आप उनको जानते हैं, बड़ी बबली सी और वार्म पर्सनैलिटी है उनकी. सो शी विल मेक श्योर दैट यू गेट सम ऑफ द बेस्ट डील्स. नवनीता खेमखा इज हर नेम, एंड शी इज विद फन एशिया रेडियो एंड केलर विलियम एज अ रियल्टर. 347-449-4242 उनका फोन नंबर है. टुडे मार्क्स द बर्थडे ऑफ अनदर लेजेंड हु इज नो लॉन्गर विद अस, एंड आई एम गोना प्ले वन ऑफ हिज ट्रैक्स. हियर वी गो.

0: राजकुमार साहब यानी कि कुलभूषण पंडित साहब आज ही के दिन 8th ऑफ अक्टूबर 1926 में जन्म हुआ था इनका, एंड बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं। व्हाट अ पावरफुल एक्टर ना, मतलब इनकी स्क्रीन प्रेजेंस ऐसी थी कि एक तो हैंडसम रज के, मतलब जैसे खंड डाल के रब ने बनाया हो इनको, खंड मतलब शुगर बाय द वे, एंड व्हाट अ पर्सनैलिटी। एक डायलॉग डिलीवरी, एक इनकी आवाज़, मतलब मुझे लगता है अगर कोई सिर्फ आवाज़ और लुक्स के बलबूते पे फिल्मों में रहा वो थे राजकुमार साहब। सम वंडरफुल फिल्म्स, वंडरफुल मेमोरीज आज हम कर रहे हैं आपको याद। वेरी हैप्पी हेवनली बर्थडे टू यू।
1: As a Texas state legislator, James Tallarico has stood with the South Asian community and fought to lower our costs. He believes that being a Texan isn't about where you come from or how you pray. It's about how you love your neighbors. He is running for U.S. Senate to stand up for all Texans and end the corruption raising our prices. Vote to bring light and hope to Texas. Vote James Tallarico.
2: I'm James Tallarico, and I approve this message.
3: Paid for by Tallarico for Texas.
4: Your Dubai investment opportunity is here. Success Real Estate and Danew Properties present the Grand Dubai Property Show, October 17th and 18th, 10 a.m. to 9 p.m. at Lux Hotel Arlington. Explore luxury properties with payment plans starting at $1,300 a month. Meet the developer directly, book at the show, and qualify for round-trip flights to Dubai and a luxury hotel stay for two. Call Habib Mita at 954-799. 02620. That's 954-790-2620.
5: अगर मैं कहूँ तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल 300 है और ब्लड प्रेशर 160 तो क्या कहोगे?
6: क्या?
7: ड्रीम में रियलिटी चेक अक्सर डर बीमारी का नहीं उसके पकड़े जाने का होता है, लेकिन व्हाट इफ में मत अटके, एनुअल चेकअप करवाइए।
8: विजिट एलन इंटरनल मेडिसिन एंड ट्रस्ट डॉक्टर वनीता एंड हर टीम फॉर एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग्स एंड वेट मैनेजमेंट। न्यू पेशेंट्स विद सेम डे अपॉइंटमेंट्स वेलकम। कॉल 4696499995 और विजिट aimallen.com।
9: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
10: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
11: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
12: It's true. Hum apni sadbuddhi se bahut si problems solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
13: That garba was totally worth it. We had so much fun.
14: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
13: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
15: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your garba may end, but the party doesn't.
16: Dad, property papers kahan hai?
17: Laptop mein.
16: Investment?
17: Google Drive.
16: Insurance? Passwords?
17: Beta, don't worry. Mujhe sab pata hai.
16: Dad, wahi toh problem hai. Sirf aapko pata hai.
18: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
19: Hi, this is Deepti Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
18: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
6: शॉपिंग?
17: बिल्कुल, पर कहाँ? फेस्टिव लुक्स के लिए वही दो से तीन ऑप्शंस?
20: ऑप्शंस? I will give you the latest destination.
21: Introducing Pooja's Trends. Lehengas, co-ord sets, fusion wear, shararas or jewelry. Premium quality, affordable prices. Grand opening sale, flat 15% off. Visit 10202 Coit Road, Suite 400, Frisco. Call 214-457-4897. Pooja's Trends. Your trend, your style.
22: यार फेस्टिवल सीजन आ रहा है और मेरी वाइफ ने शॉपिंग लिस्ट भी दे दी है।
23: कितनी लंबी लिस्ट है?
22: बस दो पेजेस। इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ एक पूजा मंदिर भी।
23: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो, SFL वर्ल्डवाइड है ना। इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं। पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है।
24: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL वर्ल्डवाइड शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड वर्ल्डवाइड। विजिट SFLWorldwide.com।
25: हर मोहब्बत की आवाज, द वन एंड ओनली लिविंग लेजेंड राहत फतेह अली खान।
26: राहत फतेह अली खान
27: Experience Once Upon a Time World Tour 2026. Rahat Fateh Khan aur unke bete Shahzaman Ali Khan ek hi stage par.
25: Brought to you by Rehan Siddiqui, Dr. Yasmeen Qureshi and True Payment Solutions. Friday, October 16, 8:30 PM, Comerica Center, Frisco.
27: Grand sponsor Karahi Point Plano ke exclusive concessions ke saath.
25: Tickets on Ticketmaster and Suleha.com.

0: On the request of 9-year-old Shaina, you know, Shaina is a fan of me, man. Wow, that's such a big deal. Thank you so much, Shaina. Thank you for listening to me. And she said, I listen to your show quite often and I like it. And I said, thank you very much. I'm blushing, Shaina. Shaina ki tarah, aap bhi mujhe call karke bata sakte hain ki aapko mujhe mera show achha lagta hai. Par wahi baat hai na, aapko to sirf bas apni padi hai, yaar, koi baat nahi. Aapko main ye bata dun ki zindagi mein na, ek dusre ka saath jab ho na, wahi sabse behtar time hota hai. Of course, is saath mein kuch problems bhi aa sakti hain. Jaise ki agar aapne loan koi aisa le liya, jo aap phas gaye because of some family problems, some health issues and you're not able to pay it. अब इस प्रॉब्लम की वजह से घर में जो रिश्तेदारियाँ होती हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, माँ बाप में हो जाती है, भाई बहन में हो जाती है. इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप सोचते हैं कि आप मिनिमम पेमेंट्स करेंगे, हसल करेंगे और इस पेमेंट को अपने सिर से उतारेंगे. बट यकीन मानिए कि मिनिमम पेमेंट्स इज़ नॉट द सोल्यूशन. एक सोल्यूशन है, कौन है, मैं उनको खुद ही बुला लेता हूँ यहाँ फाइनेंशिया पे. गुड इवनिंग अमन, हाउ आर यू एंड व्हाई डोंट यू टेल हाउ ऊरा कैन हेल्प पीपल हु हैव डेट रिपोज एंड मोर.
1: जी हाँ, फाइनेंशियल सुनने वाले सभी लिसनर्स को उरा और अमन की तरफ से एक बार फिर से नमस्कार. आज देखिए महीना शुरू होता है, खत्म होता है और ये देखिए पहला हफ्ता इस महीने का खत्म भी हो गया और ऑलमोस्ट कल से फ्राइडे और वीकेंड. लेकिन चिट्ठियां हमारे दोस्तों को मिलनी शुरू हो चुकी होंगी कि क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट ड्यू है तो जल्दी से भर दीजिए. तो अगर आप भी क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट भरने जा रहे हैं तो जरा रुक जाइए और कॉल कीजिए उरा को. आपके क्रेडिट कार्ड का कर्जा आधे से ज्यादा माफ करवाया जा सकता है. जी हाँ, आधा माफ हो जाएगा और आधे की आसान से किस्तें बन जाएंगी. जस्ट मिनिमम पेमेंट करने से पहले एक बार कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट करने से आप 30 से 32 साल तक मिनिमम पेमेंट करते रहेंगे तब जाकर वो पे ऑफ होंगे. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से माफ हो जाएं, 6 महीने, 18 महीने या 24 महीने में पे ऑफ कर दिए जाएं, और तो कॉल कीजिए उरा को. कार्ड कोई भी हो सकते हैं, पर्सनल, स्टोर के या बिजनेस के. इसके अलावा कोई पर्सनल लोन जिसकी मिनिमम पेमेंट दे रहे हैं उसको माफ करवाना चाहते हैं आधे से ज्यादा, या फिर गाड़ी का लोन जो रीपोजेस हो गई है या टोटल हो गई. अगर गाड़ी रिपो हो गई है, टोटल हो गई है, इंश्योरेंस ने क्लेम नहीं दिया या फिर जॉब चली गई थी, गाड़ी की पेमेंट ना करने के कारण कार उठा कर ले गए, तो उस सिचुएशन में लोन तो स्टिल आपके सर पर है, वो उतार भी रहे हैं आप, तो उसको भी आप नेगोशिएट करके माफ करवा सकते हैं. जस्ट कॉल कीजिए उरा को. मिनिमम पेमेंट आंखें बंद कर करते रहने से आपका क्रेडिट का नुकसान भी होता है, पैसे का भी नुकसान होता है. जस्ट गिव मी अ कॉल. हमारा टोल फ्री नंबर है 1-888-888-9914, 1-888-888-9914. या फिर आप कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली मुझे. मेरा सेल फोन है 9167763555, 9167763555, अगेन 9167763555. और हमारी वेबसाइट है www.ura.org.

पूरा डेट का ये था जी आपके लिए सेगमेंट. एंड इफ यू आर गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, गिव हिम अ कॉल. आई नो दिस कंपनी फॉर क्वाइट सम टाइम. आई थिंक 20 साल हो गए मुझे उरा को जानते हुए एंड हेल्पिंग देम एस्टैब्लिश देयर ब्रांड नेशन वाइड ऑन टेलीविजन एज वेल. इफ यू आर इन दैट सिचुएशन, गिव देम अ कॉल. इतने लंबा ये लोग 20 सालों से दे हैव बीन सपोर्टिंग यू एंड मेनी अदर्स हु आर इन दिस सिचुएशन. फॉर नाउ लेट्स गो टू सम फन ना, थोड़ा गिव अवे टाइम हो जाए. तो चलो, बिस्ता हाउस का गिव अवे आपके लिए आ चुका है जी. योर गाइज आर गोना विन, वन ऑफ यू गाइज आर गोना विन $20 का गिफ्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम बरिस्ता हाउस. दिस इज अ न्यू सेंसेशन जो डेंटन के बाद अब फ्रिस्को में हल्ला मचा रहे हैं. एट प्रिज्म बार एंड ग्रिल, ऑथेंटिक हैदराबादी बिरयानी है, मैं खा चुका हूं. नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स आपको वहां मिलेंगे, डिलीशियस डिजर्ट्स एंड अ फुल सर्विस बार. पूरी फैमिली को लेके जाइए, 6377 कस्टर रोड, 121 एंड कस्टर की इंटरसेक्शन पे आपको ये मिलेगा जी. और आज एक विनर को मिलेंगे $20 गिफ्ट कूपन टू डाइन इन एट देयर लोकेशन. नाउ रिमेंबर, दिस इज फॉर ओनली डाइन इन. तो भैया पैक कर दो ना, वो नहीं चलेगा. आपको वहाँ बैठ के आराम से सुकून से

कस्टर रोड 121 एंड कस्टर की इंटरसेक्शन पे आपको ये मिलेगा जी। और आज एक विनर को मिलेंगे $20 गिफ्ट कूपन टू डाइन इन एट देयर लोकेशन। नाउ रिमेंबर दिस इज फॉर ओनली डाइन इन, तो भैया पैक कर दो ना, वो नहीं चलेगा, आपको वहाँ बैठ के आराम से सुकून से खाना है। दे आर गिविंग यू $20 टू डू सो, एंड आपके लिए ये ऑफर फ्रिस्को की लोकेशन में है, तो व्हेन यू गिव मी एन आंसर मेक श्योर कि आप फ्रिस्को जा सकें। ऑलराइट, सवाल ये है कि मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, अगर आप मुझे जो भी क्लोजेस्ट या सही जवाब देगा उसको मिलेगा जी ये $20 का गिफ्ट कार्ड। चलो सवाल सिंपल सा है, ऐसी कौन सी रोटी है जो उड़ती है, ऐसी कौन सी रोटी है जो उड़ती है, ये आप मुझे बताइए। स्टूडियो का नंबर 972-235-5555।

0: All right, let's see who do we have with us on Fun Asia Radio. Good evening to you, sir. Fun Asia Radio, कौन बोल रहे हैं?
1: हम बोल रहा हूँ जी, रवि।
0: रवि जी, आप क्या कह रहे हैं? कौन सी रोटी उठती है?
1: रुमाली रोटी सर।
0: रुमाली रोटी तो सर ऐसे बस फेंकते हैं, वो वापस आ जाती है, उड़ती थोड़ी है। पर आपका चलो, मैंने रवि जी नाम लिख लिया, थैंक यू वेरी मच। रुमाली रोटी कहते हैं,
1: उड़ती है जब उड़ाओ तो फिर उड़ती है।
0: हाँ, पर वापस तो आती है ना, उड़ती थोड़ी रहती है भाई, उड़ाया जाता है। और बिल्कुल जब प्लेट में भी पड़ी हो ना और चार पांच दोस्त खड़े हो तो पता भी नहीं लगती कहाँ उड़ गई। बहुत सही है रवि भैया, थैंक यू फॉर योर कॉल। और कौन है मेरे पास जो देना चाहता है इस बात का जवाब कि ऐसी कौन सी रोटी है जो उड़ती है? गुड इवनिंग टू यू, फन एशिया रेडियो। रेडियो का वॉल्यूम कम, आपका बढ़ा लीजिए, नाम बताइए।
2: मैंने कम, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी आप बहुत बहुत बहुत अच्छे प्रोग्राम करते हैं।
0: कौन बोल रही है? एक मिनट, आप तो शताब्दी के दौरान रोक गई, मेरे को तो समझ नहीं आया। पहले गुड इवनिंग, आपका नाम बताइए।
2: हाँ जी, गुड इवनिंग, मेरा नाम है बीनेश।
0: बीनेश
2: बीनेश बीनेश बम्बल भी होती है ना, बी बी बी बीनेश।
0: बीनेश जी, कैसी हैं आप?
2: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं?
0: मस्त मगन हूँ, खाता घी गगन हूँ, मस्त मगन हूँ। अच्छा,
2: वेरी गुड वेरी गुड।
0: ये बताइए, उसके बाद आप क्या कह रही थी कि आपको शो अच्छा लगता है? थैंक यू।
2: मैं कह रही थी आप हमेशा बहुत बहुत बहुत अच्छा शो करते हैं, अमेजिंग शो करते हैं। इट्स ऑलवेज यू आर वेरी एनर्जेटिक एंड आई लव दिस एनर्जी इन यू।
0: थैंक यू।
2: कहते हैं ना, कुछ सोते हुए कोई जगा देती है, एडी थोड़ी चंगी एनर्जी।
0: थैंक यू बीनी जी। अब ये बताइए, ऐसी कौन सी रोटी है जो उड़ती है? सही जवाब दिया, हाँ जी, प्लेन रोटी। क्योंकि प्लेन है ना यार, तो उड़ सकती है ना यार, लोग समझते नहीं है, नाराज हो जाते हैं बीनेश जी। अच्छा, फ्रिस्को जा सकती है?
2: मैं कोशिश कर सकती हूँ, कितनी देर तक वैलिड है?
0: एक हफ्ता।
2: अच्छा ठीक है, फिर मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं जा सकूं।
0: नहीं, कोशिश नहीं, फिर मैं किसी और को दे देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी कॉल का, कर दूं ऐसे?
2: नहीं जी, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग माय कॉल एंड थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट।
0: थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। लेट्स सी हु कुड बी द नेक्स्ट लकी वन। गुड इवनिंग फनेश, आपका नाम?
3: गुड इवनिंग, मैं सईदा बोल रही हूँ।
0: सईदा जी, फ्रिस्को जा, पहले पहले पहले पहले ये बताइए, फ्रिस्को जा सकती है कि नहीं?
3: जी जी, फ्रिस्को करीब है, मिकनी में रहते हैं।
0: अच्छा ठीक है, मैंने ये पूछा था ऐसी कौन सी रोटी होती है जो उड़ती है?
3: पतंग रोटी
0: तो नहीं होता, खैर वो होता है जी प्लेन रोटी। और मैं ना रवि भाई को बोलूंगा, रवि भाई आप कॉल कर लीजिए, बिकॉज आई थिंक यू वर वेरी क्लोज टू दैट आंसर कि भाई रोटी तो रुमाली भी उड़ती है। सो अगर आप मुझे सुन रहे हैं, रवि साहब आ जाइए, गिव मी अ कॉल, 972-235-5555।

0: पानी पी लेता हूँ क्योंकि गले को रखना पड़ता है तर यार, क्या करें, करनी पड़ती है। पटर पटर पटर पटर
1: रात को नाइट बोलो, हवा में जो उड़ती है उसे तुम काइट बोलो, लेफ्ट का जो उल्टा है उसे तुम राइट बोलो।
0: Alright, I was telling you about Relative Media brought to you by Fun Asia. मैंने बताया था कि इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जानकारी दूंगा। For all the business owners in DFW, if you're looking to grow your digital presence, हाँ मुझे पता है कि आपके पास टूल्स हैं, पोस्ट को बूस्ट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, but there are different things that you need to do, there are algorithms that you need, that you can implement to make sure that you get more attention, more reach and more results. Fun Asia Network is bringing you its media expertise to social media with the brand Relative Media. इसमें आपको scroll stopping reels बनाई जाएंगी, eye catching graphics दिए जाएंगे, कैप्शन दिए जाएंगे, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड सारी स्क्रिप्टिंग की जो जिम्मेदारी है वो रहेगी फन एशिया की। डिजिटल एंड कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है फन एशिया रेडियो, विच गिव्स यू योर बिजनेस अ कंप्लीट कंटेंट सॉल्यूशन ऑल इन वन प्लेस। आई हैव बीन इन द मीडिया इंडस्ट्री फॉर 20+ ईयर्स। ये मत सोचना कि बूढ़ा हो गया, 42 साल का हूँ यार। आई वॉज 22 व्हेन आई जॉइंड, सो वो जल्दी ज्वाइनिंग हो गई। तो आई हैव द फुल एक्सपीरियंस ऑफ दिस स्टेशन एंड ऑल द सिस्टर स्टेशंस दैट फन एशिया हैज। आई एम देयर सेल्स डायरेक्टर एज वेल। आप मुझे कॉल कर सकते हैं एंड आई कैन हेल्प यू रीच टू द नेक्स्ट लेवल। गिव मी योर कॉल एट 972-302-7012। नाउ टेकिंग यू टू द अगला गाना। ये एक रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास, आई डोंट नो द, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द जेंटलमैन, बट उन्होंने बोला था जी पैराडाइज फिल्म आई है, उसका गाना है एक आया शेर बोल के, वो सुना दो ना। येलो सर, अच्छा शेर से याद आया, एक शेर ने शेरनी से पूछा क्या तुम्हारा किसी और शेर के साथ शादी से पहले चक्कर था। शेरनी कहती है इसी बात पे मुझे एक शेर याद आया।

0: जाएगा क्या मेरा, चल आओ खाड़ झुंबा लेके।
1: भाई मैं एक बात की तो दाद देता हूँ भाई, साउथ का भाई जो एक्शन है ना बड़ू, मतलब अपन ने जिंदगी में कभी सोचा नहीं ना जो यहाँ वो करके दिखाते, तुम्हें क्या एक्शन करते हैं यहाँ, मौत डाल देते एकदम। मतलब वैसे भी एक्शन में आपके मौत मतलब गोलियां चलती हैं, बट कमाल है भाई। मतलब डांस स्टेप भी ऐसे अतरंगे अतरंगे, बनते ने कभी मतलब माइकल जैक्सन देख लेना इस डांस को, वो कहे भाजी पैर कहाँ हैं आपके, चरण कहाँ हैं प्रभु। पर यू नो दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जैसा दूसरा और कहीं देखा ही नहीं होता ना मिला होता है। ऐसी ही एक ब्यूटीफुल सी लड़की है जिसका नाम है अदया। अदया इज टुडे टर्निंग 16 ईयर्स ओल्ड। उनकी मम्मा है शिखा वर्मा मेहता, जो अपनी बेटी को बताना चाहती हैं कि बिटिया तुम जैसा ना जग में था ना होगा, और जब तुम मेरी ज़िंदगी में हो तो मेरी ज़िंदगी की लाइटें और जगमग टिम टिम करती हैं। एंड आई एम श्योर दैट्स द सेम फॉर अदया। जब वो मेरा शो सुनती है, मतलब नहीं थी, जब वो अपनी मम्मी को देखती है तो उनकी भी ज़िंदगी की लाइटें जो है वो टिम टिमाती हैं। बट मुझे मालूम है जब दोनों मेरा शो सुनती हैं तो दोनों की लाइफ में जो लाइटें हैं वो टिम टिमाती हैं। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन एंड अ वेरी वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू अदया फ्रॉम द टीम ऑफ फन एशिया एंड फ्रॉम बंदा बिंदास। दिल से मारविन दास, आदिया, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। द ओनली थिंग आई विल टेल यू, जिंदगी में एक चीज हमेशा याद रखना, नोबडी कैन लव यू मोर देन योर मॉम एंड डैड। यस योर हस्बैंड माइट, ओके, एंड योर पेरेंट्स कैन बी ऑलवेज देयर फॉर यू रिगार्डलेस ऑफ व्हाट सिचुएशन यू गो थ्रू। हाँ वो बताते हैं, बट मैं भी ये बताना चाहता था, एंड द ओनली थिंग दे एक्सपेक्ट इज योर हैप्पीनेस एंड योर जॉय इन रिटर्न एज दे ग्रो ओल्डर, एंड इफ यू कैन बी देयर फॉर देम दैट विल बी द चेरी ऑन टॉप। Adya, a very happy 16th birthday to you. And this song is from me, the whole DFW, and from your mom to you. A very happy birthday.

0: चूजे क्या गाना बना दिया ना यार, हेमिंग्वे बंटाई शंटाई एंड उड़ता तीर फिल्म का नाम, मतलब ये तो हम सबको पता है उड़ता तीर क्या होता है, वो उड़ता तीर है वो, उसमें रावण को मारा था यार उससे, आप क्यों हमें। अच्छा मैं सोच रहा हूँ तीर्थ यात्रा पे चला ही जाऊँ, और इसलिए जा रहा हूँ कि दारू छोड़ दूँ, दोस्त ने पूछा तो फिर प्रॉब्लम क्या है, मैं कल सोच रहा हूँ कहाँ छोड़ूँ।
1: Hey Frisco, get ready to celebrate silver like never before. Chandrika Silver by Shri Krishna Jewelers celebrates its grand launch. Discover exquisite handcrafted silver jewelry and artifacts with exciting inaugural offers and raffle prizes. Visit 7777 Bore in Parkway, Suite 280 Frisco. Chandrika Silver, the tradition shines in silver.
2: Your Dubai investment opportunity is here. Success Real Estate and Danu Properties present the Grand Dubai Property Show, October 17th and 18th, 10 a.m. to 9 p.m. at Lux Hotel Arlington. Explore luxury properties with payment plans starting at $1,300 a month. Meet the developer directly, book at the show and qualify for round-trip flights to Dubai and a luxury hotel stay for two. Call Habib Mita at 954-790-2620. That's 954-790-2620.
3: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
4: कुछ भी नहीं। Ura Debt Relief will do it for us.
3: क्या मतलब?
4: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
3: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही manage कर लेंगे।
4: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
3: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
2: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
5: हो सकता है आपका नेक्स्ट कस्टमर भी आपको ही ढूंढ रहा हो। जॉइन पासिया एंड मार्केट योर बिजनेस फॉर फ्री। शोकेस योर डील्स एंड गेट डिस्कवर्ड बाय कस्टमर्स नियर बाय। पासिया, बी वेयर योर कस्टमर्स आर लुकिंग।
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
7: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
10: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
11: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन डबल द फ्लेवर।
12: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
11: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानीज और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं।
12: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी।
10: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड। बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर।
13: ब्रेकफास्ट में क्या खाना है?
14: कीमा पराठा।
15: मम्मी, ऑमलेट पराठा।
14: बेटी, हलवा पूरी और तरकारी।
15: अब संडे को तीन अलग नाश्ता कौन बनाएगा?
11: सिग्नेचर क्विजीन बनाएगा। चूज एनी डिलिशियस ब्रेकफास्ट ऑप्शन, कीमा विद पराठा, हलवा पूरी विद तरकारी और ऑमलेट विद पराठा, सर्व्ड विद अ कप ऑफ हॉट कड़क चाय फॉर ओनली $8.99। अवेलेबल ड्यूरिंग वीकेंड ब्रेकफास्ट आवर्स एट सिग्नेचर क्विजीन इन प्लेनो। वीकेंड का मूड गर्मा गर्म देसी फूड। विजिट signaturecuisine.net।
16: AR Rahman live with a full orchestra. Experience the Grammy and two-time Academy Award winning composer behind Slumdog Millionaire like never before. The A.R. Rahman Symphonic Experience brings his iconic music to life in an extraordinary symphonic celebration, October 29th at Texas Trust Credit Union Theater. One night, a live orchestra, the music of A.R. Rahman. Don't miss it. Get your tickets now.

ऑल राइट लेडीज, आपके पति देव ऐसा करते होंगे, मतलब शादी से पहले जब आपके बॉयफ्रेंड थे ना, तो पत्नी बता रही थी एक दिन, बेचारी परेशान अपने हस्बैंड को बता रही है कि यार देखो, तुम शादी से पहले ना मेरी कितनी तारीफ किया करते थे, जैसे तुम कहा करते थे कि मेरी आंखें हिरनी जैसी हैं, चाल मोरनी जैसी है। अब क्या हुआ? वो कहता है अब ज्ञान प्राप्त हो गया है कि इंसान जानवरों से दूर ही अच्छा है।

6 बज के 25 मिनट हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में. दिस इज योर इवनिंग ड्राइव टाइम शो, द मोस्ट हर्ड शो इन द इवनिंग राइट हियर इन द यूनाइटेड स्टेट्स. 104.9 एफएम फनेशिया रेडियो की रीच ऐसी है जी, जबरदस्त. आपका अगर बिजनेस है, आप प्रमोट करना चाहते हैं, जरूर मुझे कॉल कर सकते हैं 972-302-7012. आई एम द सेल्स डायरेक्टर हियर, कैन हेल्प यू बिल्ड द राइट प्लान विद द राइट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज. ऑफकोर्स दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट यू बाई हिमालयन बाजार, जो कि ग्रैंड प्रेरी में आपके लिए ग्रोसरी के सोल्यूशन लेके आ चुके हैं. दे आर गिविंग यू अ ग्रोसरी स्टोर विच इज स्टैक्ड विद ऑल ऑफ दी जो जरूरत की हमारी ग्रोसरी है. फ्रेश सब्जियां, ताज़ा फल आपको वहां मिलेंगे, साथ साथ हलाल मीट. एंड फॉर माई नेपलीज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बूढ़ा एंड बूढ़ी को मिलेगा जी वहां वाटर बफ एज वेल. एंड दे हैव अ कैफे विच इज नाउ ओपन, सर्विंग यू सम लवली नेपलीज फूड, ऑथेंटिक मोमोज एंड मेनी अदर स्ट्रीट स्टाइल स्नैक्स राइट देयर इन ग्रैंड प्रेरी. अगर आपके घर से 5 माइल के रेडियस में है वो, तो आपकी ग्रोसरी जो है बिल्कुल फ्री डिलीवर हो जाएगी. ऑल यू हैव टू डू इज स्पेंड $50 और मोर. आई एम गोना बी विद यू टिल 6:40. सो अभी कुछ वक्त है, कुछ गाने बढ़िया से आप सबके लिए.

आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, और आ चुके हो आप लोग मेरी जिंदगी में। मैं तो यही सोचता हूँ कि मैंने क्या इतने आपने कितने अच्छे कर्म करे होंगे कि आपको मेरे जैसा होस्ट मिलता है शाम को। नहीं मतलब मैंने भी कुछ अच्छे कर्म किए हैं कि आप जैसी पब्लिक मिलती है दोस्तों। इट इज लवली टू कनेक्ट विद यू। SFL वर्ल्ड वाइड आपको कनेक्ट करता है आपके परिवार वालों के साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ, एंड कनेक्टिंग बिजनेसेस अक्रॉस द ग्लोब। दे आर समबडी हु इज नोन टू हैव द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ शिपमेंट सॉल्यूशंस। अगर आपको अपना एक छोटा सा चिट्ठी भेजनी है टू एनी अदर कंट्री विद इन द US, आपको 30-40% डिस्काउंट तो 100% मिलेगा ही मिलेगा कंपेयर टू USPS और एनी अदर चैनल्स देयर। उसके साथ साथ अगर आप गिफ्टिंग करना चाहते हैं, कुछ गिफ्ट्स अपनी फैमिली को भेजना चाहते हैं इंडिया में, एनी अदर कंट्री, यू कैन दे कैन पिक इट अप फ्रॉम योर डोर स्टेप एंड डिलीवर इट टू द डोर स्टेप इन इंडिया और एनी अदर कंट्री फॉर दैट मैटर। या फिर अगर आप वहाँ से कुछ मंगवाना चाहते हैं अपने लिए, वो चटपटी कैंडियाँ आप मिस कर रहे हो, इंडिया वाली चूरन खट्टे मीठे वो मिस कर रहे हो, तो वो भी आपके लिए SFL लेके आ सकता है। बहुत सारी चीज़ें, अगर आप घर मूव करना चाहते हैं फ्रॉम वन स्टेट टू द अदर, वन कंट्री टू अनदर कंट्री, दे कैन डू दैट। आपके बिजनेसेस हैं, यू ब्रिंग अ लॉट ऑफ शिपमेंट फ्रॉम ओवरसीज कंट्रीज टू द US और सेंडिंग समथिंग फ्रॉम हेयर टू एनी अदर पार्ट ऑफ द ग्लोब, दे डू दैट एज वेल। सो वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल सोल्यूशंस। उनका जो वेबसाइट है जी, दैट इज SFLWorldwide.com, एंड SFL सिंपली मीन्स shipforless.com, एंड आई थिंक दे bring you such solutions which are of course in need and in demand, so make sure to check them out anytime you have your next shipping need. भाई गौर, मैं अब तो मान ही गया हूं कि कलयुग आ गया है। जिस दोस्त की शादी में मैं जीन जान से नाचा था ना, फुल नाचे थे ना, वो नलायक अपनी बीवी के साथ शादी की वीडियो देखता देखता बोल रहा था, बेवड़े दोस्त मेरे।

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಈಗ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಚೆನ್ನೈ, ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ಎನ್ಸಿಆರ್ ಎಂದ ಟಾಪ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ರೂಫ್ ಕೆಳಗೆ. 200+ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ದಿನಾಂಕ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10th and 11th. ಸ್ಥಳ ಹಯತ್ ರೀಜೆನ್ಸಿ ಫ್ರಿಸ್ಕೋ. ಸಮಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಾತ್ರಿ 8. ಫ್ರೀ ಎಂಟ್ರಿ, ಫ್ರೀ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋವನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.
4: शॉपिंग बिल्कुल, पर कहाँ? फेस्टिव लुक्स के लिए वही 2-3 ऑप्शंस?
5: ऑप्शंस? आई विल गिव यू द लेटेस्ट डेस्टिनेशन.
2: इंट्रोड्यूसिंग पूजा'स ट्रेंड्स, लहंगाज, कोऑर्ड सेट्स, फ्यूजन वेयर, शराराज और ज्वेलरी. प्रीमियम क्वालिटी, अफोर्डेबल प्राइसेस. ग्रैंड ओपनिंग सेल, फ्लैट 15% ऑफ. विजिट 10202 कोइट रोड, स्वीट 400, फ्रिस्को. कॉल 214-457-4897. पूजा'स ट्रेंड्स, योर ट्रेंड, योर स्टाइल.
6: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
7: Don ko pakadna mushkil hi nahi.
8: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है. एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे.
9: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख.
2: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट. आज बुखार, आज डॉक्टर. आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर. आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर. प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी.
8: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259.
2: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
10: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास. 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में.
2: दैट मैजिक रिमूवल हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी.
10: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से. नाउ इट्स योर टर्न. समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर. कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
11: Hey, are you going to Ravi's Trade Market this year?
12: Of course. Where else can you check out new products, meet vendors, grab exclusive deals, giveaways and save big for your store?
11: When is it?
12: Thursday, October 29th, Friday, October 30th and Saturday, October 31st from 9 a.m. to 5 p.m. at Ravi's Import Warehouse on Harry Hines Boulevard in Dallas.
11: Perfect. I'll register ahead on shopravis.com. Ravi's 21st Annual Trade Market. Bigger deals, bigger opportunities, bigger business. Customers must bring their valid tax number and tobacco license.
13: Beta, 95% aaye?
14: Haan, mummy.
13: Good. Ab chaliye, papa, aap apna report card dikhaiye.
15: Mera?
13: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals, sare accounts updated.
2: School ka report card saal mein ek baar aata hai, but business ka report card har mahine. AG Fintax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
16: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar,
7: खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
14: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
15: मार्विन दास एंड बिंदास सर्विसेज प्रेजेंट द 6th एनुअल साउथ एशियन फूड फेस्टिवल ऑन 1st नवंबर फ्रॉम 12 नून टू 8 पीएम एट द साउंड वेन्यू इन कॉपल। एंजॉय फूड शॉपिंग डांस एंड लाइव म्यूजिक विद फ्री एंट्री एंड पार्किंग। Vendors and exhibitors showcase your business to thousands. Call Marvin at 972-302-7012 to reserve your spot.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: दिल की बात किससे कहें?
3: पंडित गुरुदेव से 35 साल से ज्यादा के एक्सपीरियंस के साथ पंडित गुरुदेव करते हैं कुंडली रीडिंग, बर्थ चार्ट एनालिसिस, पाम रीडिंग और फेस रीडिंग, ब्लैक मैजिक और नेगेटिव एनर्जी रिमूवल में एक्सपर्टाइज। प्यार, शादी या रिश्तों की उलझन हो तो पर्सनल गाइडेंस लीजिए। कॉल 4695811777। That's 4695811777. पंडित गुरुदेव, आइए अपनी बात कहिए।
4: एलविंग वालों, ध्यान से सुनो, ये सिर्फ म्यूजिक नहीं, हिंट है। Because the best chicken in Dallas is finally in Irving. Crispy, juicy, bold. The chicken Dallas has been craving after Plano and Richardson. Sal's Hot Chicken is now in Irving, bringing the crunch, the flavor, and the heat. You heard chicken, we heard Sal's. Grand opening on 10th October.
5: Buying a home comes with a lot of firsts. Your first walkthrough, your first offer, your first, they accepted. But there's one first you definitely don't want. Your first title problem. Before the keys are yours, make sure everything behind them is clear. With First United Texas Title, get the confidence of a smooth title and closing process. So the only surprise at your new home is what the neighbors bring over. First United Texas Title. Close with confidence. Own with peace of mind. Call 972-897-1530 or visit www.firstunitedtexastitle.com.
6: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
7: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
6: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
7: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट।
8: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
5: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
9: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
10: It's the time to clock out. It's the time to catch up.
6: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame. जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन। एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री। ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
11: Your Dubai investment opportunity is here. Success Real Estate and Danew Properties present the Grand Dubai Property Show, October 17th and 18th, 10 a.m. to 9 p.m. at Lux Hotel Arlington. Explore luxury properties with payment plans starting at $1,300 a month. Meet the developer directly, book at the show, and qualify for round-trip flights to Dubai and a luxury hotel stay for two. Call Habib Mita at 954-790-2620. That's 954-790-2620.